FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के बैशाख माह की 28वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 18 मई सन 2026, प्रातः के 5:58 और 20 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, SME, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और

0: नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। विचार बिंदु में लीजिए प्रस्तुत है संस्कार विषय पर विचार।
2: कथा का मनोरम जागरण भास्कर अपनी चैतन्य अरुणिमा बिखेर पाए थे कि अचानक रुक सी गए। मेरे साथ वो भी ये दृश्य देखने लगे। पैरों की गति बंद हो गई और आंखों का हिलना भी। एक पुत्र वृद्ध पिता को पीट रहा था खूब, मानव की ये अनिति देखकर सूर्य रहा था डूब। मैं सोचने लगा, सूर्य तो अभी उग ही रहा है, लेकिन युवा पीढ़ी डूब रही है। तभी एक पड़ोसी ने मेरा कंधा झकझोरा, अपने दरवाजे पर ही तो मार रहा है, वो भी अपने माँ बाप को। ये तो रोज का काम है, प्रातः उठकर शराब का कोल्ला करता है, आप जाइए इस चक्कर में मत पड़िए, और स्वयं अपने काम में लग गया। ये संसार है, वो बड़बड़ा रहा था। मैं भी एक अपराधी की भांति चल पड़ा, मेरे पैर घर की ओर, लेकिन मन वहीं कुरुक्षेत्र पर, जहां अन्याय के हाथों न्याय पिट रहा था। मानवता सिसक रही थी, स्वार्थ खिलखिलाकर हंस रहा था। मुझे मजबूरीवश चिंतन में डूबना पड़ा। हे माँ, ये है तुम्हारी युवा संतान, भविष्य के भारत का नींव का पत्थर, राम कृष्ण की संस्कृति की ध्वजा, युवा अर्थात उमंग, उत्साह, साहस की मूर्ति, आकाश के तारे तोड़ने में समर्थ, हिमालय और आल्पस को झुकाने की शक्ति, हवा की दिशा मोड़ने में समर्थ, असंभव को संभव कर दिखाने की सामर्थ्य, रंगों में खोलता गर्म खून, अन्याय को मिटाने में सक्षम, मस्तिष्क ठंडा, सेवा, शिष्टाचार, नम्रता,

0: निर्बलों का सहारा, कर्तव्य भावना जिसके रंग रंग में समाई हो, नए इतिहास रचने की क्षमता, यह है भारत की युवा पीढ़ी। कर्तव्य की बात ने चिंतन को एक नया मोड़ दिया, मन विस्मरण की परतों को चीर कर ले आया अपने अनुकूल साक्ष्य प्रमाण। लगभग 20 वर्ष पहले की घटना है। मेरे मित्र के पिता स्विट्जरलैंड यात्रा से लौटे थे। विदेश की चमक न जाने किसने मेरी आंखों में भर दी थी। मैं भी मिलने पहुंच गया, एक प्रश्न पूछ लिया, कृपया वहां का कोई प्रसंग सुनाइए जो आप भूल ना पा रहे हो। मेरे इस प्रश्न ने उन्हें सोचने पर विवश कर दिया और बोले, मैं जिस लड़की का मेहमान था वो मुझे एक दिन अपनी गाड़ी से घुमाने ले गई। हम फूलों के बीच वाली सड़कों से गुजर रहे थे, तभी उसने मुझे खाने को टॉफ़ी दी। मैंने टॉफ़ी का रैपर गाड़ी से बाहर फेंक दिया और टॉफ़ी खाने लगा। उस लड़की ने मुझे छिलका फेंकते हुए जैसे ही देखा, उसने गाड़ी पीछे करके छिलके को उठाते हुए मुझे डांटते हुए बोली, मिस्टर, दिस इज़ नॉट इंडिया, दिस इज़ स्विट्जरलैंड। वी आर सिटीजन ऑफ अवर कंट्री एंड दिस इज़ अवर ड्यूटी दैट वी क्लीन अवर कंट्री। मैं चुपचाप सुनता रहा। सुनकर कर भी क्या सकता था, विदेश की चकाचौंध थी। मैं पुनः चिंतन में डूब गया। जगतगुरु भारत की संतानें, जिनके चरणों में बैठकर विश्व कर्तव्य की व्याख्या सीखा करता था, साधना और शांति की भीख मांगता था, जहाँ से निकलकर शांति की गंगा सारे विश्व को सींचती थी, वही मातृभूमि क्या ऐसी संतानें जन्म दे सकती हैं जो कागजी तस्वीरों की पूजा करके अपना चरित्र एवं वर्चस्व खो डाले। आज ये हम सबका प्रश्न है और उसका उत्तर स्वयं ही ढूंढना है। अपनी संतानों को विदेशी चमक से कैसे बाहर लाएं, नशा एवं फिल्मी चकाचौंध से कैसे छुड़ाएं, काफ़ी चिंतन के बाद उत्तर मिलेगा। इसके लिए अपने आप को सुधारना होगा, मन को संस्कारित कर दुर्व्यसनों को उखाड़ फेंकना होगा। मन में पीड़ा होगी तो सहना पड़ेगी, तभी युवा संतानें वापस आएंगी। सारा वातावरण आनंद से भर जाएगा। आज दीवारों से दीवारें मिली हैं, फिर दिल से दिल मिल जाएंगे। संतानें कर्तव्य निभाएंगी और हम आनंदमग्न हो जाएंगे।
1: संस्कार विचार बिंदु में ये थे आज के विचार। और अब आइए सुख शांति और समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ आरंभ करते हैं आज की आराधना।

त्रिनेत्रधारी नीलकंठ भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है, जिनके चरणों में समर्पण से हर दुख का होता उद्धार है। डमरू की ध्वनि में बसता है सृष्टि का दिव्य संगीत, हर हर महादेव के जय घोष से मन हो जाता है पुलकित।

मुरली की मधुरतान से जो हर हृदय को मोह लेते हैं वो नंदलाल कन्हैया भक्तों के जीवन में प्रेम का रंग भर देते हैं। उनकी मुस्कान में बसती है भक्ति की अनुपम छाया, जो एक बार श्याम का हो जाए उसे जग में कुछ और न भाया।

अयोध्या के राजकुमार भक्तों के पालनहार प्रभु श्री राम करुणा त्याग और आदर्श का है अनुपम स्वरूप। आइए आराधना के इस पावन अवसर पर राम नाम का संकीर्तन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। राम ही श्रद्धा है, राम ही विश्वास है, राम नाम में ही जीवन का सच्चा प्रकाश है।

जटाओं से बहती गंगा मस्तक पर चंद सुहाए, भोले बाबा की कृपा से जीवन में सुख शांति आए। कैलाशपति शिव शंकर करुणा के हैं सागर, भक्तों की हर विनती सुनते मिटाते जीवन के अंधकार।

जगजननी माँ दुर्गा शक्ति और भक्ति का अद्भुत स्वरूप, जिनकी कृपा से हर भय और संकट हो जाता है दूर। माँ के चरणों में जो श्रद्धा से शीश झुकाता है उसका जीवन सुख शांति और साहस से भर जाता है।

आराधना कार्यक्रम में आज आपने सुने मृत्युंजय, घनश्याम वासवानी, नीरज पटेल, दीपा नारायण और तृप्ति शाक्या के गाए भक्ति गीत। इसी के साथ ही आज का आराधना कार्यक्रम संपन्न हुआ।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है आज की बात।

नमस्कार श्रोताओं, आज की बात के अंक के साथ मैं हूं भारती जोशी। आज है 18 मई। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आइए जानते हैं आज का ये दिन देश दुनिया के इतिहास में क्यों है खास। श्रोताओं, 18 मई सन 1974, ये वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने दुनिया को अपनी वैज्ञानिक शक्ति का परिचय दिया। राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया, जिसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इस परीक्षण का नेतृत्व श्रोताओं भारतीय वैज्ञानिकों ने अत्यंत गोपनीय तरीके से किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुए इस परीक्षण ने भारत को विश्व के शक्तिशाली देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया। पोखरण परीक्षण के बाद श्रोताओं विश्व भर में भारत की चर्चा होने लगी। आज भी 18 मई भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। श्रोताओं, हर वर्ष 18 मई को दुनिया भर में

अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स ने की थी। आज के डिजिटल युग में संग्रहालय नई तकनीकों का उपयोग कर युवाओं को इतिहास से जोड़ने का कार्य भी कर रहे हैं। श्रोताओं, 18 मई 1048 को फारस के महान गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और कवि उमर खयाम का जन्म हुआ था। उमर खयाम ने गणित और खगोल विज्ञान में कई महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने कैलेंडर प्रणाली में सुधार किया और बीजगणित के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि उनकी रुबाइयों के कारण मिली। उनकी कविताएं जीवन, प्रेम, समय और दर्शन पर आधारित थी, जो आज भी विश्व साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। सन 1967 में श्रोताओं, आज ही के दिन भारत के सुप्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी पंचानन माहेश्वरी का निधन हुआ था। उन्हें मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म के टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन की तकनीक के आविष्कार के लिए जाना जाता था। इस आविष्कार से श्रोताओं, नए संकर पौधों के निर्माण में सहायता मिली थी, जिन्हें पहले प्राकृतिक रूप से क्रॉस ब्रीड नहीं किया जा सकता था। सन 1991 में आज ही के दिन श्रोताओं, चॉकलेट कंपनी में केमिस्ट के तौर पर काम करने वाली 27 वर्षीय हेलेन शर्मन ने ब्रिटेन की पहली अंतरिक्ष यात्री के तौर पर सोवियत सुयज यान से उड़ान भरी थी। उन्हें एक पहेली का जवाब देने पर ये मौका दिया गया था। सन 2006 में लोकतंत्र आंदोलन सरकार ने आज ही के दिन राजशाही की ताकत को नकारते हुए श्रोताओं, नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया था। और आज ही के दिन सन 2020 में मॉडर्ना कोरोना वायरस वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाने वाला पहला टीका बना था। सन 2021 में आज ही के दिन श्रोताओं, गूगल ने भारत में अपने वैश्विक लाइसेंसिंग कार्यक्रम न्यूज शोकेश को लॉन्च करने की घोषणा की थी। गूगल ने 30 भारतीय प्रकाशकों के साथ उनकी कुछ सामग्री तक पहुंच प्रदान करने के लिए अनुबंधों को सील कर दिया था। 18 मई हमें ये संदेश देता है कि निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास से कोई भी देश नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो श्रोताओं, ये थी आज की बात। उम्मीद है कि आज की बात का ये अंक आपको पसंद आया होगा। अब अगली मुलाकात तक के लिए भारती जोशी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

नमस्कार श्रोताओं, आज के विविधा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता ये केवल किताबों में ही नहीं बल्कि उन धरोहरों में भी जीवित रहती है जिन्हें हम संग्रहालयों के में सुरक्षित पाते हैं। संग्रहालय किसी देश की पहचान होते हैं, वे अतीत की कहानियां सुनाते हैं, सभ्यता की यात्रा दिखाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। विविधा के आज के इस अंक में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम और संग्रहालयों के महत्व की। श्रोताओं, जो समाज अपने इतिहास को संजो कर रखता है वही भविष्य की मजबूत नींव तैयार करता है। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं को रखने की जगह नहीं होते, वे इतिहास, कला, विज्ञान, संस्कृति और मानव सभ्यता का जीवंत दस्तावेज होते हैं। श्रोताओं, जब हम किसी संग्रहालय में जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम समय की यात्रा कर रहे हों। वहां रखी मूर्तियां, पांडुलिपियां, प्राचीन हथियार, चित्रकला और ऐतिहासिक वस्तुएं हमें बीते युग की कहानी सुनाती हैं। संग्रहालय हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनकी संस्कृति कैसी थी और समाज समय के साथ कैसे विकसित हुआ। श्रोताओं, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स की स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने ये महसूस किया कि मानव सभ्यता की धरोहरों को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य श्रोताओं, विश्व भर के संग्रहालयों को एक मंच पर लाना, सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करना और संग्रहालयों के विकास को बढ़ावा देना है। श्रोताओं, हर वर्ष 18 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की शुरुआत 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य

लोगों को संग्रहालयों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। हर वर्ष एक विशेष थीम रखी जाती है जिसके माध्यम से संग्रहालयों की नई भूमिका और चुनौतियों पर चर्चा की जाती है। श्रोताओं, भारत की संस्कृति हजारों वर्षों पुरानी है। यहाँ अनेक सभ्यताओं, राजवंशों और परंपराओं का इतिहास रहा है। इसी कारण भारत में संग्रहालयों का विशेष महत्व है। दिल्ली का नेशनल म्यूजियम भारत की ऐतिहासिक धरोहरों का विशाल भंडार है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत तक की अनेक दुर्लभ वस्तुएं सुरक्षित हैं। कोलकाता का इंडियन म्यूजियम भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय माना जाता है। इसके अलावा हैदराबाद का सालरगंज संग्रहालय, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय

आधुनिक भारत तक की अनेक दुर्लभ वस्तुएं सुरक्षित हैं। कोलकाता का इंडियन म्यूजियम भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय माना जाता है। इसके अलावा हैदराबाद का सालरगंज संग्रहालय, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय और कई अन्य संग्रहालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। श्रोताओं, आज के डिजिटल युग में संग्रहालयों ने भी आधुनिक तकनीक को अपनाना शुरू कर दिया है। अब कई संग्रहालयों में डिजिटल स्क्रीन, ऑडियो गाइड और वर्चुअल टूर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे युवा पीढ़ी इतिहास और संस्कृति को अधिक रोचक तरीके से समझ पा रही है। संग्रहालय हमें हमारी पहचान से जोड़ते हैं। वे केवल अतीत को संरक्षित नहीं करते बल्कि समाज को शिक्षा और प्रेरणा भी देते हैं। संग्रहालय हमें ये संदेश देते हैं कि आधुनिकता के साथ साथ अपनी विरासत को सहेजना भी उतना ही आवश्यक है। श्रोताओं, भविष्य में संग्रहालय और अधिक आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत होंगे। वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल आर्काइव और ऑनलाइन प्रदर्शनियों के माध्यम से लोग घर बैठे दुनिया के संग्रहालयों को देख सकेंगे, लेकिन चाहे तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, संग्रहालयों का मूल उद्देश्य हमेशा एक ही रहेगा, मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहरों को सुरक्षित रखना। आइए हम सब अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण का संकल्प लें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने गौरवशाली इतिहास को जान सकें। इसी के साथ ही आज का विविधा कार्यक्रम संपन्न होता है। अनुमति दीजिए, नमस्कार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में, तत्पश्चात हिंदी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथिनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथिनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः संबंधेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारो भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारो व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्री मोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेन वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादम विरुद्ध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमंत्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री मोदी प्रकाशितवान्।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथिनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र

0: सम्प्राप्येत। भारत नोर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्रीमोदी अद्य नोर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नोर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्व युतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथि युतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटि मितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्री शाहः विहितवान्। एतत् पूर्वं प्रथमे दिने श्री शाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्री शाहः एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे।

0: ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। लीजिए प्रस्तुत है रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक, ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। अब से कुछ ही देर बाद प्रातः 7:10 पर समय रहेगा श्री रामचरितमानस गान पाठ का। लोकगीत का आनंद आप लेंगे प्रातः 7:30 पर कार्यक्रम लोकमंजरी में। दोपहर 2 बजे उत्तराखंड के लोकगीत पर और हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5:05 पर शैल स्वर कार्यक्रम के तहत। महिलाओं का कार्यक्रम होगा घर संसार दोपहर 12:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी सोशल मीडिया के समय में सामाजिक बने विषय पर। साथ ही शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगी हौसलों की उड़ान एक नई शुरुआत विषय पर। सुश्री शिखा शर्मा उद्यमी नानक मत्ता उधम सिंह नगर से संगीता तिलारा की बातचीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा आज दोपहर 1:30 पर। किसान भाइयों के कार्यक्रम खेती की बातें में आज दोपहर 2:30 पर किसान भाई सुनेंगे कृषि उत्पादन में जैव उर्वरकों की महत्ता एवं उपयोग विषय पर श्री नवीन चंद्र बेलवाल की वार्ता। युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी शाम 5:15 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और वार्ता होगी संस्कृति संरक्षण में संग्रहालयों का महत्व पर। वार्ताकार होंगी मेघा कपकोटी। कार्यक्रम उत्तरायण में शाम 5:45 पर आज चर्चा होगी विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर। साथ ही आप सुनेंगे जन सामाज्य के लिए संग्रहालय का महत्व विषय पर समन्वयक स्वामी विवेकानंद महात्मा गांधी अध्ययन केंद्र SSJ विश्वविद्यालय के श्री चंद्र प्रकाश फुलेरिया से संजय जोशी की भेंटवार्ता। शाम 6:41 पर आज भक्ति संगीत में आप आनंद लेंगे सिरपल राजा राजेंद्र चौहान और ओम व्यास एवं साथियों के गाए भक्ति गीतों का। ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्राम जगत में आज की बातें होंगी किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर, साथ ही चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:05 पर कार्यक्रम गीत निर्जर में, 10:35 पर सुरबहार में, 11:00 सैनिकों के लिए कार्यक्रम में, 12:00 मेरी पसंद पर, 2:45 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक ही फनकार में और अपराहन 3:00 सदाबहार फिल्म गीत पर। फिल्म संगीत पुनः सुनिएगा हमारी सायकालीन सभा में शाम 7:40 पर, 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में और 10:30 पर फिल्म संगीत के तहत। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा आज प्रातः 8:30 पर और 11:30 पर। सुगम संगीत आप सुनते हैं प्रातः 10:05 पर सबरंग कार्यक्रम में, 1:15 पर सुगम संगीत में, 8:00 सबरस कार्यक्रम में और 10:00 सुगम संगीत के अंतर्गत। श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस।

श्री राम के हाथों जब पल भर में शिवजी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देवलोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हो आया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे। किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो, हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिक पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान पाठ का भाग 97। कलाकार थे ए हरिहरन, संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: डेंगू और जल जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अस्पतालों में जांच, इलाज और फॉगिंग व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार, नवाचार, डिजिटल लर्निंग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प की पूर्ति में शिक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने ये बात मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में प्रतिभाग करते हुए कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं तथा देश और प्रदेश का भविष्य उनकी प्रतिभा, मेहनत और संकल्प पर निर्भर करता है। श्री धामी ने इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों के उत्कृष्ट परिणाम पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विशेष रूप से बेटियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। देहरादून के सैलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। यह कार्यवाही श्रमिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव कर माहौल बिगाड़ने के प्रयास के बाद की गई। प्रशासन ने सैलाकुई और सिरकुल औद्योगिक क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता धारा 163 लागू की है। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों को लागू प्रतिबंधों की जानकारी देते हुए शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न केंद्रित करने की अपील की। पुलिस ने चेतावनी दी है कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आदेश के तहत सैलाकुई और सिरकुल क्षेत्र में हथियार, लाठी डंडा और अन्य घातक वस्तुएं लेकर चलने, सार्वजनिक सभा, जुलूस, नारेबाजी और बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है। 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने लोगों, श्रमिक संगठनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। उधम सिंह नगर जिले में सितारगंज में शक्ति फार्म को सिटकुल क्षेत्र से जोड़ने के लिए सिसौना नदी पर लगभग 11,41,00,000 रुपये की लागत से बनने वाले 150 मीटर स्पान सीसी पुल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुल बनने से करीब 50,000 लोगों को लाभ मिलेगा और सिटकुल सितारगंज तथा विकास खंड कार्यालय से सोना तक पहुंचने की दूरी लगभग 9 किलोमीटर कम हो जाएगी। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शक्ति फार्म में डेयरी प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जा रही है, जबकि प्रहलाद पलसिया में लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एक्वा पार्क का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर, पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, विभिन्न बाईपास, बस अड्डों और खेल सुविधाओं से जुड़े कई विकास कार्य भी प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह दावा फर्जी है। यूनिट ने कहा कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। इसके अलावा तेल शोधन कारखानों के पास भी भंडारण है। PIB ने नागरिकों को न घबराने की सलाह दी है और कहा है कि ईंधन और गैस की उपलब्धता के बारे में सरकारी अधिकारियों द्वारा सत्यापित सूचनाओं पर ही भरोसा किया जाना चाहिए।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। सचिव ने बताया कि CBSE ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। सचिव ने कहा कि सीबीएसई ने मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है। राजधानी देहरादून में डेंगू और जल जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों की बैठक लेकर अस्पतालों में डेंगू जांच, इलाज, दवाइयों, ब्लड बैंक और पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहें और डेंगू का कोई मामला सामने आने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। एक रिपोर्ट।
2: जिलाधिकारी ने नगर निगम और नगर निकायों को शहर के सभी छोटे बड़े नालों और ड्रेनेज की सफाई तेज करने के निर्देश दिए। डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में वॉलेंटियर्स और रैपिड रिस्पांस टीम तैनात करने, नियमित फॉगिंग और लार्वा नेस्ट करने के लिए रासायनिक छिड़काव कराने को कहा गया है। जल भराव मिलने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और चलान के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में स्कूलों में डेंगू जागरूकता अभियान चलाने और बच्चों के लिए फुल बाजू की ड्रेस अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए। वहीं आशा कार्यकर्तियों को घर घर जाकर सर्वे के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष अब तक जिले में डेंगू के 5 मामले सामने आए हैं, जिनमें 3 मामले बाहरी राज्यों से संबंधित हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से समीना।
0: सेना भर्ती कार्यालय लैंसडाउन द्वारा हरिद्वार में एनसीसी कैडेट्स के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 31 यूके बटालियन के कैडेट्स को भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया, आवश्यक योग्यताओं और चयन से जुड़ी विभिन्न जानकारियां दी गईं। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने कैडेट्स को लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और अन्य चयन प्रक्रियाओं की तैयारी के बारे में मार्गदर्शन दिया। साथ ही युवाओं को देशभक्ति, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और निस्वार्थ सेवा जैसे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कैडेट्स ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यक्रम में भर्ती और पात्रता संबंधी जानकारी वाली पुस्तिकाएं भी वितरित की गईं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश में एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। एक निजी समाचार पत्र से बातचीत में श्री जोशी ने कहा कि कुल बिजली मांग का करीब 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। हरिद्वार जिले में बम विस्फोट की धमकी देने वाले आरोपी को कोतवाली नगर पुलिस ने रोडी बेलवाला क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने डायल 112 पर कॉल कर आगामी 4 दिनों के भीतर जिले में बम विस्फोट करने की धमकी दी थी। आरोपी ने फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए देश और राज्य के उच्च पदाधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। कोतवाल कुंदन सिंह राणा के अनुसार कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम ने तकनीकी जांच और मोबाइल ट्रेसिंग के जरिए आरोपी की पहचान कर ली है। राजधानी देहरादून में 42वां उत्तराखंड गोल्ड कप टूर्नामेंट आगामी 22 मई से 7 जून तक खेला जाएगा। प्रतियोगिता में देशभर की टीमों के साथ साथ नेपाल की टीम भी भाग ले रही है। इसके लिए 16 टीमें 4 ग्रुपों में मैच खेलेंगी। देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव पीसी वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि विजेता टीम को 10,00,000 रुपये नगद पुरस्कार के साथ गोल्ड कप ट्रॉफी दी जाएगी, जबकि उप विजेता टीम को 7,00,000 रुपये और ट्रॉफी मिलेगी। इसके अलावा हर मैच का मैन ऑफ द मैच 5,000 रुपये और पूरे टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज 1,00,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। खिलाड़ियों को विभिन्न व्यक्तिगत पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जाएगा। क्वार्टर फाइनल में नॉकआउट फॉर्मेट रहेगा। ज्यादातर मैच डे नाइट खेले जाएंगे। 2 मैच अल्फा क्रिकेट स्टेडियम गणेशपुर में खेले जाएंगे। शेष मैच महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार, नवाचार, डिजिटल लर्निंग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। देहरादून के सैलकुई औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च। सैलकुई और सिडकुल क्षेत्रों में धारा 163 लागू। केंद्र सरकार ने कहा, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। और देहरादून में डेंगू और जल जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अस्पतालों में जांच, इलाज और फॉगिंग व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पूरन सिंह दानू के गाए ये कुमाऊनी लोकगीत।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय कार्यक्रम लोक मंजरी में आप सुन रहे हैं पूरन सिंह दानू के गाए ये कुमाऊनी लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी, और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पूरन सिंह दानू के गाए ये कुमाऊनी लोकगीत।

उड़न सिंगदानों के गाए इन्हीं कुमाऊनी लोकगीतों के साथ आज का लोकमंजरी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया। विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन, मिनरल मिशन जैसे

0: क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
6: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र

0: से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
2: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल VA वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद

अभी आपने सुना डॉक्टर प्रभा आत्रे का राग भैरव में गाया ख्याल। आपके साथ तबला संगत की थी मुकुंदराज देव ने। इसी के साथ ही आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। गोतेनबर्ग पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत में स्वीडिश कंपनियों से भारत में विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। श्री मोदी ने स्वीडन की नवाचार और स्थिरता की क्षमताओं को भारत के विशाल प्रतिभा और विकास की गति के साथ जोड़ने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने

0: सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के बराकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। भारत ने संयम बरतने और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से तनाव समाप्त करने का आह्वान किया है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। शपथ लेने वाले 21 मंत्रियों में सतीशन सहित 14 विधायक पहली बार मंत्री बन रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद श्री सतीशन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में महाराष्ट्र के एक अभिभावक पर प्रश्न पत्र को 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक टीम ने कल इस व्यक्ति से पूछताछ कर आगे की जांच के लिए एजेंसी के पुणे कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 4वें दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। जियांगशान में 6ठे संस्करण की तुलना में भारत की ये बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 1982 में हुई नई दिल्ली में हुई एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के बाद भारत ने दूसरी बार इसकी मेजबानी की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर।

श्रोताओं, गीत निर्झर कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना बॉर्डर फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीतकार अनु मलिक। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें आई थी विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन की। ग्राम आनंद गांव जिला जालना से हमारे श्रोता हैं परमेश्वर शिंदे।

कावेरी शिंदे, वैष्णवी शिंदे, स्वाति शिंदे, प्रहलाद शिंदे और समस्त शिंदे परिवार। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना। जिला खांडवा ग्राम लोहरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे की।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से, किशोरी अमोनकर की आवाज में। गीतकार है हसरत जयपुरी और संगीतकार रामलाल। इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा वेद, नीतू वेद और वैदही वेद। मोरटक्का माफी जिला खांडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, भावना पटेल और मन पटेल। बक्सर बिहार से हमारे श्रोता हैं शरीफुद्दीन अंसारी, फातमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी और डॉक्टर सोनम अधविया। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर गीत गाया पत्थरों ने फिल्म का ये गीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप आनंद ले रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं आप सभी। सारनपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफताब अंसारी, महताब अंसारी और मीराज अंसारी। वांडिंगखेड़ा पंजाब से हमारे श्रोता हैं मिंटू तोमस, पिंकी अरोरा और आरती अरोरा। पुराना तालाब डुमराव से वरी उल्ला अंसारी और राज एसडी अंसारी। शिवकोटरी ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश से राकेश पप्पू सेन, श्रीमती निशा सेन, धर्मेंद्र सेन, मुकेश सेन, कुमारी सपना सेन और ओम सेन। ताड़ीखेत से ललित बेलवाल, माया बेलवाल, करण बेलवाल और गर्वित बेलवाल। आप सभी सुनना चाहते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। समीर के लिखे इस गीत को धुनों से सजाया है नदीम श्रवण ने। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत।

0: बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम का अगला गीत है दिल तेरा आशिक फिल्म से, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। समीर के लिखे इस गीत को धुनों से सजाया है नदीम श्रवण ने। इस गीत को सुनना चाहा है शिरनेरी बाड़मेर राजस्थान से कृष्ण कुमार डावी, जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, सौंगा धमतेरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन ने। MLB रोड ग्वालियर से हमारे श्रोता हैं सुरेश खुराना, पप्पी, किरण, लाविया खुराना, मेधा, आशीष, विशु, साक्षी, अनुज और छोटू खुराना। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से भाईकारी, रायकारी, मीनाकारी, पुजराज, आरती और आकर्षण। नम्रदा पार्क मंगल वेधा जिला सोलापुर महाराष्ट्र से मास्टर अलीम पटेल लवंगी वाले। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका ये गीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म पतलीरा रास्ता से। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। योगेश के लिखे इस गीत को धुनों में पिरोया है राम लक्ष्मण ने। सुनने की ख्वाहिश है सांता क्रूज मुंबई से मंजुला जोशी, मुकेश जोशी और आयुष्मान जोशी। सिद्धार्थ नगर मुंबई से हमारे श्रोता हैं शेख सुहेल, उमा सुहेल और नुशरत सुहेल। रेडियो के दीवाने ग्रुप दिल्ली से रेशमा अंसारी, शबनम अंसारी, रिहान अंसारी और शकीला अंसारी। इसी गीत को सुनना चाहा है बिहार से आसमा परवीन और वली भाई अंसारी ने। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। लच्छनपुर से हमारे श्रोता हैं रामजी साहू और जीवन लाल रजक। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर पथरीला रास्ता फिल्म का ये गीत।

गीत निर्झर फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। कार्यक्रम की अगली फरमाइश आप सभी की, कल्लनगंज खांडवा से कौसर बी पवार, हसीना बी पवार,

अलमाज बानो, हीना सईद, वनीता गंगराडे, मुमताज़ मंसूरी और सबीना जहीर परवार, बाजार फैल शहगांव से मोहम्मद अनीज मोहाल, मोहम्मद दानिश मोहाल, मोहम्मद जुनैद मोहाल और प्यारा नवाशा मोहम्मद हसनैन, गुलमोहर कॉलोनी खांडवा से मोइन छोटू पवार, मोहम्मद फाजिल जहीर पवार और सबीना, ग्राम बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, पार्थ कश्यप, राजेंद्र वर्मा और मनहरण वर्मा, चटौत तारा गांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी वर्मा, निर्मला कीरित वर्मा और समस्त वर्मा परिवार, आप सभी सुनना चाहते हैं एतवार फिल्म का ये गीत जिसे लिखा है हसन कमल ने और संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने, आशा भोसले और भूपेंद्र की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म दोस्ताना से, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को धुनों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फरमाइश है आप सभी की। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी सुशीलपुरी, बीकेपुरी कैलाशपुरी, नीलम रमापुरी, पलीपुरी सुनील पाठक और विनोदपुरी की। चंडीगढ़ से राहुल खुराना और रचिता खुराना। तेलंगाना स्टेट निज़ामाबाद से हमारे श्रोता हैं शेख उल्लाह बख्श, बेगम रबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख। ग्राम बाघामुड़ा कोमाखान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, गायत्री देवांगन, प्रकाश देवांगन, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल होंदा। इसी गीत को सुनना चाहा है जय जिनेंद्र रेडियो ग्रुप से अजीत भावसार, प्रमिला भावेश, सनी हेतल, कृष्णा जैमिन। राजकोट सौराष्ट्र से जगदीश जोशी, मंजुला जोशी, हितेश, हेमा, रिद्धि और पर्व जोशी ने। नागपुर महाराष्ट्र से हमारे श्रोता है कमल सहानी, पिंकी सहानी, अफजल मलिक, संदीप मक्कर, संजय डिंगिया और बेगम इफ्ताल। पुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अनुपम, आराध्या, अमन, पाराशर और लल्लू पंडित। लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी।

लाला बाजार से बाबा फरहान, खुशबू, संजू, सामिया, आफिया, मुमताज़, अमान, माही, नीलोफर, शन्नो और शब्बू। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर दोस्ताना फिल्म का ये गीत।

इसी गीत को सुनना चाह है कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत यूपी से आसिफ अली खां, मोमिना नाज, मुस्कान आसिफ, सादगी अली खां और सारिक अली खां ने।

श्रोताओं, दोस्ताना फिल्म के इसी गीत के साथ ही आज के गीत निर्झर कार्यक्रम से भारती जोशी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। गोथेनबर्ग पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के 2 देशों के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये दौरा दोनों देशों के साथ भारत मित्रता के दायरे को और बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को बढ़ाना और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। शपथ लेने वाले 21 मंत्रियों में सतीशन सहित 14 विधायक पहली बार मंत्री बन रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद श्री सतीशन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया

0: पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एसडी देवेगौड़ा ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान देश के लिए बेहतरीन योगदान दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एसडी देवेगौड़ा को धरती का सपूत बताया। श्री शाह ने कहा कि किसानों और ग्रामीण भारत के लिए उनके आजीवन समर्पण ने देश पर अमिट छाप छोड़ी है। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। जियांग शान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं चंदन दास के गाए इस नगमे के साथ।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: सबरंग कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह का गाया ये नगमा।

0: बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम का गाया ये गीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप आनंद ले रहे हैं मिले जुले गीतों और गजलों के कार्यक्रम सबरंग का।

श्रोताओं, तलत अजीज़ के गाए इसी नगमे के साथ आज का सबरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार, नवाचार, डिजिटल लर्निंग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प की पूर्ति में शिक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने ये बात मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में प्रतिभाग करते हुए कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं तथा देश के और प्रदेश का भविष्य उनकी प्रतिभा, मेहनत और संकल्प पर निर्भर करता है। देहरादून के सैलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। यह कार्यवाही श्रमिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने के बाद की गई। प्रशासन ने सैलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता धारा 163 लागू की है। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों को लागू प्रतिबंधों को जानकारी देते हुए शांति बनाए रखने की और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। सचिव ने बताया कि CBSE ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। सचिव ने कहा कि CBSE ने पूर्व मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है। राजधानी देहरादून में डेंगू और जल जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों की बैठक लेकर अस्पतालों में डेंगू जांच, इलाज, दवाइयों, ब्लड बैंक और पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहे और डेंगू का कोई मामला सामने आने पर तुरंत कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी ने नगर निगम और नगर निकायों को शहर के सभी छोटे बड़े नालों और ड्रेनेज की सफाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में वॉलंटियर्स और रैपिड रिस्पॉन्स टीम तैनात करने, नियमित फॉगिंग और लार्वा नष्ट करने के लिए रासायनिक छिड़काव कराने को भी कहा गया है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड एवं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के संकल्प को पौड़ी गढ़वाल में नई दिशा मिल रही है। इस कड़ी में ग्राम्य विकास विभाग की ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत विकासखंड पौड़ी के संकेत स्वायत्त सहकारिता द्वारा स्थापित हिलांश मशरूम इकाई में बेमौसमी मटन मशरूम के सफल उत्पादन की शुरुआत हो गई है। यह पहल ग्रामीण आजीविका

0: संवर्धन, महिला सशक्तिकरण एवं स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। ग्रामोत्थान परियोजना प्रबंधक कुलदीप बिष्ट ने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर जोर दे रही है। ग्रामोत्थान परियोजना के सहयोग से स्थापित यह यूनिट स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग का सफल उदाहरण बनकर सामने आई है। उन्होंने बताया कि परियोजना के अंतर्गत ग्राम्य विकास विभाग के एक अनुपयोगी भवन का पुनर्विकास कर उसे आधुनिक मशरूम उत्पादन इकाई के रूप में विकसित किया गया है। यूनिट में कुल 2 इकाई उत्पादन इकाइयां स्थापित की गई हैं। प्रथम यूनिट में 500 मटन मशरूम बैग लगाए गए थे, जिनसे अब सफलतापूर्वक उत्पादन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर बहार। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को भारती जोशी का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, आज के सुरबहार में एक ही फिल्म के अंतर्गत हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म की जिसने प्रेम को सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि सामाजिक सोच और संवेदनाओं से जोड़कर प्रस्तुत किया, फिल्म प्रेम रोग। श्रोताओं, साल 1982 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन किया था हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर ने। मुख्य भूमिकाओं में थे ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी। श्रोताओं, फिल्म की शुरुआत होती है एक बड़े जमींदार परिवार से जहां रहती है मासूम और चंचल मनोरमा, और उसी गांव में रहता है देवधर जो बचपन से ही मनोरमा से प्रेम करता है। तो आइए शुरू करते हैं संगीत और संवेदनाओं से भरा ये सफर और सुनते हैं बचपन की मासूमियत और सपनों को दर्शाता ये गीत जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देता है।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय कार्यक्रम सुरबहार में एक ही फिल्म के तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रेम रोग के गीत। श्रोताओं, मनोरमा की शादी एक बड़े राजघराने में कर दी जाती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। शादी के तुरंत बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। यहीं से फिल्म समाज की कठोर परंपराओं और महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाती है। मनोरमा का जीवन बदल जाता है, लेकिन देवधर उसका साथ नहीं छोड़ता। वो सिर्फ उससे प्रेम ही नहीं करता, बल्कि उसे सम्मान और जीने का अधिकार दिलाना चाहता है। तो आइए अब सुनते हैं फिल्म का एक बेहद मधुर और लोकप्रिय गीत, जिसमें प्रेम की मासूमियत और मन की धड़कनें सुनाई देती हैं।

श्रोताओं, पे प्रेम रोग केवल प्रेम कहानी नहीं थी, ये फिल्म समाज में पीड़ितों के प्रति होने वाले भेदभाव पर करारा प्रहार थी। राज कपूर साहब ने इस फिल्म के माध्यम से ये संदेश दिया कि एक महिला को भी सम्मान और पुनः जीवन जीने का पूरा अधिकार है। तो लीजिए, पेश है फिल्म का एक और खूबसूरत गीत जिसमें प्रेम की सादगी और दिल की गहराई महसूस होती है।

श्रोताओं, फिल्म के कई दृश्य आज भी दर्शकों के मन में बसे हुए हैं, विशेषकर वो दृश्य जब देवधर पूरे समाज के सामने मनोरमा का हाथ थामता है और उसे सम्मानपूर्वक अपनाने का निर्णय लेता है। फिल्म के अंत में देवधर समाज की परवाह किए बिना मनोरमा से विवाह करता है और यही इस कहानी की

तो श्रोताओं, ये थी कहानी फिल्म प्रेम रोग की, एक ऐसी फिल्म जिसने प्रेम को समाज की बंदिशों से ऊपर उठाकर देखा। उम्मीद है आपको आज का सुरबहार का ये अंक पसंद आया होगा। अब अगली मुलाकात तक के लिए भारती जोशी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

सैनिक भाइयों, फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना प्रेम पुजारी फिल्म से मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। लीजिए अगला गीत है बॉर्डर फिल्म से सोनू निगम और रूप कुमार राठौर की आवाज़ में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को धुनों में पिरोया है अनु मलिक ने।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना फना फिल्म से महालक्ष्मी अय्यर का गाया ये गीत। गीतकार थे प्रसून जोशी, संगीतकार जतिन ललित। कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से कुमार सानू की आवाज़ में इस गीत को, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और धुनों से सजाया है आर डी बर्मन ने।

सैनिक भाइयों, कुमार सानू के गाए 1942 अ लव स्टोरी फिल्म के इसी गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। जय हिंद।

लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित भीमसेन जोशी का ठुमरी गायन, बोल है जमुना के तीर। आपके साथ तबला संगत की है एम सबीर खान ने और हारमोनियम पर है पुरुषोत्तम वालावालकर।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए, FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं।

पंडित भीमसेन जोशी की गाई ठुमरी अभी आपने सुनी। हारमोनियम पर थे पुरुषोत्तम वलवलकर, तबला संगतकर्ता साबिर खान। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित मानस चक्रवर्ती का राग मिश्र पीलू में ठुमरे गायन। बोल हैं भरी मोरी गगरी उठा दे। तबला संगतकर्ता हैं समर साहा। हारमोनियम पर साथ दिया है रंजना मुखोपाध्याय ने।

शास्त्रीय संगीत अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं और इस समय श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: मेरी पसंद की सभी श्रोताओं को अंजु पांगती का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं फिल्में मनोरंजन का खास सशक्त माध्यम हुआ करती हैं, और क्षेत्रीय फिल्मों की बात करें या फिर बॉलीवुड की फिल्में सदा ही दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती रही हैं। बॉलीवुड की ही तरह साउथ फिल्म इंडस्ट्री भी अपने आप में समृद्ध फिल्मों के लिए जानी जाती रही हैं। कई ऐसी दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत की फिल्में हैं जिन्होंने साउथ की फिल्मों में धूम मचाई और वो इतनी दर्शकों को भाई कि उनका रीमेक बॉलीवुड में बना। ऐसी फिल्मों की यूं तो एक लंबी फहरिस्त है, और आज मेरी पसंद में हम चुनिंदा फिल्मों की बात आपसे करेंगे और सुरीले गाने भी आपको सुनवाएंगे। तो एक तरह से भरपूर मनोरंजन हम अपने श्रोताओं का करेंगे आज की मेरी पसंद में। श्रोताओं, इसी क्रम में पहले हम चलते हैं 50 और 60 के दशक की ओर। 1956 में साहेब बीवी गोलाम ये फिल्म आई, और 1962 में साहेब बीवी और गुलाम ये फिल्म आई। बिमल मित्रा के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित दोनों फिल्में ब्रिटिश राज के दौरान सामंती बंगाल के अंतिम दिनों में घटित होती हैं, और एक कुलीन व्यक्ति की पत्नी और एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण के बीच के निस्वार्थ रिश्ते को ये फिल्म दर्शाती है। बांग्ला संस्करण में उत्तम कुमार, सुमित्रा देवी, छवि बिस्वास और पहाड़ी सान्याल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई, जबकि हिंदी रीमेक में मीना कुमारी, रहमान, गुरुदत्त और वहीदा रहमान ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। तो आप समझ ही गए, साहेब बीबी गुलाम 1965 में जो प्रदर्शित हुई वो बांग्ला फिल्म थी, और जो हिंदी में प्रदर्शित हुई वो साहेब बीबी और गुलाम थी। तो श्रोताओं, दक्षिण भारतीय फिल्मों की बात करें या बांग्ला फिल्मों की बात करें, तो हर तरह की क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों का जो रीमेक है वो हमारे बॉलीवुड में कई फिल्मों के ज़रिए हमने देखा है। हिंदी रीमेक समय के साथ ये जो फिल्म है एक कल्ट फिल्म बन गई, और इसे समीक्षकों द्वारा बेहद सराहा गया। इसने व्यावसायिक रूप से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मीना कुमारी की ट्रेजेडी क्वीन की छवि को हमेशा के लिए अमर कर दिया, और इस फिल्म ने कई पुरस्कार भी जीते, जैसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए भी फिल्म फेयर पुरस्कार से इस फिल्म को नवाजा गया। तो साहेब बीवी और गुलाम इस फिल्म का गाना आपको सुनाते हैं।

पंडित मानस चक्रवर्ती का राग मिश्र पीलों में ठुमरी गायन अभी आप सुन रहे थे। तबला संगत करता थे समर साहा, हारमोनियम पर रंजना मुखोपाध्याय।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, 2007 की बात करें तो इस साल कॉमेडी हॉरर फिल्म भूल भुलैया प्रदर्शित हुई थी। ये फिल्म प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित, नीरज वोरा की पटकथा और टी सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म है। ये मलयालम फिल्म मणिचित्र थाझू की रीमेक फिल्म है और मणिचित्र थाझू साल 1993 में रिलीज हुई थी। भूल भुलैया फिल्म में अक्षय कुमार, विद्या बालन, शाइनी आहूजा, अमीषा पटेल,

परेश रावल, राजपाल यादव, मनोज जोशी, असरानी और विक्रम गोखले ने अहम किरदार निभाए और व्यावसायिक तौर पर भी ये फिल्म बहुत ही सफल रही। और इस फिल्म में विद्या बालन की अवनी और मंजिलिका के किरदार बेहद दर्शकों द्वारा सराहे गए। और इसी फिल्म में राजपाल यादव की कॉमिक टाइमिंग भी दर्शकों को बहुत पसंद आई। और इस फिल्म के बाद इसी फिल्म का भूल भुलैया का दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट भी धमाकेदार रहा। बहरहाल एक धमाकेदार गीत भूल भुलैया फिल्म से।

श्रोताओं, इसी क्रम में साल 2008 में फिल्म आई गजनी, गीता आर्ट्स के बैनर तले बनी एआर मुर्गाडोस द्वारा निर्देशित और निर्मित 2008 की ये एक सफल फिल्म रही। और ये फिल्म तमिल में पहले रिलीज हुई और उसके बाद ये गजनी नाम से, इसी नाम से बॉलीवुड में आई और आमिर खान को इस फिल्म में बेहतरीन किरदार के रूप में दमदार रोल में दिखाया गया है और जिसे देखकर दर्शक हतप्रभ रह गए। बहुत ही खूबसूरत, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है इस फिल्म में और इस फिल्म में उनके साथ आसिन और ज़िया खान ने भी अहम रोल निभाए। तो गजनी फिल्म का एक गाना श्रोताओं आपके लिए।

तमिल सूर्या फिल्म की रीमेक है सिंघम। फिल्म सिंघम में अजय देवगन ने बाजीराव सिंघम नाम के एक पुलिस ऑफिसर की मुख्य भूमिका निभाई और अजय देवगन के अलावा इस फिल्म में काजल अग्रवाल और प्रकाश राज ने भी अपने महत्वपूर्ण किरदारों को निभाया। सिंघम 2011 की हिंदी एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित फिल्म रही। इस फिल्म की सक्सेस के बाद इसका दूसरा पार्ट सिंघम रिटर्न्स भी बेहद सक्सेसफुल रहा। इसके बाद सिंघम अगेन भी बेहद सफल फिल्म रही। तो इस फिल्म का एक गाना श्रोताओं आपके लिए।

श्रोताओं, साल 2017 में तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की रीमेक 2019 में बनी कबीर सिंह। ये दोनों ही फिल्मों का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया था और ये फिल्में एक धनी कुशल सर्जन की कहानी बयां करती हैं जो स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है और जब उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर किसी और से विवाह कर लेती है तो उसकी ज़िंदगी किस तरह से बीतती है, यही इस फिल्म में बताया गया है। और अंततः कैसे वो खुद को सुधारता है, यही बाकी की कहानी है। अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे मुख्य भूमिकाओं में रही, जबकि कबीर सिंह में शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी ने प्रेमी प्रेमिकाओं की ज़बरदस्त भूमिका निभाई थी। दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रही और दर्शकों द्वारा बेहद पसंद की गई। तो इसे फिल्म का एक गाना है।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

आप सभी का आज के घर संसार कार्यक्रम में आप सभी श्रोता बहनों को सखियों को आपके रेडियो सखी संगीता तिलारा का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं बहनों आप सभी? हम तो हमेशा यही उम्मीद करते हैं और यही दुआएं करते हैं कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराती रहें और इसी मुस्कुराहट के साथ ये कार्यक्रम यूं ही हमेशा सुनती रहें। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहनों, आज हम सब की दुनिया मोबाइल की स्क्रीन में सिमटती जा रही है। सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन चेक करना, रात में सोने से पहले आखिरी बार फ़ोन, रील्स, स्टेटस और लाइक्स, इन सब के बीच कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते पीछे छूटते जा रहे हैं। बहनों, सोशल मीडिया बुरा नहीं है, ये आज की ज़रूरत है। ये हमें दुनिया से जोड़ता है, जानकारियाँ देता है और दूर बैठे लोगों के करीब लेके आता है। लेकिन ऐसे में अगर घर बैठे लोग ही इससे दूर हमसे दूर होने लगें, उनसे मिलना, मन की बातें साझा करना, अगर ये सब भूल जाएं तो क्या ये सही है? और बहनों, आज हम आपके साथ जो चर्चा कर रहे हैं उसका विषय भी सोशल मीडिया के समय सामाजिक बने हैं। बहनों, सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहना आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ ही साथ सामाजिक बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। सामाजिक बनने का मतलब है कि अपने आसपास के लोगों से जुड़ना, बड़ों का हाल पूछना, बच्चों के साथ एक अच्छा समय बिताना और दोस्तों से मन की बातें साझा करना, क्योंकि हम सभी को सिर्फ इंटरनेट ही नहीं अपनापन भी चाहिए होता है। बहनों, ज़रा सोचिए, कोई पास बैठा हो और हम सिर्फ फ़ोन में व्यस्त रहें, जब बच्चे कुछ कहना चाहें तो हम बस दो मिनट कहकर उन्हें टाल दें, तो धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। बहनों, हमें इस सोशल मीडिया के दौर में सामाजिक बनना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया से हमारा समय कब बीतता है हमें पता ही नहीं चलता। समय और रिश्तों को हम एक तरह से इसकी वजह से खोते जा रहे हैं, इसलिए इन सब से बाहर निकलने की एक कोशिश ज़रूर करें। दिन में थोड़ा समय मोबाइल के बिना बिताएं, परिवार के साथ चाय पिएं, समय बिताएं, अपने लोगों के साथ बैठें, हंसें, बातें करें, पड़ोसियों से जब मिलें मुस्कुरा कर मिलिए, बच्चों के साथ समय तो बहनों ज़रूर बिताएं, उनकी बातों को सुने, उनके साथ बैठें, हंसें, खेलें, क्योंकि ज़िंदगी स्क्रीन में नहीं अपनों की मुस्कान में बसती है। बहनों, आखिर में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया हमारी सुविधा है, ज़रूरत है, लेकिन हमारे आपसे रिश्तों की जगह कभी नहीं ले सकता। याद रखिए, सोशल मीडिया की ये दुनिया कुछ पल की खुशी हमें ज़रूर दे सकती है, लेकिन हमारे अपनों का साथ ज़िंदगी भर का हमें सुकून देता है। इसलिए सोशल मीडिया से जुड़े रहिए अपने खूबसूरत रिश्तों के साथ। तो अपनी चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं और बहनों, कार्यक्रम में सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: स्वागत है बहनों, एक बार फिर से आप सभी का। आप सुन रही हैं अपना कार्यक्रम घर संसार। बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेगमेंट शक्ति, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी नारी शक्ति से जो अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन में, समाज में आगे बढ़ रही हैं। और आज की हमारी नारी शक्ति ने अपने हौसलों को नई उड़ान दी है। इन्होंने सपनों को सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि उन्हें सच करने की एक नई शुरुआत भी की है। मेहनत, आत्मविश्वास और कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ इन्होंने अपने स्टार्टअप हेल्दी क्रस्ट की नींव रखी है। आइए मिलते हैं सुश्री शिखा शर्मा से, जो उद्यमी है नानक मत्ता उधम सिंह नगर में। बहनों, आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने उत्तराखंड के पारंपरिक मिलेट यानी मोटा अनाज को अपनी पहचान बनाया है। अपनी मेहनत और लगन और जज्बे से इन्होंने न सिर्फ अपना स्टार्टअप शुरू किया है, बल्कि मडवा पहाड़ी उत्पादों को नया अंदाज दिया है। हमारे साथ हैं सितारगंज उधम सिंह नगर की शिखा शर्मा, जो एक उद्यमी है और स्टार्टअप शुरू किया है। तो शिखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे घर संसार कार्यक्रम में।
1: संगीता मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो हम जो आपने स्टार्टअप किया है, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैम, बेसिकली ये जो मेरा स्टार्टअप है, ये जिस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, उस समय से इसका आइडिया जो है मेरे दिमाग में आया था। मैंने अपनी कॉलेज में ग्रेजुएशन के दौरान एक 12 दिन की EDP अटेंड की थी, जो देवभूमि उद्यमिता योजना के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी हमारे कॉलेज में। तो वहां से मुझे जो है बिजनेस के बारे में थोड़ा जानने के लिए मिला कि स्टार्टअप कैसे किया जा सकता है और एक छोटे से छोटा इंसान कम अपनी पूंजी को लगा करके उसको शुरू कर सकता है।

0: है घर से ही।
1: जी
0: तो हाँ बच्चा, बेकिंग वगैरह में तो मैं घर में पहले से ही करती थी, कभी केक बना लिया, कभी कुछ बना लिया, पर इसको एज अ स्टार्टअप की नज़र से मैंने नहीं देखा था।
1: जी
0: तो मेरी जो मेंटोर हैं उनके सहयोग से ये आइडिया मेरे दिमाग में आया।
1: जी
0: फिर मेरे घर में ही शुगर पेशेंट है, एक नहीं तीन तीन, तो उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम मंडुवे और ये झिंगोरा वगैरह से शुगर फ्री उत्पाद बनाना चालू करें जो मार्केट में अवेलेबल हों।
1: जी
0: क्योंकि मैंने मेरे लोकल मार्केट को जितना भी एक्सप्लोर किया है, मुझे यहाँ पे कहीं पे भी मंडुवे या रागी के बिस्किट नहीं मिले। तो इसकी शुरुआत मैंने अपने घर से ही करी, जिसमें मेरी मम्मी ने और मेरी बहन ने मेरे को सहयोग किया। तो इसको धीरे धीरे हमने DUI की मदद से लास्ट ईयर फेब्रवरी में फर्स्ट टाइम अपने एग्जीबिशन में लगाया था स्टॉल। तो वहाँ से मेरे को नए कनेक्शन मिलते गए जिससे हम आगे बढ़ते गए।
1: जी और शिखा जी, पहाड़ी अनाजों को आधुनिक उत्पाद, जैसे आपने बिस्किट्स और केक वगैरह आप बोल रही हैं, तो उसको बदलने का कैसा अनुभव रहा आपका?
0: शुरुआत में मैम बहुत दिक्कतें आई, मेरे पास अवन भी नहीं था,
1: जी
0: तो मैं गैस के ऊपर भगोने में बनाती थी ये।
1: जी
0: और मुझे एग्जीबिशन भी लगाना था फेब्रवरी में देहरादून में, एक मेगा स्टार्टअप समिट हुआ था। तो उस समय मेरे लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था, मेरे पास कोई पूंजी भी नहीं थी। तो मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से अरेंज करके फर्स्ट टाइम अपना एक अवन लिया, जिसके थ्रू आज भी मैं काम कर रही हूँ।
1: जी
0: तो वहां से जो है मेरे धीरे धीरे आगे बढ़ने के चांसेस आए। प्लस ये क्या मुश्किलें आई, सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि एक बिस्किट को बेक करने के लिए सही टेम्परेचर चाहिए होता है, सब चीज़ें प्रॉपर एटमोसफेयर चाहिए होता है, जो मेरे पास नहीं था। तो वो मेरे लिए एक सबसे कठिन घड़ी थी।
1: जी आपने बताया कि मुश्किलें आई आपके जीवन में, तो कैसे आपने सामना किया इन चुनौतियों का, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: इसमें मैम मैं अपनी मम्मी के लिए कहूँगी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया।
1: जी
0: मेरे जो बिस्किट थे, मैं मफिन्स वगैरह में तो एक्सपर्ट थी, लेकिन बिस्किट में जब मैं आई तो स्टार्टिंग में मेरे बिस्किट मॉइस्ट रहते थे। अब उनको लंबे समय तक क्रिस्पी रखने के लिए मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत आई थी। तो उसमें मेरी मम्मी ने ही मेरे को आइडिया दिया कि तुम इसको थोड़ा चेंज करो प्रोसेस को, अवन वगैरह लाओ। तो जो है इस तरीके से हम लोगों ने इसका सामना किया। एक दो बार हमारा बैच जो है ख़राब हुआ, बट वही है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात।
1: जी
0: एक दो बार जो है इस तरीके से हमारा सामान खराब होने के बाद फिर हमारी चीजें धीरे धीरे सही बनना चालू हुई।
1: जी तो शिखा जी, अभी आपने जैसे मोटा अनाज से शुरू किया है अपना स्टार्टअप, तो क्या क्या उत्पाद तैयार करती हैं अभी आप?
0: अभी मैम मैं बेसिकली ग्लूटेन फ्री बिस्किट वगैरह रेडी कर रही हूँ शुगर वाले पेशेंट्स के लिए, प्लस मंडुवे के बिस्किट रेडी कर रहे हैं हम। कुछ हमने आटे वाली वैरायटीज भी रखी हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, उनको ये सब चीज़ें नहीं आती पसंद,
1: जी
0: तो उनके लिए हमने मंडुवे की ब्राउनी एक लॉन्च करी है, उसका प्रीमिक्स वगैरह। अभी और प्रीमिक्स पे हम काम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें जो जिम वाले लोग हैं, वो आजकल धीरे धीरे हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो उनके लिए हम मंडुवे की ब्राउनी प्रीमिक्स भी रेडी कर रहे हैं अभी।
1: जी, आप इतने उत्पाद अभी बना रही हैं शिखा जी, तो इन उत्पादों की शुद्धता और जायका यानी स्वाद को बरकरार रखने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखती हैं?
0: मैम ये जितने भी प्रोडक्ट है ये हमारे घर के ही किचन में रेडी होते हैं,
1: जी
0: ऐसा कोई प्रोफेशनल बेकरी नहीं है हमारी। और महिलाओं से ज्यादा इस चीज को अच्छे से कौन समझ सकता है कि अगर कोई चीज रसोई में रेडी हो रही है तो उससे ज्यादा शुद्ध जगह और क्या ही होगी। प्लस
1: जी
0: हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जो मार्जरीन वगैरह है हम वो यूज ना करके मक्खन में बना रहे हैं इनको, क्योंकि बहुत से लोगों को घी से दिक्कत होती है, हमने मक्खन का यूज किया है। आगे देखते हैं, अगर मक्खन से भी बेटर हमें कोई और ऑप्शन मिलता है तो उसको यूज करेंगे हम इसमें।
1: जी तो आपने शुद्धता और स्वाद का तो पूरा ख्याल रखा ही है, और स्वाद के साथ ही हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक होते हैं ये मोटे अनाज से बने हुए बिस्किट्स वगैरह।
0: मैम अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जो हमारे मोटे अनाज हैं उनमें फाइबर ज़्यादा होता है,
1: जी
0: और आजकल के जितने भी शुगर वाले लोग हैं वो मैदा तो दूर की बात रही, आटे वाले बिस्किट तक नहीं खा सकते। कुछ लोगों को इतना ज़्यादा हाई लेवल का शुगर है, तो उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए हमने बिस्किट्स में कुछ वैरायटीज ऐसी लॉन्च करी हैं जो कि स्पेशली ऑर्डर पे ही बनती है, जिनको हाई शुगर है। जैसे कि हमारे मंडुवे के बिस्किट के साथ हम शुगर ना यूज करके जैगरी हो गया, और जो कोकोनट शुगर होती है वो शुगर वाले पेशेंट को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता जो हमारा कोकोनट शुगर होता है।
1: जी
0: बट प्रॉब्लम ये है, जो भी बिस्किट हम कोकोनट शुगर वाले बनाते हैं वो केवल ऑर्डर पे ही बनाते हैं, क्योंकि हमें कोकोनट शुगर यहाँ से नहीं, बैंगलोर से मंगाना पड़ता है।
1: जी आपने बताया कि जो कोकोनट शुगर है उसे आप बेंगलोर से मंगाती है, लेकिन जो मोटा अनाज है तो इसे कहाँ से उपलब्ध कराती है?
0: ये मैम मैं अल्मोड़ा मुक्तेश्वर साइट से अरेंज कराती हूँ, तो जो छोटे फार्मर्स हैं उनसे हम लोग ये अरेंज करते हैं, जिससे इसका फायदा उन्हें भी हो। जैसे पहाड़ पे पलायन की जो स्थिति आ रही है आजकल, उनके बच्चे दिल्ली या बाहर शहरों में जाके काम कर रहे हैं, माँ बाप घर में अपना छोटा बहुत फार्मिंग कर रहे हैं ये मोटे अनाज की, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा काम है वो हेल्थ पे भी ध्यान दे, प्लस पहाड़ में जो छोटे कृषि हैं उनको भी इस चीज का फायदा हो।
1: जी, यानी कि आप जो छोटे कृषक हैं उनको भी इस काम के लिए बढ़ावा देके फायदा देना चाहती हैं।
0: हाँ जी
1: जी शिखा जी, क्या आप स्थानीय महिलाओं को भी इस काम काज या कच्चे माल की सप्लाई से जोड़ रही हैं अभी, या कितनी महिलाओं को आपके साथ अभी काम करती हैं?
0: मैम, अभी तो मेरे फैमिली में मेरी मम्मी और सिस्टर ही मेजरली मेरे साथ सपोर्ट दे रही हैं,
1: जी
0: बाकी ऐसी कोई लेडीज अभी बाहर से मेरे इसमें नहीं आई है, बट हम लोग हायरिंग अभी करने का सोच रहे हैं क्योंकि काम जो है वो एक्सपेंड हो रहा है अब धीरे धीरे,
1: जी
0: तो होपफुली कि हमको अगर बेकरी के फील्ड में कोई बढ़िया काम करने वाला मिलेगा तो हम जरूर हायर करेंगे उनको।
1: जी यानी अन्य महिलाओं को भी आप अपने साथ रोजगार देंगी। शिखा जी, बाजार में पहले से बहुत ज्यादा मौजूद हैं बड़े ब्रांड्स के बिस्किट्स वगैरह, इस बीच कितना मुश्किल रहा बड़े ब्रांड्स के सामने इसको लॉन्च करना या इसकी बिक्री करना या अपने ग्राहकों तक इसे पहुंचाना?
0: मैम, इतने बड़े ब्रांड के बीच में आना, इतनी पुरानी पुरानी बेकरीज के बीच में आना, आसान बात हमारे लिए नहीं है ये।
1: जी
0: हाँ, ये लोगों का ट्रस्ट है कि हाँ होम बेकरी है तो ये शुद्ध देते होंगे, प्लस मेरे कुछ जो पुराने कस्टमर रहे हैं उनकी जो है माउथ वर्डिंग के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट हुई है वो मेरे को काफी ज्यादा सपोर्ट रहा है उसका, क्योंकि
1: जी
0: उन्होंने ही सबसे पहले हम पे ट्रस्ट किया और हमारे प्रोडक्ट्स को ट्राई किया और उनको अच्छे भी लगे और आगे भी सजेस्ट किया है,
1: जी
0: तो उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है हमें कहीं ना कहीं मार्केट में खड़ा करने के लिए, जिनका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।
1: जी शिखा जी, आप जितने भी ये उत्पाद तैयार करती हैं मोटा अनाज से, तो इनकी बिक्री कैसे करती हैं? बाजार कहाँ उपलब्ध होता है आपको?
0: मैम, एक तो हम हमारे लोकल मार्केट में जो बेकरीज या फिर जो शॉप है कन्फेक्शनरी वगैरह
1: जी
0: उसमें हमारे बिस्किट को रखवा रहे हैं, बाकी हम एग्जीबिशन के थ्रू अपना स्टॉल लगाते हैं अलग अलग एरिया में, वहां से लोगों का फीडबैक लेकर के हम और भी इसमें करेक्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अभी।
1: जी और जैसे आप इसमें स्टार्टअप कर रही हैं शिखा जी, तो अगर कोई भी महिला इससे जुड़ना चाहे या इस काम को करना चाहे तो क्या सुझाव देंगी आप उन्हें?
0: अगर वो इस टाइप का कुछ स्टार्टअप करना चाह रही हैं तो आजकल इंटरनेट पे इतने वीडियोस अवेलेबल हैं मैम, और इतने बेसिक से सामान से ये चीजें बनने लग गई हैं कि वो घर बैठे अपना कोई भी स्टार्टअप कर सकती हैं और किसी भी शॉप पे बात करके अपने बिस्किट को रखवा सकती हैं।
1: जी
0: अगर उनके एक दो पैकेट भी निकलते हैं ना, उनको डेफिनेटली इतना अमाउंट जरूर मिल जाएगा कि वो आगे चल के 10 पैकेट अपने रेडी करके इस काम को आगे बढ़ा सकती हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो हेल्प करता है वो हमारा सोशल मीडिया हो गया, वहां से हमें काफी अच्छी रीच मिलती है, तो वो इस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा सकती हैं।
1: जी शिखा जी, क्या कहना चाहेंगी हमारे घर संसार कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारी श्रोता बहनों से?
0: मैं मैम उनसे यही कहना चाहूंगी कि जो पहाड़ की औरतें हैं उनमें कम जज्बा नहीं होता है, वो चाहे तो अपने घर के बेसिक से नमक से भी अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड खड़ा कर सकती हैं, बस जरूरत है तो थोड़ा हिम्मत की, क्योंकि दुनिया रोकती है लेकिन रुकना नहीं चाहिए औरतों को। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो महिलाएं हैं उनको कुछ ना कुछ अपने जीवन में करते रहना चाहिए, जिससे उनका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा और उनको अपनी जीविका के लिए थोड़ी बहुत पूंजी भी अरेंज होती रहेगी। मैंने भी कहीं ना कहीं बहुत डर डर के कदम आगे बढ़ाए थे, लेकिन आज मैं इतनी सक्षम हूँ कि अपना खुद का एक ब्रांड खड़ा करने जा रही हूँ, तो मैं महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि वो इस चीज को डर के नहीं डट के सामना करें।
1: जी शिखा जी, आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। आपने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो अपनी जड़ों से जुड़कर भी कामयाबी के आसमान को छुआ जा सकता है, और हम आपके स्टार्टअप के लिए यही दुआ करेंगे कि आपका स्टार्टअप खूब अच्छा ब्रांड बन के आए और आप अच्छा स्वास्थ्य और स्वाद हम सभी तक पहुँचाएं, और आपके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।
2: बहनों, अभी आप शक्ति सेगमेंट के अंतर्गत सुन रही थी हौसलों की उड़ान एक नई शुरुआत विषय पर सुश्री शिखा शर्मा, उद्यमी नानक मत्ता उधम सिंह नगर से की गई ये क्षेत्र संकलित बातचीत। अपने कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है? बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

स्वागत है बहनों, एक बार फिर से आप सभी का। आप सुन रही हैं अपना कार्यक्रम घर संसार। बहनों, आज के समय में हर महिला आत्मनिर्भर बनना चाहती है, कुछ नया करना चाहती है, लेकिन कई बार आर्थिक कमी होना उनके सपनों के रास्ते में आ जाता है। ऐसे में सरकार की महिला समृद्धि योजना महिलाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आई है। और बहनों, आज हम अल्पसंख्यकों हेतु योजनाओं के अंतर्गत जानेंगे महिला समृद्धि योजना के विषय में। बहनों, ये योजना खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इसके माध्यम से महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है ताकि वे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। जैसे अगर कोई बहन सिलाई कढ़ाई सीखकर बुटीक खोलना चाहती हो, कोई ब्यूटी पार्लर शुरू करना चाहती हो, डेयरी, छोटी दुकान या घर से भी कोई काम शुरू करना चाहती हो, तो वो इस योजना का लाभ ले सकती है। महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन बहनों राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, जिला अल्पसंख्यक कार्यालय या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाता है। और इसके लिए जरूरी दस्तावेज हैं आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज के फोटो। बहनों, इसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन भी प्राप्त की जा सकती है। इस योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है या स्वयं सहायता समूह बनवाए जाते हैं, कम ब्याज पर लोन देकर छोटे व्यवसाय के लिए सहायता मिलती है जिसे हमारी बहनें प्राप्त कर सकती हैं। बहनों, इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि ये केवल आर्थिक सहायता ही नहीं देती बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनके आत्मविश्वास को मजबूत बनाती है। और जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो सिर्फ स्वयं का नहीं बल्कि पूरे परिवार का भविष्य उज्जवल होता है। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें, आगे बढ़ें और अवसरों का लाभ जरूर उठाएं और महिला समृद्धि योजना के लिए जागरूकता फैलाएं। हो सकता है कि हमारी एक छोटी सी जानकारी किसी की जिंदगी बदल दे। बहनों, इन जानकारी भरी जो हमारी चर्चा है, बातें हैं, अब हम को यहीं पर विराम देते हैं और कार्यक्रम में आपका करते हैं मनोरंजन इस खूबसूरत गीत के साथ।

बहनों, इसी गीत के साथ समय हो गया है आज के घर संसार कार्यक्रम को संपन्न करने का। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। तो बहनों, घर संसार कार्यक्रम के अगले अंक में फिर होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस समय अपनी रेडियो सखी संगीता तिलारा को दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे 1:05 पर उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण

निर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पहले मुख्य समाचार। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने केदारनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुमाऊं के तराई वन क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर वन विभाग पूरी तरह अलर्ट। राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने तेज की प्रक्रिया। और चमोली जिले के देवाल में 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन लोकगीत व लोक नृत्य कार्यशाला का आयोजन। नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से

0: जोड़ना और लोक परंपराओं को संरक्षित करना है उद्देश्य। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने केदारनाथ धाम पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल से संवाद करते हुए कर्तव्य निर्वहन में आ रही चुनौतियों का फीडबैक भी लिया। उन्होंने केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऋषिकेश से सोनप्रयाग और केदारनाथ धाम तक सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस महानिरीक्षक ने धाम में भीड़ प्रबंधन और लाइनों में प्रतीक्षा समय कम करने सहित श्रद्धालुओं के लिए की गई अन्य व्यवस्थाओं को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पुरोहित समाज और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित दिशा निर्देश भी दिए।
1: जब से हमारे श्री धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं तो भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और इस बार भी श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जो कि विगत वर्षों के बाद इस बार बढ़ी हुई संख्या आ रही है। मेरे द्वारा पूरी यात्रा मार्ग का ऋषिकेश से लेके सोनप्रयाग तक का भ्रमण किया गया, फिर केदारनाथ धाम का भ्रमण किया गया। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई और यहाँ के एसपी रुद्रप्रयाग ने अवगत कराया कि समुचित व्यवस्था यहाँ पे है। जो फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो भी समुचित ढंग से हुआ है और जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
0: कुमाऊं के तराई वन क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर वन विभाग पूरी तरह अलर्ट है। तराई पूर्व के प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बांगरी ने कहा कि पूरा तराई क्षेत्र वन्यजीव के दृष्टिगत बेहद समृद्ध और संवेदनशील है, जहां वन्यजीवों की अच्छी खासी आबादी है और जंगलों से लगे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं। कई बार ग्रामीण जंगलों में आवाजाही करते हैं, जिससे अचानक वन्यजीवों से आमना सामना हो जाता है और हादसे हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रभागीय वन अधिकारी हिमांशु बांगरी ने बताया कि हाल ही में विभाग ने जंगल किनारे रहने वाले लोगों को बड़ी संख्या में टॉर्च वितरित किए हैं, ताकि रात के समय लोग सुरक्षित तरीके से आवाजाही कर सकें। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में घटनाएं अधिक हो रही हैं, वहां जरूरत के अनुसार पिंजरे लगाए जा रहे हैं और वन्य जीवों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया कि अब विभाग वैज्ञानिक तरीके से वन्य जीव प्रबंधन पर काम कर रहा है। इसके तहत वन्य जीवों की गणना, उनकी आवाजाही और व्यवहार का अध्ययन कर भविष्य की रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जंगल में कभी अकेले न जाएं, अंधेरे में टॉर्च का प्रयोग करें और चलते समय हल्की आवाज करते रहें, ताकि वन्य जीवों से अचानक सामना न हो। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से जयवीर सिंह।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते 4 साल में सरकारी सेवा में चयनित हुए कार्मिकों को डिजिटल माध्यम से पत्र लिखकर उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि बीते 4 साल में राज्य सरकार द्वारा लगभग 30,000 से अधिक युवाओं को राजकीय सेवक के रूप में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है और यह अभियान आगे भी जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कठोर नकल विरोधी कानून के साथ ही निष्पक्ष, ईमानदार और पारदर्शी चयन प्रक्रिया ने भी युवा प्रतिभा को उचित सम्मान मिलना सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने चयनित कार्मिकों से निष्पक्ष और ईमानदार रहकर अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन करने की अपील करते हुए कहा है कि राजकीय सेवक के रूप में वो मानवीय मूल्यों के साथ आमजन की सेवा में हमेशा तत्पर रहें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई चयनित युवाओं से दूरभाष पर बात कर उन्हें उत्साहपूर्वक जनसेवा में योगदान देने की भी अपील की है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में जिलाधिकारी समीन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर लंबित चिन्हीकरण प्रकरणों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए 7 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि चिन्हीकरण प्रक्रिया में क्षेत्रीय आंदोलनकारी समितियों के सदस्यों को शामिल किया जाएगा ताकि वास्तविक आंदोलनकारियों के मामलों का निष्पक्ष परीक्षण हो सके। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश देने के साथ ही इसमें देरी होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के तत्वावधान में चमोली जिले के राजकीय इंटर कॉलेज लुआणी देवाल में 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन लोकगीत व लोक नृत्य कार्यशाला आयोजित की जा रही है। पद्मश्री से सम्मानित राज्य की लोक गायिका बसंती बिष्ट के मार्गदर्शन में स्कूली बच्चों और ग्रामीण महिलाओं को उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति से जुड़े गीत और नृत्य सिखाए जा रहे हैं। इस कार्यशाला में झोड़ा, चांचड़ी, थड़िया और झुमेलो जैसे पारंपरिक लोक नृत्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्रीमती बिष्ट ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना और लोक परंपराओं को संरक्षित करना है।
4: अब ये 20 दिवसीय कार्यक्रम है, उत्तर सांस्कृतिक पटियाला के अंतर्गत ये आया है। इसमें हम जो अभी हमारी विलुप्त हो चुकी है संस्कृति, झोड़ा, चांचड़ी, चंपला और दूसरी गाथाएं और लोक नृत्य, शुद्ध लोक नृत्य को हम सिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मेरी भूमि है, मेरा गांव है, ये ग्राम वाणी राजकीय विद्यालय जो यहाँ है। यहाँ 3 गाँव के बच्चे और महिलाएं आ रही है और पहले तो नियंत्रण में नहीं आए, लेकिन अब लोगों का रुझान होने लगा है अपनी संस्कृति के प्रति।
0: कार्यशाला को लेकर ग्रामीण महिलाओं और छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रतिभागियों का कहना है कि इस पहल से उन्हें अपनी लोक संस्कृति को नजदीक से जानने और सीखने का अवसर मिल रहा है।
5: सब सीख रहे हैं, झोड़ा सीख रहे हैं, चांदड़ी सीख रहे हैं, चपला सीख रहे हैं, मांगल गीत सीख रहे हैं और सब कुछ अच्छा ही लगा। जो हमारी सांस्कृतिक प्रारंभिक वो है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। परंपरा है जो हमारी, वो हमको भी अच्छा लग रहा है। हम ऐसे न चाहे कि हमारे हम भूल सके इस परंपरा को, और यही हमको अच्छा लगा।
6: जो घर का सिखा रहे हैं ये लोग, वही हम सीख रहे हैं और हमको भी चॉइस है ये सीखने का। आई रे आज हो गए हमें 5-6 दिन तो हो ही गए, चौफुला चांचड़ी ये सिखा रहे हैं।
7: आजकल का जमाना है डीजे में चल रहा है, तो ये पुराने जमाने के लोग नृत्य को भूल जा रहे हैं, तो हमारे जो यहाँ पे सिखाने के लिए आ रहे हैं वो बहुत अच्छे तरह से सिखा रहे हैं हमको। लोक नृत्य हो गया, झोला, चांचड़ी, चापुला बहुत अच्छे तरह से सिखा रहे हैं हमको।
0: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कल देर रात देहरादून में अनारवाला मालसी मोटर मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क है जिससे स्थानीय निवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा यातायात व्यवस्था और अधिक सुगम होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए और आमजन को न्यूनतम असुविधा हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार जनता के लिए सदैव तत्पर है और जनहित के प्रत्येक कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने केदारनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुमाऊं के तराई वन क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर वन विभाग पूरी तरह अलर्ट। राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने तेज की प्रक्रिया और चमोली जिले के देवाल में 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन लोकगीत व लोक नृत्य कार्यशाला का आयोजन। नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना और लोक परंपराओं को संरक्षित करना है उद्देश्य। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
8: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत।

0: स्वामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: तो श्रोताओं, सुगम संगीत का आगाज कर रहे हैं दानिश अलीगढ़ी के कलाम से। आवाजें हैं अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: और जब सुनिए पयाम सईदी का कलाम चंदन दास की आवाज में।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: Akashvani at 90.
1: और अब प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं समीर का गीत, स्वर दिया है अदनान समी ने।

अदनान समी के गाय से गीत के साथ सुगम संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1286।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
3: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
3: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
3: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
3: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
3: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
3: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
3: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
3: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
3: जी।
2: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
3: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
2: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
3: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
2: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
3: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं लेकिन हम कहेंगे, विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
3: जी विमलेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
3: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम

0: like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Langlingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा।
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है। विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करछंती।
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा।
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
12: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
13: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
12: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
14: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियाँ जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के

0: आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
1: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
0: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
1: बिल्कुल होता है।
0: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
1: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
0: है ना
1: जी।
0: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूँ। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूँ।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
2: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
0: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
0: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
0: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
4: अच्छा।
0: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
0: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आस

0: पास हूँ तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे
1: जी? ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मात्र वृक्षों के बारे में।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें

0: वहां के वृक्षों के बारे में?
1: हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फॉस्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
0: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। शुभारंभ कर रहे हैं दीवान सिंह डोलिया और साथियों के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आ लीजिए अब सुनिए गढ़वाली लोकगीत, गायिका है संगीता जोशी।

0: उत्तराखंड के लोकगीत अभी श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार, दिल्ली केंद्र से रिले।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद

0: वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण

0: निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112

0: अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है कृषि उत्पादन में जैव उर्वरकों की महत्ता एवं उपयोग। जानकारी दे रहे हैं श्री नवीन चंद्र बेलवाल।
3: किसान भाइयों व बहनों, जैसा कि आज पूरे विश्व में मानव जनसंख्या में लगातार वृद्धि होने से इस बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए जो हमारी खेती है उससे अधिक उत्पादन लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देश में अधिक कृषि उपज लेने के लिए कृषि भूमि की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। यह तभी संभव हो पाएगा जब हमारे खेतों की मिट्टी स्वस्थ व उपजाऊ बनी रहे, जिससे हमारे किसान भाई लंबे समय तक खेतों से उत्पादन लेते हुए एक टिकाऊ खेती को स्थापित कर सकेंगे। जैसा कि अधिक उत्पादन लेने के लिए रासायनिक खादों, कीटनाशक व रोगनाशक रसायनों का खेती में अधिक प्रयोग होने से आज इन रसायनों द्वारा अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इन रसायनों के कारण खेत की मिट्टी, पानी, जलवायु, पर्यावरण में अत्यधिक हानिकारक रसायनों के रहने से इनके द्वारा मानव, पशु पक्षियों व अन्य जीव जंतुओं पर

इनके हानिकारक प्रभाव देखे जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हर वर्ष 2 लाख लोग कृषि में प्रयोग हो रहे हानिकारक रसायनों के कारण मारे जाते हैं। खेती में रसायनों के प्रयोग से आ रही गंभीर समस्याओं को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों से किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर जैविक खेती को अपनाया जा रहा है। आज कृषि में रसायनों का प्रयोग कम से कम करने व जैविक साधनों से खेती करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। जैविक साधनों में जैविक खादों का कृषि में महत्वपूर्ण स्थान है। इन जैविक खादों में कंपोस्ट खादें हैं, हरी खाद है, वर्मी कंपोस्ट व जैव उर्वरक ये प्रमुख खादें हैं। बहनों, आज कृषि उत्पादन में जैव उर्वरकों की महत्ता एवं उपयोग पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि जैव उर्वरक आखिर हैं क्या। जैव उर्वरक खेती में प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक उर्वरक हैं। ये जैव उर्वरक मिट्टी में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विशेष सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं। इन उर्वरकों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा हवा में स्थित नाइट्रोजन, जिसको पौधे सामान्यतया शोषित नहीं कर पाते, ये उर्वरक हवा में विद्यमान नाइट्रोजन को पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इसी तरह मिट्टी में स्थित अघुलनशील फास्फोरस, जिसे पौधे सामान्यतया नहीं ले पाते, सूक्ष्म जैव उर्वरक इस फास्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार पोटाश की उपलब्धता फसल में बढ़ाने के लिए पोटाश संचरण जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ ही धान की रोपाई वाली फसल में नील हरित शैवाल व एजोला फर्न धान की फसल में नाइट्रोजन को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। आज हमारे देश में अनेकों सरकारी विभाग एवं निजी क्षेत्रों के उद्यमी इन जैव उर्वरकों का निर्माण कर रहे हैं। पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के आधार पर इन जैव उर्वरकों में नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक, फास्फोरस उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक, इसके साथ ही पोटास उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक और साथ ही जिंक, सल्फर व आयरन उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक भी इस वक्त उपलब्ध हैं। इनमें राइजोबियम नामक जैव उर्वरक दलहनी फसलों में नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। इस उर्वरक का प्रयोग दाल वाली फसलों जैसे चना, मसूर, राजमा, मूंग, उड़द आदि में तथा तिलहनी फसलों में सोयाबीन व मूंगफली, और जो चारे वाली हमारी फसलें हैं उनमें बरसीम और इसका में इस जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। यह राइजोबियम जैव उर्वरक दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों का निर्माण कर वायुमंडल में जो नाइट्रोजन घुली रहती है उसको लेकर पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक दलहनी फसल में अलग अलग जाति के राइजोबियम जीवाणु जड़ों में गांठों का निर्माण करते हैं, इसलिए किसान भाई ये हमेशा ध्यान रखें कि प्रत्येक दलहनी फसल के लिए राइजोबियम जैव उर्वरक भी अलग अलग प्रयोग करने होते हैं। राइजोबियम जैव उर्वरक का प्रयोग दलहनी फसलों में करने से 10-20% तक अधिक उपज पाई गई है। दलहनी फसलों के अलावा खाद्यान्न फसलों में नाइट्रोजन पोषक तत्व की वृद्धि के लिए एक जैव उर्वरक है जिसको एजेटोवेक्टर जैव उर्वरक कहते हैं। यह जीवाणु मुक्त रूप से नाइट्रोजन योगीकरण क्रिया द्वारा मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एकत्र कर पौधों के उपयोग लायक बनाता है। एजेटोवेक्टर जैव उर्वरकों के प्रयोग से गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, सरसों व सूर्यमुखी आदि की फसलों में 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन तक एक हेक्टेयर में उपलब्ध हो जाती है, जिससे इन फसलों की पैदावार में 10% तक की वृद्धि देखी गई है। खाद्यान्न व तिलहनी फसलों के अलावा एजेटोवेक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग सब्जियों जैसे टमाटर, आलू, भिंडी, गोभी व बैगन आदि फसलों में भी किया जा सकता है। देखा गया है कि एजेटोवेक्टर जैव उर्वरक कुछ बीज जनित फफूंद की रोकथाम में भी उपयोगी रहता है। तीसरी तरह के नाइट्रोजन प्राप्त करने वाले जैव उर्वरकों में एजो स्पाइरेलियम नामक जैव उर्वरक है। ये जीवाणु भी मिट्टी में मुक्त रूप से रहकर वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इस जैव उर्वरक का प्रयोग सभी धान्य फसलों व सब्जियों में किया जा सकता है। इस जैव उर्वरक के प्रयोग से उपज में 10-15% तक की वृद्धि देखी गई है। एजो स्पाइरेलियम जैव उर्वरक को अपने कार्य वृद्धि के लिए बहुत ही कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिससे यह उर्वरक धान की रोपाई की गई फसल में भी अच्छा कार्य करता है। अब बात आती है फास्फोरस उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरकों की। इन्हें फास्फेट विलयकारी जैव उर्वरक भी कहा जाता है। हमारे खेतों की मिट्टी में स्थित

फास्फोरस का कुछ भाग पौधों को उपलब्ध होने की अवस्था में नहीं रहता है। फास्फेट बेलागारी जैव उर्वरक के जीवाणु इसे उपलब्ध हो सकने वाली अवस्था में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इस जैव उर्वरक का प्रयोग सभी दलहनी धान्य फसलों व अन्य फसलों में किया जाता है। इस फास्फेट बेलागारी जैव उर्वरक के प्रयोग से 10 से 20 किलोग्राम फास्फोरस जो है वो तत्व प्रति हेक्टेयर फसल में उपलब्ध हो जाता है। अलग अलग फसलों में इससे करीब 5 से 25% तक की जो फसलों में है वो वृद्धि देखी गई है। इसके साथ ही पोटाश की फसल में उपलब्धता बढ़ाने के लिए पोटाश घुलनशील जीवाणु उर्वरक है, और इसी तरह जिंक की फसल में उपलब्धता बढ़ाने वाले जिंक घुलनशील जीवाणु उर्वरक तथा आयरन व सल्फर घुलनशील जीवाणु उर्वरकों का भी फसलों में प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। अब जैव उर्वरकों का प्रयोग कैसे करना है किसान भाई, यह जानना बहुत आवश्यक है, जिससे सही तरीके से जैव उर्वरकों का प्रयोग कर फसलों से अच्छा उत्पादन लिया जा सके। जैव उर्वरकों का प्रयोग बोई जाने वाली फसल के बीजों को उपचारित कर, रोपाई की जाने वाली फसल के पौधों की जड़ वाले भाग को जैव उर्वरक के घोल में डुबोकर या सीधे खेत में भी इन उर्वरकों का प्रयोग किया जा सकता है। साधारणतया जैव उर्वरकों का प्रयोग बीज में उपचार विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में जो है जैव उर्वरक की 20 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज उपचार के लिए आवश्यकता पड़ती है। यदि जो बीज हैं वो बड़े आकार के हैं, जैसे राजमा, फ्रांस बीन, सोयाबीन, चना, मक्का, तो इन बीजों के उपचार के लिए 1 किलोग्राम बीज में 30 से 40 ग्राम जैव उर्वरक की आवश्यकता होगी। बीजों को जैव उर्वरकों से उपचारित करने के लिए जो है 1% गोंद या गुड़ का पानी में घोल बना लें। अब जिन बीजों को उपचारित किया जाना है उन्हें किसी साफ फर्श या पॉलिथीन के ऊपर रखकर इसमें इस बने हुए घोल को धीरे धीरे डालकर हल्के हाथों से बीज में मिलाएं, जिससे घोल समान रूप से बीजों पर लग जाए। अब बीज की मात्रा के अनुसार इन बीजों के ऊपर जैव उर्वरक फैला दें तथा हल्के हाथ से इन बीजों को इस प्रकार मिलाएं, जिससे हर बीज पर इस जैव उर्वरक की एक परत लग जाए। अब इन उपचारित बीजों को छाया में सुखाकर और इसकी तुरंत फिर खेत में बुवाई कर दें। नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरकों को एक साथ मिलाकर प्रयोग करने से भी फसल की उपज में अधिक वृद्धि देखी गई है। सब्जियों तथा अन्य फसलों में जिनकी रोपाई की जानी है, इसमें रोपाई की जाने वाली फसलों की पौध को उखाड़कर जड़ों को साफ पानी से धो लें, फिर पौधों की जड़ों को जैव उर्वरक के घोल में 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रोपाई करनी चाहिए। घोल व जैव उर्वरक की मात्रा रोपाई की जाने वाली पौध की मात्रा के अनुसार रखनी चाहिए। आलू आदि कंद वाली फसलों के बीजों को जैव उर्वरक के 10% घोल में 5 से 10 मिनट तक इनके कंदों को डुबोकर उपचारित कर तब बुआई करनी चाहिए। यदि किसान भाई बुआई किए जाने वाले बीजों को रासायनिक फफूंदनाशक या अन्य रसायनों से उपचारित कर रहे हों, तो रसायनों से उपचारित करने के बाद ही जैव उर्वरकों का प्रयोग इन बीजों में करना चाहिए। जैव उर्वरकों का प्रयोग सीधे खेत में भी किसान भाई कर सकते हैं। इसके लिए एक नाली खेत के लिए 40 से 50 किलोग्राम कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट या फिर खेत की भुरभुरी मिट्टी दो में 200 से 250 ग्राम जैव उर्वरक को अच्छी प्रकार मिलाकर जो खेत की अंतिम जुताई करते हैं उस समय खेत में मिला दें। धान की रोपाई की गई फसल में जो है उसमें हरित शैवाल, एजोला फर्न व माइकोराजा का प्रयोग करने से भी धान की उपज में 15 से 20% तक की उपज में जो है वो वृद्धि देखी गई है। कम लागत लगाकर जैव उर्वरकों के प्रयोग से फसलों के उत्पादन में वृद्धि तो होती है, इसके साथ ही फसल में रोगों से बचाव व खेत की मिट्टी को उपजाऊपन बढ़ाने में भी इन उर्वरकों का विशेष महत्व रहता है। जैव उर्वरकों के प्रयोग में कुछ सावधानियां किसान भाई अवश्य रखें, इनमें जिससे इनमें लगने वाली लागत से कहीं अधिक उत्पादन फसलों से प्राप्त किसान भाई कर सकते हैं। सबसे पहले प्रयोग में लाए जाने वाले जैव उर्वरकों को हमेशा विश्वसनीय स्थान से ही लें। इन पैकेटों के ऊपर जो लिखी हुई समयावधि है उसके अंदर ही इनका प्रयोग कर लें। बुवाई के समय खेत की मिट्टी में नमी का ध्यान रखें। इनके प्रयोग के समय खेत में नमी होनी चाहिए। अधिक अम्लीय या क्षारीय मिट्टी में इन जैव उर्वरकों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। अगर आपकी मिट्टी जो है अम्लीय या क्षारीय है तो ऐसी भूमि में मृदा सुधार के उपाय करने चाहिए।
जैव उर्वरकों से अधिक लाभ लेने के लिए खेतों में जीवांश की सही मात्रा होनी आवश्यक है, जिसके लिए खेतों में अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग किसान भाई करें। जैसा कि पर्वतीय कृषि में लगभग 85% खेती का क्षेत्रफल वर्षा पर निर्भर है, जिसे हम उपराव खेती के नाम से जानते हैं। इस उपराव खेती में अधिकांश खेती जैविक खादों के प्रयोग द्वारा ही की जाती है। जो 15% सिंचित खेती यहाँ पर है, उसमें रासायनिक खादों के साथ ही हमारे किसान भाई बहन जैविक खादों का भी भरपूर प्रयोग करते हैं। फसल को पोषक तत्व और अधिक मात्रा में प्राप्त हों, इसके लिए एक सस्ते और आसान साधन के रूप में जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर किसान भाई खेतों से अच्छा व अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।

कृषि उत्पादन में जैव उर्वरकों की महत्ता एवं उपयोग, इस विषय पर खेती की बातें कार्यक्रम में अभी श्रोता सुन रहे थे श्री नवीन चंद्र बेलवाल से जानकारी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 5:05 पर कुमाऊनी लोकगीत सुनिएगा शैल स्वर में। आज कलाकार होंगे गोपाल सिंह सतवाल। शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, आज का इतिहास, और इसी कार्यक्रम में वार्ता प्रसारित होगी। विषय रहेगा संस्कृति संरक्षण में संग्रहालयों का महत्व। वार्ताकार होंगी मेघा कपकोटी। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम सुनिएगा। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसके अलावा इस कार्यक्रम में जन सामान्य के लिए संग्रहालय का महत्व, इस विषय पर समन्वय स्वामी विवेकानंद महात्मा गांधी अध्ययन केंद्र SSG विश्वविद्यालय के श्री चंद्र प्रकाश फुलेरिया से भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। भेंट करता होंगे संजय जोशी। शाम 6:41 पर भक्ति संगीत सुनिएगा। आज सिंपल राजा और ओम व्यास के गाए भजन आपको सुनवाएंगे। शाम 7 बजे ग्राम जगत कार्यक्रम प्रसारित होगा जिसमें आज की बातें होंगी किसान क्रेडिट कार्ड योजना विषय पर और चर्चा का विषय रहेगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7:40 पर, रात 9:15 पर इंद्रधनुष में, इसके अलावा रात 10:30 पर। रात 8 बजे सुगम संगीत हम लेकर आएंगे सब रस में, इसके अलावा रात 10 बजे भी सुगम संगीत श्रोता सुन सकेंगे। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 2:45 हुए हैं। श्रोता समय सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। आज फनकार हैं मशहूर अभिनेत्री राखी। श्रोताओं, राखी जिन्हें हम राखी गुलजार के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 15 अगस्त 1947 को एक बंगाली परिवार में पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले में राणाघाट इस स्थान पर हुआ था और बचपन में उनका नाम राखी मजूमदार था। राखी ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा राणाघाट के गर्ल्स स्कूल से प्राप्त की और उनके एक बड़े भाई शिवरंजन मजूमदार बांग्ला फिल्मों के निर्माता रहे हैं। राखी का विवाह जाने माने लेखक निर्देशक निर्माता गुलजार

से हुआ तो विवाह के बाद वो राखी गुलजार के नाम से जानी जाने लगी। राखी के फिल्मी करियर की बात करें तो सन 1967 में 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बांग्ला फिल्म वधु वरण से की। उन्होंने अपने करियर में बांग्ला और हिंदी दोनों ही भाषाओं की फिल्मों में काम किया और वधु वरण के दौरान राखी की अदाकारी से पहली बार सुनील दत्त प्रभावित हुए और उन्होंने फिल्म रेशमा और शेरा में मुख्य किरदार के तौर पर उन्हें लेना चाहा। लेकिन इससे पहले ही राखी ने फिल्म जीवन मृत्यु जो कि साल 1970 में रिलीज हुई, इस फिल्म के लिए उन्होंने खुद को साइन कर लिया और इस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और हम कह सकते हैं कि ये फिल्म राखी की बॉलीवुड की डेब्यू फिल्म थी और राजश्री प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले ये फिल्म तैयार हुई थी।

श्रोताओ, साल 1971 में फिल्म शर्मीली में राखी गुलजार को पहली बार बॉलीवुड फिल्मों में डबल रोल करने का अवसर मिला। इसमें उन्होंने शशि कपूर और धर्मेंद्र के साथ अभिनय किया और इसी साल उन्होंने फिल्म लाल पत्थर और पारस में भी मुख्य भूमिकाएं निभाई और ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई और इसी के साथ राखी बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ अदाकाराओं में गिनी जाने लगी।

सुश्रुतो, राखी गुलजार ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 95 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें शशि कपूर के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज़्यादा सुपरहिट रही। शर्मीली जानवर और इंसान, कभी कभी तृष्णा, बसेरा, पिघलता आसमान, बंधन, कच्चे दागों का, बंद होठ, जमीन आसमान, दूसरा आदमी, 1, 2, 3, 4, पिघलता आसमान, आंचल, हीरा पन्ना, बनारसी बाबू, जोशीला, लूटमार जैसी कई चर्चित फिल्मों में उन्होंने काम किया। बाद में वो चरित्र अभिनेत्री के रूप में भी फिल्मों में नजर आईं, जैसे अनाड़ी, बाजीगर, खलनायक, करण अर्जुन, बॉर्डर, एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव जैसे फिल्मों में उन्होंने दमदार अभिनय का जलवा बिखेरा। उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 3 बार फिल्मफेयर अवार्ड उन्हें मिला और 1973 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म दाग के लिए मिला और तपस्या फिल्म में 1976 में और 1989 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म राम लखन के लिए उन्हें मिला और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी वो 2 बार सम्मानित हुई। पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें साल 2003 में नवाजा गया।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार, और आज फनकार थी जानी मानी मशहूर अभिनेत्री राखी गुलजार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं और समय हम लेकर आते हैं सदाबहार फिल्मी गीत।

सदाबहार फिल्म गीत के सभी श्रोताओं को अंजू पांगते का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, माँ की छवि को बिल्कुल नए रूप में ढालकर एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया जानी मानी अभिनेत्री रीमा लागू ने। एक दौर ऐसा भी था जब माँ का किरदार बेबस, लाचार, मजबूर आवरण में छिपा रहता था और उन्होंने यानी रीमा लागू ने आधुनिक खुश रहने वाली हंसती मुस्कुराती जिंदगी को जिंदा दिली से जीने वाली माँ की छवि में उन्होंने अपनी एक खास इमेज बनाई जिसे दर्शकों ने उन्हें माँ के रूप में बेहद सराहा और मुख्यतः हम उन्हें माँ के शानदार किरदार के लिए, उनकी शानदार भूमिकाओं के लिए उन्हें जानते हैं। आज रीमा लागू को ख़ास तौर पर हम याद कर रहे हैं क्योंकि आज है 18 मई उनकी पुण्यतिथि, तो उन्हें श्रद्धा नमन करते हुए आज उन्हीं की अभिनीत फिल्मों के चंद नगमे संजो कर लाए हैं सदाबहार फिल्मी गीत में।

सुश्रुतो रीमा लागू का जन्म 3 फरवरी सन 1958 को बंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनका वास्तविक नाम गुरिंदर भादभाड़े था। वो जानी मानी मराठी अभिनेत्री मंदाकिनी भादभाड़े की पुत्री थी। उनके अभिनय की काबिलियत तब सामने आई जब वे पुणे के हुजूर पागा HHCP हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थीं। प्रोफेशनल तौर पर अभिनय करने के लिए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और उनका विवाह मराठी अभिनेता विवेक लागू से हुआ और विवाह के बाद उन्हें रीमा लागू के नाम से हम जानने लगे।

माँ के रूप में रीमा लागू ने फिल्म मैंने प्यार किया से अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस फिल्म में सलमान खान की माँ की भूमिका में वो नज़र आई थीं और सलमान खान के करियर में रीमा लागू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सलमान खान की कई बड़ी हिट फिल्मों में रीमा लागू उनकी माँ के किरदार में नज़र आईं और इस फिल्म के ज़रिए रीमा लागू पहली बार एक ऐसी माँ के तौर पर नज़र आईं जो हिंदी सिनेमा की पारंपरिक माँ की छवि से बिल्कुल विपरीत थी। और खूबसूरत इस माँ को जब दर्शकों ने देखा तो उनकी छवि को बहुत पसंद किया और उनका किरदार भी बिल्कुल जुदा था। इसमें वो अपने बेटे सलमान खान के साथ बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार करती थी और ये छवि उनकी दर्शकों को बहुत भाई।

रीमा लागू ने रंगमंच से अपने अभिनय का सफर शुरू किया था और वो कई जानी मानी सुपरहिट फिल्मों में तो नजर आई ही, इसके अलावा छोटे पर्दे पर भी उन्होंने अपना जलवा बिखेरा। टीवी धारावाहिक जो कि बेहद प्रचलित रहा, बेहद प्रसिद्ध रहा, वो धारावाहिक था तू तू मैं। इस धारावाहिक में वो सास के किरदार में नजर आईं और उन्होंने दर्शकों को अपने इस किरदार से बेहद हंसाया भी। अपने दौर के मशहूर फिल्मों में हम एक और फिल्म शामिल करना चाहेंगे जिसमें उनकी छवि को बेहद सराहा गया। वो फिल्म थी साल 1994 में प्रदर्शित हम आपके।

ये है कौन। इस फिल्म में रीमा लागू माधुरी दीक्षित और रेणुका शहाणे की माँ की भूमिका में नजर आईं और इस फिल्म में वो एक बार फिर हिंदी सिनेमा की दुखियारी माँ की छवि को तोड़ती नजर आईं। इस फिल्म में वो बेहद खूबसूरत माँ के किरदार में दिखाई दी, जिसे दर्शकों की तरफ से खूब सारा स्नेह मिला और ये एक ऐसा किरदार था जहाँ रीमा लागू ने भारतीय माँ को बेहद कूल बना दिया।

तो शुद्ध ममता और स्नेह से भरी माँ का रोल निभाने के लिए रीमा लागू हमेशा जानी जाती रहीं। सलमान खान के करियर में रीमा लागू का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे कि मैंने बताया था, सलमान खान की कई बड़ी फिल्मों में रीमा लागू उनकी माँ की भूमिका में नज़र आईं। और ये भी बताया जाता है कि सलमान खान की जिन फिल्मों में भी उन्होंने माँ का रोल अदा किया, वो फिल्म सुपरहिट रही। हालत तो ये थी कि लोग उन्हें सलमान खान की माँ कहकर पुकारने लगे। उनके चेहरे पर ममता और स्नेह ने उन्हें वास्तविक जीवन में भी सलमान खान की माँ बना दिया। उस पर

संयोग भी ऐसा रहा कि जिस भी फिल्म में रीमा सलमान की मां बनी उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सबसे पहले फिल्म मैंने प्यार किया जो कि सुपरहिट रही, उसके बाद पत्थर के फूल, फिर साजन, हम साथ साथ हैं, जुड़वा जैसी फिल्मों में वो नज़र आई। हालांकि हम आपके हैं कौन इस फिल्म में रीमा लागू सलमान खान की हीरोइन माधुरी दीक्षित की मां बनी थी और ये फिल्म भी सुपरहिट रही। तो हम साथ साथ हैं फिल्म की बात करें, ये साल 1997 में आई और इस फिल्म में रीमा आलोक नाथ के साथ नज़र आई थी। इस फिल्म में दोनों कलाकार के अलावा इस फिल्म में सलमान खान, सैफ अली खान, मोहनीश बहल, नीलम कोठारी इस फिल्म में थे और इनके माता पिता की भूमिका में ये दोनों ही कलाकार थे, रीमा लागू और आलोक नाथ। और इस भूमिका में रीमा आदर्श माँ के किरदार में खूब जमी थीं और इस फिल्म में उनका एक नकारात्मक भाग भी देखने को मिला, लेकिन बाद में उन्होंने अपने प्यार और ममत्व से इस किरदार में जान फूंक दी।

रीमा लागू को फिल्म मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन के लिए साल 1990 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अभिनेता राहुल रॉय की आशिकी और संजय दत्त की वास्तव फिल्म के लिए भी उन्हें इसी सम्मान से नवाजा गया था। उन्होंने भारतीय सिनेमा की कई जानी मानी फिल्मों में कई चर्चित फिल्मों में काम किया। मैंने प्यार किया, वास्तव, आशिकी, साजन, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, कयामत से कयामत तक, नाजायज़, पत्थर के फूल, वास्तव, जिस देश में गंगा रहता है, कहीं प्यार ना हो जाए, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, सैंडविच, गुमराह, दिलवाले, जय किशन, रंगीला, जुड़वा, यस बॉस, दीवाना मस्ताना, कुछ कुछ होता है जैसी कई फिल्मों में उन्होंने अपनी बेहतरीन अभिनय का लोहा मनवाया। मैंने प्यार किया फिल्म की एक दोस्ती से भरी प्यार ममत्व की भावना से ओतप्रोत माँ हो या वास्तव फिल्म की कठोर माँ या फिर ये दिल लगी की मालिकाना माँ, रीमा लागू हर तरह की भूमिकाओं में हर तरह की माँ के रोल को उन्होंने बखूबी निभाया था।

श्रोताओं, रीमा लागू अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय रहीं। चाहे रंगमंच की बात हो, विज्ञापन फिल्मों की बात हो या फिर टीवी धारावाहिकों की बात हो, वो सक्रिय रहीं अंत तक। और 18 मई 2017 को वो इस नश्वर संसार को हमेशा के लिए अलविदा कह गईं। लेकिन उनकी अभिनीत सशक्त फिल्मों के जरिए हम हमेशा उन्हें याद करेंगे। आज सदाबहार फिल्मी गीतों का सफ़र यहीं तक। इजाज़त दीजिए अंजू पांगती को। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी की अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम की 5 बजने वाली हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ हो रही है। हमारे ये प्रसारण इस समय मीडियम वेव 187.3 मीटर अर्थात 1602 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी पिथौरागढ़ और FM 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बागेश्वर से भी रिले किए जा रहे हैं। सभा के आरंभ में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी इस समय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: श्री मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री कल तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत विधि और न्याय मंत्रालय कल से गुजरात के गांधीनगर में ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों SOM की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि SOM बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के वरिष्ठ अधिकारी वैकल्पिक विवाद समाधान ADR से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। वहीं विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं, ताकि समय पर सहायता प्रदान की जा सके और वे देश के नागरिकों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। केरला में नई UDF सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और रसोईया कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना शामिल है। राज्य में नई विधानसभा का सत्र इस महीने की 21 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जिसमें नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और अध्यक्ष का चुनाव होगा।

0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान WHO के महानिदेशक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों और वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारियों में नेतृत्व की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्ले ऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5:05 हुई है। लीजिए सुनिए कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलसुर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गोपाल सिंह सतवाल का गाया ये कुमावनी लोकगीत।

गोपाल सिंह सतवाल की गाई इस कुमावनी लोकगीत के साथ ही हमारा आज का कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलसुर संपन्न हुआ। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले हमारी सभा के शेष और कल की मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। पहले एक नजर हमारी सभा के शेष प्रसारणों पर।

आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्किन और 9:30 पर पब्लिक स्पीक, ये दोनों कार्यक्रम हमारी दिल्ली केंद्र से रिले होंगी। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के उपलक्ष पर अल्मोड़ा की पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय में आयोजित समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हम अपने देहरादून केंद्र से रिले करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में आज आप वार्ता सुनेंगे, विषय होगा संस्कृति संरक्षण में संग्रहालयों का महत्व। वार्ताकार होंगी मेधा कपकोटी। उत्तरायण कार्यक्रम में शाम 5:45 पर आज आप सुनेंगी जन सामान्य के लिए संग्रहालय का महत्व विषय पर समन्वयक स्वामी विवेकानंद महात्मा गांधी अध्ययन केंद्र सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय के श्री चंद्र प्रकाश फ्लोरिया से संजय जोशी की भेंट वार्ता। भक्ति संगीत सुनिएगा। शाम 6:41 पर ग्राम जगत कार्यक्रम होगा संध्या 7 बजे। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 7:40 पर। रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष में और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत में सुगम संगीत सुनिएगा रात्रि 10 बजे। ये थे हमारे सभा के शेष प्रसारण। अब कल के मुख्य प्रसारण पर एक नजर। हमारी कल की प्रातःकालीन प्रसारण समारंभ होगी 5:55 पर। विचार बिंदु आप सुनेंगे 6:05 पर। 6:10 पर सुनिए भक्त संगीत आराधना। आज की बात का प्रसारण समय होगा 6:40 पर। विविधा कार्यक्रम सुनिएगा 6:50 पर। 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान पाठ से अगला प्रसंग। लोकमंजरी कार्यक्रम में विमला बोरा और साथियों के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत हम लेकर आएंगे 7:30 पर। हमारी सायंकालीन सभा में रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट स्कन कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा। रात 10 बजे खेल दर्पण हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी देहरादून से रिले होंगे। हमारे केंद्र से शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर और रात्रि 10:30 पर। हिंदी कार्यक्रम सुनिए 7:50 पर। फिल्म संगीत हमारे केंद्र से प्रसारित

होगा गीत नजर कार्यक्रम में प्रातः 9:05 पर, सुरबहार में 10:35 पर, 11 बजे सैनिकों के लिए कार्यक्रम में, दिन में 12 बजे मेरी पसंद कार्यक्रम में, फिल्म संगीत एक फनकार में 2:45 पर, अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्मी गीत में, संध्या 7:40 पर फिल्म संगीत में, और इंद्रधनुष कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर। सबरंग कार्यक्रम पेश होगा प्रातः 10:05 पर, 11:30 पर आप सुनेंगे लोक सुर अर्पण। महिलाओं का कार्यक्रम दिन में 12:30 पर प्रसारित होगा। कल इस कार्यक्रम में चर्चा सुनिएगा आर्थिक आत्मनिर्भरता और शिक्षा, वास्तविक सशक्तिकरण। सुगम संगीत पेश होगा 1:15 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1287वीं कड़ी हम ले करेंगे दिन में 1:30 पर। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनेंगे 2 बजे, और 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम। हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5:05 पर सुनिए शैलस्वर कार्यक्रम। कलाकार होंगे गोपाल बाबू गोस्वामी। युवा साथी युवाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे आर्यन कुमार की वार्ता खेल से ऊपर खेल भावना। उत्तरायण कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 5:45 पर। 6:41 पर भक्ति संगीत। किसान वाणी कार्यक्रम में सुनिए भेंट वार्ता, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग कब और कैसे विषय पर डॉक्टर RP मीणा से। समय संध्या 7 बजे। फिल्म संगीत 7:40 पर। रात्रि 8 बजे होगा सबरस। गजलों का फरमाइशी कार्यक्रम महफिल प्रसारित होगा रात्रि 9:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाली हमारे सभा के शेष और कल की मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी रेडियो मित्र राशिका का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी के आज के अंक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे खजाने की जहां इतिहास बोलता है, संस्कृति मुस्कुराती है और विरासत जीवित रहती है। जरा सोचिए, अगर इतिहास बोल पाता तो वो हमें क्या क्या कहानियां सुनाता। राजाओं की वीरता की, वैज्ञानिकों की खोजों की, कलाकारों की कल्पनाओं की और हमारी संस्कृति की अनमोल धरोहरों की। ये सब हमें एक ही जगह जीवित मिलती है दोस्तों, वो है हमारे संग्रहालय यानी हमारे म्यूजियम्स में। इसी महत्व को समझाने के लिए हर वर्ष 18 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स द्वारा की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को अपनी संस्कृति, विरासत और इतिहास से जोड़ना। दोस्तों संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, प्रेरणा और सीख का जीवंत सागर है। यहाँ रखी हर मूर्ति, हर चित्र, हर ऐतिहासिक वस्तु अपने समय की कहानी कहती है। दोस्तों भारत में कई अद्भुत संग्रहालय हैं जो हमारे गौरवशाली इतिहास को संजोए हुए हैं, जैसे कि नेशनल म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम, भारत का सबसे पुराना और विशाल संग्रहालय जिसकी स्थापना 1814 में हुई थी, सलरजंग म्यूजियम जो अपनी अनोखी कला, ऐतिहासिक संग्रह के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय जहां भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिलती है, रेल म्यूजियम जो भारत की रेल यात्रा के इतिहास

बेहद ही रोचक तरीके से प्रस्तुत करता है। दोस्तों, आज के आधुनिक दौर में संग्रहालय भी तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब कई म्यूजियम्स में डिजिटल स्क्रीन, 3D मॉडल और वर्चुअल टूर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे युवा पीढ़ी इतिहास और विज्ञान को और अधिक रोचक तरीके से समझ पा रही है। दोस्तों, जिस देश की युवा पीढ़ी अपने इतिहास को जानती है, वो देश भविष्य की नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसीलिए संग्रहालय केवल अतीत नहीं दिखाते, बल्कि भविष्य को भी दर्शाते हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर एक संकल्प लें कि हम अपनी संस्कृति, विरासत और इतिहास को जानेंगे, समझेंगे और सहेज कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये था हमारा आज का इतिहास। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए करते हैं आपका मनोरंजन एक गीत के साथ।

दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। अब बढ़ते हैं आज के विशेष अंग संस्कृति जगत की ओर। दोस्तों जैसे कि हमने बात की कि किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति, कला और परंपराओं में होती है और इन्हें सहेज के रखते हैं हमारे संग्रहालय। तो दोस्तों आज संस्कृति जगत में हम ऐसे ही एक संग्रहालय या म्यूजियम की बात करेंगे जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है और वो है नेशनल म्यूजियम, जिसकी स्थापना

0: 1949 में नई दिल्ली में हुई थी। दोस्तों, नेशनल म्यूजियम केवल एक संग्रहालय नहीं, भारत की सांस्कृतिक आत्मा का दर्पण है। यहाँ लगभग 2 लाख से अधिक ऐतिहासिक और कलात्मक वस्तुएं संरक्षित हैं, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति की हजारों वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इस म्यूजियम में सिंधु घाटी सभ्यता की दुर्लभ वस्तुएं, प्राचीन सिक्के, हस्तलिखित पांडुलिपियां, बौद्ध अवशेष, सुंदर मूर्तियां, पारंपरिक वस्त्र और राजाओं के समय के शाही आभूषण भी देखने को मिलते हैं। यहाँ रखी कलाकृतियाँ हमें ये एहसास दिलाती हैं कि भारत की संस्कृति कितनी समृद्ध और विविधतापूर्ण है। दोस्तों, राष्ट्रीय संग्रहालय का एक विशेष आकर्षण है इसकी हड़प्पा गैलरी, जहाँ प्राचीन सभ्यता से जुड़ी वस्तुएं इतिहास को जीवंत बना देती हैं। इसके अलावा यहाँ मौर्य, गुप्त और मुगल काल के संबंधित संग्रह भारतीय इतिहास और संस्कृति की गौरवशाली झलक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, हो सके तो एक बार अवश्य नेशनल म्यूजियम जाएं और भारत की संस्कृति को जिएं। दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको सुनाते हैं वार्ता, जिसका विषय है सांस्कृतिक संरक्षण में संग्रहालयों का महत्व, और वार्ताकार है मेघा कपकोटी।
1: संस्कृति संरक्षण में संग्रहालयों का महत्व। संस्कृति किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है, यह उसके इतिहास, परंपराओं, कला, साहित्य, रीति रिवाजों और जीवन शैली का प्रतिबिंब होती है। समय के साथ समाज में परिवर्तन आते रहते हैं, जिससे अनेक प्राचीन वस्तुएं और पारंपरिक परंपराएं लुप्त होने लगती हैं। ऐसे में संग्रहालय संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संग्रहालय वह स्थान है जहां ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व की वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है और आम जनता के लिए प्रदर्शित किया जाता है। संस्कृति वह संपूर्ण जीवन पद्धति है जिसके अंतर्गत किसी समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, धर्म, कला, साहित्य, आचार विचार और जीवन शैली शामिल होते हैं। कहा जाता है, मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा जीता है और जैसा व्यवहार करता है, वही उसकी संस्कृति है। संस्कृति जन्मजात नहीं होती, बल्कि इसे मनुष्य समाज में रहकर सीखता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसका हस्तांतरण होता रहता है। यही कारण है कि संस्कृति समाज की निरंतरता को बनाए रखती है। संस्कृति स्थिर नहीं होती, बल्कि समय के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है। आधुनिकता, विज्ञान और वैश्वीकरण के प्रभाव से संस्कृति विकसित होती है। संस्कृति किसी भी समाज का दर्पण है और इसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी संस्कृति बनी रहे और आने वाली पीढ़ियों तक ज्ञान पहुँचे। संस्कृति संरक्षण में सांस्कृतिक धरोहर और संग्रहालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक धरोहर, कल्चरल हेरिटेज। सांस्कृतिक धरोहर एक अमूल्य खजाना है जो हमें अपनी जड़ों, पहचान और इतिहास से जोड़ता है। इसमें ठोस इमारतें, स्मारक और परंपराएं, भाषा, कला, संगीत, लोक कथाएं शामिल होती हैं। सांस्कृतिक धरोहर हमें हमारी पहचान देती है और पूर्वजों से जोड़ती है। पर्यटन और आर्थिक विकास। ऐतिहासिक स्थान और परंपराएं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास होता है। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। इमारतों, स्मारकों और कला को खराब होने से बचाने के लिए मरम्मत और देखभाल करना, ये समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। संस्कृति संरक्षण में संग्रहालयों का महत्व। संग्रहालय अर्थात वस्तुओं का घर। यहाँ प्राचीन मूर्तियाँ, शिलालेख, हथियार, चित्रकला, हस्तशिल्प, वस्त्र, सिक्के और अन्य बहुमूल्य धरोहरों को सुरक्षित रखा जाता है। संग्रहालय केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं होती, बल्कि यह ज्ञान और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी होता है। यह ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण प्राचीन वस्तुओं को सुरक्षित रखकर उन्हें नष्ट होने से बचाते हैं। ये वस्तुएं हमारे अतीत की कहानी बताती है और हमें जड़ों से जोड़ती हैं। संग्रहालय विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ देखकर सीखने का अवसर मिलता है और जो पुस्तकों से अधिक प्रभावशाली होता है। संग्रहालयों में विभिन्न प्रकार की कला, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, लोक कला आदि प्रदर्शित की जाती हैं, जिससे कलाकारों को प्रेरणा मिलती है और परंपराएं जीवित रहती हैं। संग्रहालय देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर

0: करते हैं जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है और आर्थिक विकास होता है। संग्रहालय अतीत और वर्तमान के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करते हैं। प्राचीन धरोहरों को सुरक्षित करके संग्रहालय उन्हें नष्ट होने से बचाते हैं। संग्रहालय शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो पुस्तकीय ज्ञान की तुलना में अधिक प्रभावशाली और स्थायी होता है। विद्यार्थियों को देखकर सीखने का अवसर मिलता है। भारत के संदर्भ में संग्रहालयों का महत्व। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है जहां विभिन्न धर्म, भाषाएं और परंपराएं हैं। इस विविधता को संरक्षित करने में संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के रूप में नेशनल म्यूजियम में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य और गुप्त काल से लेकर आधुनिक भारत तक की अमूल्य वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। यह संग्रहालय भारतीय इतिहास की निरंतरता और समृद्धि का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में स्थित संग्रहालय संस्कृति और लोक कला और परंपराओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में संग्रहालयों की भूमिका। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी विद्यमान है। यहां के लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक वेशभूषा और रीति रिवाज इस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है। उदाहरण के रूप में गोविंद वल्लभ पंत सरकारी संग्रहालय, जिसे राज्य संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, यह कुमाऊनी संस्कृति, इतिहास और कला के अध्ययन का प्रमुख केंद्र है, जिसमें कत्यूरी और चंद काल की कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। यह उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिला में स्थित है। आधुनिक युग में संग्रहालयों ने आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी उपयोगिता को बढ़ाया है। आज म्यूजियम में इंटरैक्टिव डिस्प्ले, डिजिटल स्क्रीन, ऑडियो गाइड और वर्चुअल टूर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। संग्रहालयों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे धन की कमी, रखरखाव में कठिनाई, सुरक्षा की समस्या और जन जागरूकता का अभाव। इन समस्याओं के लिए सरकार और समाज को मिलकर प्रयास करने चाहिए। विद्यालयों में संग्रहालय भ्रमण को अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़े। अंततः यह कहा जा सकता है कि संग्रहालय संस्कृति संरक्षण के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। वे न केवल हमारे अतीत को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि हमें हमारी पहचान से जोड़ते हैं और भविष्य की दिशा भी निर्धारित करते हैं। संग्रहालय हमारी धरोहर हैं, इन्हें सहेजना हमारा कर्तव्य है।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, जिसका विषय है संस्कृति संरक्षण में संग्रहालयों का महत्व, और वार्ताकार हैं मेघा कपकोटी। इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए करते हैं आपका मनोरंजन एक गीत के साथ।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आज के इतिहास की ओर और जानते हैं क्यों है आज का दिन खास इतिहास के पन्नों में। आज ही के दिन वर्ष 1991 में 27 वर्षीय हेलेन शर्मन ब्रिटेन की पहली अंतरिक्ष यात्री बनी थी। उन्होंने आज ही के दिन अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। हेलेन शर्मन लंदन के बर्बेक कॉलेज में केमिस्ट्री की पढ़ाई की थी। इसके बाद वे एक चॉकलेट फैक्ट्री में फूड केमिस्ट का काम करने लगी। एक दिन काम के बाद घर लौटते वक्त उन्होंने रेडियो पर एक एडवर्टीजमेंट सुना, एस्ट्रोनॉट चाहिए, कोई अनुभव जरूरी नहीं। हेलेन ने अपनी एप्लीकेशन भेजी और 13,000 लोगों में से वे चुनी गई। हेलेन को अपनी यात्रा से पहले 18 महीने के कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। इनमें शारीरिक, मानसिक और भाषाई स्तर पर उनकी तैयारी शामिल थी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आज ही के दिन उन्होंने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। इस मिशन के दौरान हेलेन ने स्पेस स्टेशन में मेडिकल और एग्रीकल्चरल टेस्ट किए। 7 दिन 21 घंटे और 13 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर हेलेन 26 मई को धरती पर लौट आई। आज ही के दिन वर्ष 1912 में पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्म श्री पुंडलिक रिलीज

हुई थी। आज ही के दिन वर्ष 1848 में जर्मनी में पहली नेशनल असेंबली का उद्घाटन हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1933 में भारत के 12वें प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का जन्म हुआ था। दोस्तों ये था हमारा आज का इतिहास। अब चलते हैं मनोरंजन की ओर एक गीत के साथ।

में बीते दिन पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर साथ ही सही उत्तर लिख भेजने वाले हमारे दोस्तों के नाम। दोस्तों, हमारा कल का पूछा गया प्रश्न था, विश्व हाइपरटेंशन दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही उत्तर है विश्व हाइपरटेंशन दिवस 17 मई को मनाया जाता है। और सही उत्तर लिख भेजने वाले हमारे दोस्तों के नाम है काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेश, सुषमा सुरेश, मायरा सुरेश, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, जगदीश जोहरी, ग्राम नागर कोरा जिला राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, गुमला झारखंड से एसएम जावेद। दोस्तों, इसी क्रम में नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न एक बार फिर, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। अगर जानते हैं आप इसका सही उत्तर तो लिख भेजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411100112 पर। सही उत्तर लिख भेजने वाले दोस्तों के नाम कल इसी कार्यक्रम में उद्घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ अपनी दोस्त राशिका को अनुमति दीजिए आज के युवाणी कार्यक्रम से। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। शाम की 5:45 हुई हैं। अब श्रोता सुनेंगे उत्तरायण कार्यक्रम।

उत्तरायण कार्यक्रम सुनने सब श्रोताओं के श्याम भटोक नमस्कार। श्रोताओं स्वागत छापू सब लोग नक हमारे आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं आज 18 मई हिनके पूरी दुनिया में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाई जा जैक उद्देश्य HIV एड्स जस जो गंभीर बीमारी छन उन्होंने लीजिए लोगों के जागरूकता करन और एक लीजिए जो प्रभावी वैक्सीन छन या जो टिक छन उनके हेरन में वैज्ञानिकों डॉक्टरों और जन स्वास्थ्य कर्मी छन उन्होंने प्रयासों का सम्मान दिन छ। यह दिवस पहली बारी साल 1998 में मनाई जा रही है। HIV एक यस वायरस है जो मनुष्य के शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता से भी कमजोर कर दी है और अगर एक वक्त में उपचार न होते यो एड्स का रूप लीज और यो एड्स आज एक वक्त में दुनिया में पूरे एक ठुल स्वास्थ्य चुनौतियों में है एक है। अगर विश्व में एड्स की स्थिति की बात करूँ तो संयुक्त राष्ट्र संस्था UN एड्स के अनुसार दुनिया में लगभग 3.9 करोड़ लोग HIV दगड़ जीवन लग रहा। साल 2024 में लगभग 13 लाख नई संक्रमणक मामले सामने आए हैं और आज तक लगभग करोड़ों लोग ये बीमारी अपन जान ले गवाल छ। जागरूकता और दवाओं के कारण मृत्यु दर में पहली है तुलना में कमी आ रहा है लेकिन अहिले इस यू बीमारी बनने की छे जहल की लगातार अधिक प्रभावित है तेरुनियान और एक लीजिए सब ठुल जो सुरक्षा कवच छ वो एक टीकाकरण है सक्षम। हमारे देश ले HIV है प्रभावित देशों में शामिल छे लेकिन सरकार और स्वास्थ्य संगठनों प्रयास एक मामलों में आप धीरे धीरे कमी ले होने लग रहे हैं। ये दिवस तक महत्व की बात करूँ तो यह दिवस हम का संदेश दिस की केवल दवाओं ले ना बल्कि एक लीजिए प्रभावी अगर टिक बनाई होते ये ले हम बीमारी में जो पूर्ण तरीका नियंत्रण से वी कह पा सकनों। यह दिवस लोगों के सुरक्षित जीवन शैली अपनों संक्रमित व्यक्तियों है जनसन उनके भेदभाव न करन और नियमित स्वास्थ्य जाँच करने के लिए प्रेरित करते रहो। हमुके जो संक्रमित सुई से या फिर सिरिंज से वीक उपयोग ना करें चाहें रक्त चढ़ू है पहले वीक जाँच हमुके भलके कर लें चाहें। एक अलावा एक लीजिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाई जान उनमें हमुके भाग लें चाहें और वीक दगड़ हमुके एक बखत बखत में जाँच ले कराते रहें चाहें। हमुके यो दिवस याद दिलोस की एक लीजिए जागरूकता।

वैज्ञानिक अनुसंधान और जो समाज में होने वाले सहयोग से ये हमके कम करी जा सकूँ और संक्रमित लोगों के लिए हमके सहानुभूति रखनी चाहिए जैल की समाज में भल जानकारी फैलाई जो और उनके लिए कोई हीन भावना न रखी जो पूरी दुनिया में अगर हम मिलबेर प्रयास करूँ तो भविष्य में जो एड्स मुक्त दुनिया से भी एक सपन ले हम साकार कर सकूँ। यो तो चाहिए कुछ बातचीत। अब कार्यक्रम आगे बढ़नु और सुनो आप लोगों के यो कुमावनी लोकगीत दीवान कनवाल और रेखा बिस्टक सुर में।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, संदेश के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ूं और आप लोगों के सुनूं जन सामान्य के लिए संग्रहालय एक महत्व विषय पर स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी अध्ययन केंद्र शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय समन्वयक श्री चंद्र प्रकाश फुलोरिया दगड़ करी हुई भेंट वार्ता। भेंट करता छन संजय जोशी।
2: श्रोता, 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाएगा। 1983 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने की बात कही गई और 1992 उस समय था जब ये निर्धारित हुआ कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की कोई ना कोई थीम या कोई विषय होगा। जैसा कि इस वर्ष का विषय है विभाजित दुनिया को जोड़ता संग्रहालय, म्यूजियम यूनाइटिंग ए डिवाइडेड वर्ल्ड। संग्रहालय का आम जनमानस के लिए क्या महत्व है, संग्रहालय क्या कुछ है, हमारी संस्कृति के परिचारक होते हैं, मानव सभ्यता की हमको एक संग्रहालय याद दिलाता है, संग्रहालय का क्या स्वरूप होता है, इस संबंध में आज बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो में संयोजक स्वामी विवेकानंद महात्मा गांधी अध्ययन केंद्र और प्रभारी पुरातत्व संग्रहालय शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के श्री चंद्र प्रकाश फुलोरिया जी। तो फुलोरिया जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। फुलोरिया जी, बात यहीं से शुरू करते हैं कि संग्रहालय का क्या स्वरूप होता है।
3: संग्रहालय का स्वरूप वास्तव में जो हमारी धरोहरें हैं, सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर, पुरातात्विक धरोहर, उन सभी धरोहरों को हम एक स्थान पर संग्रहित करते हैं तो वो स्वरूप संग्रहालय का बन जाता है। और संग्रहालय के अंदर जो अलग अलग प्रकार की वीथिकाएँ होती हैं
2: जी,
3: उन वीथिकाओं के बारे में यदि हम कहें, जैसे स्थानीय आधार पर जैसे लोक कला वीथिका होती है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित वीथिका हो सकती है, पुरातात्विक धरोहरों को एक कक्ष में यदि हम संग्रहित करके रखते हैं तो वो पुरातत्व वीथिका कहलाती है। तो इस तरीके के जो संग्रहालय के अंदर अलग अलग वीथिकाएँ होती हैं वो हमें उस समाज के बारे में, जिस समाज से संबंधित धरोहरों को उस संग्रहालय में संरक्षित किया गया है, उसकी पूरी जानकारी देते हैं।
2: वैसे तो जनसामान्य क्षेत्र के लिए संग्रहालय एक सेतु का काम करता है, कहते हैं, जो कि हम ये कहें कि वैश्विक राजनीति के भेद को मिटाने का काम, सांस्कृतिक और सामाजिक एक चेतना वाली बात आती है और शांति का रास्ता निकालने के भी एक माध्यम माना जाता है संग्रहालय को। ये आपने कहा विथिका गैलरीज की बात की है, अल्मोड़ा में भी हम जानते हैं, अगर इतिहास में देखा जाए तो अल्मोड़ा में भी एक संग्रहालय है। इससे पूर्व मैं अल्मोड़ा के संग्रहालय के बारे में बात करूँ तो पहले मैं चाहूँगा कि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में, क्योंकि पुरातत्व विभाग है
3: जी,
2: तो अवश्य यहाँ पर भी कुछ संग्रहालय का स्वरूप रहा है।
3: असल में कुमाऊं विश्वविद्यालय से अलग हुए अभी 6 साल हो रहे हैं शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा को, तो 1977-78 में यहाँ पर पुरातत्व विषय एक स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए बहुत आकर्षक

0: करने वाला विषय हुआ करता था। और उस समय के जो विभागाध्यक्ष थे प्रोफेसर एमपी जोशी, तो वो पुरातत्व विषय के अंदर फील्ड आर्कियोलॉजी उसका एक पार्ट होता था
1: जी।
0: और फील्ड वर्क करवाते थे, और फील्ड वर्क के नाते अलग अलग स्थानों पर जाना और वहाँ के धरोहरों को और बिखरे हुए ऐसे पुरातात्विक अवशेषों को संग्रहित करके एक कक्ष में लाने का कार्य उनके द्वारा किया गया। और बाद में उन्हीं के मन में विचार आया कि विद्यार्थियों के लाभार्थ इन सभी धरोहरों को पुरावशेषों को हम लोग संग्रहित करके रखेंगे तो ये शोधार्थियों के लिए भी एक विषय रहे।

0: एक कक्ष में लाने का कार्य उनके द्वारा किया गया। और बाद में उन्हीं के मन में विचार आया कि विद्यार्थियों के लाभार्थ इन सभी धरोहरों को, पुरावशेषों को हम लोग संग्रहित करके रखेंगे तो ये शोधार्थियों के लिए भी एक विषय रहेगा और वो पुरातत्व के क्षेत्र में आगे शोध कर सकते हैं, इस नाते इस संग्रहालय की नींव रखी।
1: तो वर्तमान में उसका क्या स्वरूप है?
0: वर्तमान में संग्रहालय थोड़ा सा स्थान अभाव के कारण उस प्रकार का डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए, लेकिन उसमें जैसे लोक कला से संबंधित मटेरियल भी है, अलग अलग ऐसे लोक कला वीथिका के अंदर जो हमारे धूलियर के चौकी है, नामकरण चौकी है, स्नान चौकी है, और इस तरीके से अन्य जो ज्योतिपट वगैरह है वो सब संग्रहित हैं, और साथ में स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित भी मटेरियल उपलब्ध है। और इसके साथ ही जैसे पहले चर्चा की जा चुकी है कि पुरातत्व के क्षेत्र में अलग अलग स्थानों से, जैसे एक धनखल एक्सकेविशन बगवाली पोखर वाले एरिया में एमपी जोशी जी के द्वारा कराया गया, तो वहाँ से खुदाई में जितना मटेरियल मिला हुआ है वो हमारे संग्रहालय में संग्रहित है, और साथ ही लोक परंपरा को एक पहचान देने वाले ऐसे अनेक सामान जो है वहाँ पर रखा हुआ है जो कभी आज से 4 दशक 5 दशक पहले हमारे जीवन का अंग हुआ करता था, हमारे जीवन में उनका उपयोग होता था, लेकिन आधुनिकीकरण के कारण वो चीज़ें अब हमारे जीवन से हट गई हैं और हमने थोड़ा सा आधुनिक चीज़ों को अपना लिया है, तो वो भी संग्रहालय में संग्रहित की गई।
1: जी, ये तो आपने पुरातत्व वाली बात की, हमारी एंशियंट हिस्ट्री से हमको जो कुछ मिला, हम कहेंगे कि हमारे एक बड़े अच्छे क्षेत्र खासकर द्वाराहाट क्षेत्र में करें तो वहाँ से बहुत कुछ हमें
0: बिल्कुल बहुत मिला है, बहुत कुछ।
1: बात यह आती है कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद भी आए अल्मोड़ा में, तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी, बहुत सी चीज़ें जनमानस के स्मृति पटल में भी रही और उनकी चीज़ें भी ऐसा कहा जाता है यहाँ पर है, तो क्या उसको भी संजोने का प्रयास किया गया?
0: स्वामी विवेकानंद जब पहली बार अल्मोड़ा आए तो वो लाला बद्री शाह ठुलघरिया के मेहमान हुए
1: जी।
0: और रघुनाथ मंदिर के पास में ही उनका लाला बद्री शाह का निवास है, तो वहाँ एक कक्ष में आज भी जहाँ स्वामी विवेकानंद रुके थे वहाँ स्वामी विवेकानंद के द्वारा उस समय उपयोग की गई वस्तुओं को संग्रहित करके रखा हुआ है, एक मिनी संग्रहालय उसको कहा जा सकता है। और जो भी अन्यत्र स्थानों से यहाँ पर पर्यटक आते हैं और स्वामी विवेकानंद के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिए उस कक्ष में रखी हुई वस्तुएं वास्तव में आकर्षण का केंद्र हैं और उनको वो बड़ी श्रद्धा के साथ देखते हैं, सुनते हैं। और दूसरा जो स्थान है जिसको हम देवदार इन निवेदिता कुटीर भी कहा गया है, स्वामी विवेकानंद जब 1897 में अपनी दूसरी यात्रा के क्रम में अल्मोड़ा पहुंचते हैं तो कहते हैं कि पश्चिमी अनुयायी भी उनके साथ आए, तो वो इसी देवदार इन होटल में रुके और यहीं निवेदिता को उन्होंने आशीर्वाद दिया, सिस्टर निवेदिता कह करके। तो वहाँ भी गिरीश शाह जी के संरक्षण में बहुत सारी सामग्री स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रयोग की गई वहाँ संग्रहित है, और मेरी गिरीश शाह जी के साथ उस समय मुलाकात हुई, अब तो वो दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कई हस्तलिखित पत्र भी उनके संग्रह में हैं जिनको उन्होंने बैंक में अभी सुरक्षित लॉकर में रखा हुआ है। तो और तीसरा जो विषय है रामकृष्ण कुटीर के द्वारा भी इस संदर्भ में प्रयास किया गया है, और पिछले वर्षों यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत ही अच्छी मूर्ति स्थापित की गई है नगरपालिका अल्मोड़ा के सहयोग से, तो तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र जोशी जी के सहयोग से, तो उन्होंने भी ये विचार रखा कि जहाँ पर ये मूर्ति स्थापित है तो उसी के नीचे एक छोटा कक्ष उन्होंने रिजर्व रखा हुआ है, और उनका ये प्रयास है आगे आने वाले टाइम में स्वामी विवेकानंद से संबंधित वस्तुओं को वहाँ पर संग्रहित करके एक मिनी संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।
1: जी जी, आपने शाहजी की बात की, उन्होंने निजी तौर पर वो प्रयास किया, ऐसा ही एक निजी तौर पर प्रयास जहाँ तक मुझे याद है कुछ जुगल किशोर पेशाली लोक कला के लिए,
0: बिल्कुल वो बहुत संस्कृति प्रेमी थे
1: जी,
0: और उनका पूरा जीवन ही संस्कृति के संरक्षण पर लग गया, और उन्होंने इसी अपने एक मंतव्य को एक मिनी संग्रहालय के रूप में अपने घर में स्थापित करके एक रूप दिया जिसमें हमारे लोकवाद्य यंत्र खासकर आकर्षण के केंद्र हैं, और साथ में उन्होंने लोक परंपरा से जुड़ी हुई भी अनेक वस्तुओं को जो लुप्त प्राय होते जा रही हैं ऐसी वस्तुओं को संग्रहित किया, लेकिन अपने दिवंगत होने से पहले ही उन्होंने वो संपूर्ण सामग्री संस्कृति विभाग के सुपुर्द कर

0: होती ताकि वो आगे किसी बड़े संग्रहालय में डिस्प्ले की जा सके, प्रदर्शित की जा सके।
1: आमतौर पर देखा जाता है जब इतना समृद्ध हमारा ये क्षेत्र है तो यहाँ पर एक मात्र, अब मैं कहूँगा यहाँ पर संग्रहालय के तौर पर देखा जाए, शहर के अंदर देखा जाए तो गोविंद वल्लभ पंत हम म्यूजियम कह सकते हैं, संग्रहालय कह सकते हैं, वहाँ पर है, तो वहाँ पर क्या कुछ है?
0: पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय है, ये अल्मोड़ा की एक शान है। ये कहा जाए कि जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं और जो हमारे कुमाऊनी संस्कृति को जानना चाहते हैं, वो जिज्ञासा वहाँ जाकर के शांत हो जाती है। वहाँ पर एक तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत के संपूर्ण जीवन से संबंधित सामग्री उन्होंने कलेक्ट करके रखी हुई है और प्रतिवर्ष यथासंभव वो 10 सितंबर को एक प्रदर्शनी भी इस संदर्भ में लगाते हैं। दूसरा, जो अभी तक हमारे कुमाऊं क्षेत्र से प्राप्त होने वाले ताम्रपत्र हैं वो भी वहाँ संरक्षित किए गए हैं, और उन ताम्रपत्रों की जो छटा है, उस समय जो ताम्र शिल्प हुआ करता था उसमें किस प्रकार से शब्दों को उकेरा जाता था, वो सारे हम वहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरीके से वहाँ पर लोकवाद्य यंत्रों का संग्रहण उनके द्वारा किया गया है, और साथ में मौलाराम के चित्रों का उन्होंने संरक्षण किया है, और साथ ही हमारे लोक कला से संबंधित सभी जो पट हैं उनको भी उन्होंने संग्रहित किया हुआ।
1: हम कहें कि आज की जनरेशन तो मोबाइल वाली जनरेशन हो गई है, मैं चाहता हूँ कि क्या कुछ ऐसा किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारे बच्चे जो हैं, वो म्यूज़ियम की तरफ आकर्षित हों। क्या कुछ हम कर सकते हैं?
0: वास्तव में जो पठन पाठन का तरीका है उसमें संग्रहालय का एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये हमको जो प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करते हैं वो हमें केवल वार्तालाप के द्वारा जो हम अध्ययन करते हैं या अध्यापन करते हैं तो उससे ज़्यादा बेटर है। और मैंने नेशनल म्यूजियम दिल्ली से कोर्स किया हुआ है, इन सर्विस कोर्स, तो मैंने वहां पर देखा कि एक रेप्लिका डिपार्टमेंट हुआ करता है, अनुकृतियां वो बनाते हैं और अलग अलग विद्यालयों को, दिल्ली के अलग अलग विद्यालयों को उस राष्ट्रीय संग्रहालय के द्वारा वो तमाम रेप्लिका जो है उपलब्ध कराई जाती है। जैसे मोहन जोदड़ो में नृत्यरत एक नर्तिका का चित्र आता है जिसके एक हाथ में चूड़ियां भरी हुई हैं, तो इतना आकर्षण वाला है कि वो सभी जगह तो यथावत दिखाया नहीं जा सकता विद्यार्थियों को, लेकिन वो उसकी रेप्लिका तैयार करके अलग अलग विद्यालयों में, जो विद्यालय स्तर पर छोटे छोटे संग्रहालय बने हुए हैं उनमें वो प्रदर्शित कर देते हैं। तो पठन पाठन की दृष्टि से भी बच्चों के लिए ये संग्रहालय बहुत लाभप्रद हैं, और शिक्षण के माध्यम के रूप में हम संग्रहालयों को अपना सकते हैं और ये हमें प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं।
1: जी, इसी संबंध में बात करता हूँ मैडम टुसाद म्यूजियम की, जहाँ पर अगर देखा जाए विदेशों के जितने VVIPs होते हैं उनकी भी वहाँ पर एक
0: अनुकृति
1: स्थापित की जाती है, और ऐसा लगता है जैसे जीते जाते साक्षात हैं। तो ऐसा ही कुछ प्रयास हमारे देश में भी किया जा सकता है, हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ बहुत स्कोप है इसके लिए।
0: हिंदुस्तान में संग्रहालयों का स्कोप कम नहीं है, और जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तो स्वीकारोक्ति के तुरंत बाद ही लगभग 400 से अधिक संग्रहालयों की स्थापना अपने देश में हो चुकी थी। क्योंकि यहां पर जिस प्रकार की मथुरा कला का विकास हुआ, जिस प्रकार की गांधार कला का विकास हुआ, तो वो सारे जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां कहीं ना कहीं भंडारण कक्षों में जो है संग्रहित थी, और उसके बाद वो जो है संग्रहालय में जब आई तो वो लोगों के लिए जानने का एक साधन बन गई कि वास्तव में हमारा इतिहास कितना समृद्ध है, हमारी परंपराएं कितनी समृद्ध है, हमारी कलाएं कितनी समृद्ध हैं। और मैं यदि स्थानीय आधार पर इसकी बात करूं तो बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में भी यही स्थिति थी। अभी लगभग 5-6 महीने पहले हमारे क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि वहाँ एक कक्ष में जो मूर्तियाँ संग्रहित की गई हैं उनको डिस्प्ले किया जाए, वहां पर एक संग्रहालय की स्थापना की जाए। तो अभी मुझे लग रहा है कि वो संग्रहालय आगे प्रगति पर है और आगे जो है लोगों को उस संग्रहालय में जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और ऐसे ही हमारे जागेश्वर में, जागेश्वर के आसपास भी जो हमारी मूर्तियां बिखरी पड़ी हुई थी वो जागेश्वर में भी एक पुरातत्व संग्रहालय स्थापित किया गया है, और हमारे जो पर्यटक वहां जाते हैं तो वास्तव में पौण राजा की इतनी भव्य मूर्ति वहां पर है जो एक बार चोरी भी हो गई थी और दोबारा लाई गई, तो वो भी वहां पर संग्रहित है।
1: ऐसा ही कुछ प्रयास देखा जाए तो पांगती जी द्वारा मुंशारी में किया गया, तो वहां भी एक बहुत ही खूबसूरत संग्रहालय की उन्होंने स्थापना की, जहां पर वो वहाँ की जनजाति के लिए बड़ा अच्छा रहा है।
0: हाँ, ये पिथौरागढ़ जिले के लिए वो

0: एक बहुत सम्मान का विषय है, मुंशियारी की जो संस्कृति है उसको उन्होंने संग्रहित कर रखा है, और वहाँ की जो रंग संस्कृति है उसको उन्होंने अपने संस्कृति में बिल्कुल हूबहू स्थान दिया हुआ है। जैसे वहाँ का पहनावा है, पगड़ी है, जो उनका चोला है, और जैसे शादी विवाह शुभ अवसरों पर वो लोग जिस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं वो सब उन्होंने संग्रहित की गई हैं, और जो उनके उपकरण हैं विभिन्न, जैसे खेतीबाड़ी से संबंधित है या फिर अन्य जो उपकरण हैं वो भी उन्होंने संग्रहित किए हैं। और इसी तरीके का एक संग्रहालय और इधर जो है बनकोट में स्थापित है। असल में जो ये संग्रहालय है बनकोट वाला, इस हमारे एक विद्यार्थी ने जानकारी दी, इसका नाम रविंद्र बनकोटी है, उन्हीं के घर में वो स्थापित है, और आसपास के इलाके में जितनी भी मूर्तियां थी उन्होंने वो सब संग्रह करके एक संग्रहालय का रूप अपने ही निवास स्थान पर दिया हुआ है।
1: देखा जाए तो अगर हम अपने कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर तो बहुत कुछ स्कोप है, काफ़ी कुछ है यहाँ की संस्कृति को दिखलाने के लिए संग्रहालय के माध्यम से, और जिस हिसाब से हमारा पर्यटन है जरूरत है कि उसको कुछ आकर्षित करके इस तरफ लाया जाए, ये प्रयास सरकार का होना चाहिए और हम सबका होना चाहिए। तो चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे?
0: असल में अभी क्या है, इस ओर प्रयास करने की आवश्यकता है कि हमारा जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, वो अपने सांस्कृतिक धरोहर की ओर आकर्षित हो सके, और उसको सांस्कृतिक धरोहरों की ओर आकर्षित करने के लिए संग्रहालयों का एक बहुत बड़ा योगदान है। और यही जो योगदान है वो केवल धरोहरों तक सीमित न करके, जो वर्तमान में इस साल की थीम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के द्वारा दी गई है, जो विभाजित दुनिया है वो, उसको हम संग्रहालय की दृष्टि से कैसे देखते हैं, तो उसमें केवल ये धरोहरों तक उन्होंने सीमित नहीं रखा है, उसको एक संवाद का केंद्र बनाया है, उसको सांस्कृतिक परंपराओं के आदान प्रदान का उन्होंने केंद्र माना है, जिससे कि संपूर्ण विश्व में एक शांति का, सौहार्द का वातावरण तैयार किया जा सके। इस दृष्टि से संग्रहालयों का बहुत बड़ा महत्व है, और हमारे जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को कहीं भी इस प्रकार की धरोहरों को देख करके उसको संरक्षित करने का भाव उनके मन में आए, और तभी इन संग्रहालयों का औचित्य भी सिद्ध होगा और आने वाली पीढ़ी भी इन संग्रहालयों से जुड़ पाएगी।
1: जी, चलते चलते एक बात और करते हैं कि अभी वाराणसी में ही बुद्धा के रिलिक्स का शो किया गया था, जो कि श्रीलंका से मंगाए गए थे, तो इस तरह का जो एक्सचेंज प्रोग्राम है, आपने एक्सचेंज वाली बात की ना, वो बहुत जरूरी है,
0: बहुत आवश्यक है। आपने बुद्धा की बात की, मैं अपने SSG यूनिवर्सिटी के संग्रहालय की भी बात करता हूँ कि एक भगवान बुद्ध की भूस्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति जो है हमारे पास यहाँ पर संरक्षित है, जो बहुत दुर्लभ है, और वो प्रोफेसर MP जोशी जी ने ही कहीं से कलेक्ट करके संग्रहालय में स्थापित की है, तो वो सभी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। दूसरा जो विषय आपने कहा कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का जो विषय है, वो संग्रहालयों में लगने वाले समय समय पर जो प्रदर्शनियां हैं उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व इस नाते है कि जो पर्यटक हैं वो केवल स्थानीय संस्कृति को ही नहीं जान पाते हैं, बल्कि अन्य प्रदेशों की या अन्य देशों की संस्कृति से भी वो भिज्ञ हो पाते हैं, और अन्य देशों की संस्कृति से को यदि हम जानते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसकी तुलना अपनी संस्कृति के साथ करते हैं, और अपनी संस्कृति में क्या साम्यताएं हैं उस देश की संस्कृति की, तो उसको भी हमें जानने का प्रयास मिलता है।
1: फुलोरी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने श्रोताओं को जन सामान्य के लिए संग्रहालय का क्या महत्व है और कैसे कार्यकलाप होते हैं उनके प्रति जो जागरूकता है उस बारे में जानकारी दी, आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता मंडल, आप लोग सुनने लग रहे हो अच्छा जन सामान्य के लिए जी संग्रहालय एक महत्व विषय पर समन्वयक स्वामी विवेकानंद महात्मा गांधी अध्ययन केंद्र शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय श्री चंद्रप्रकाश फुलोरिया दगड़ करी हुई संजय जोशी की भेंटवार्ता कार्यक्रम में अगला आप लोगों का सुनो प्रहलाद सिंह मेहरा गई कुमाऊनी लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लख

0: सरस्वती दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन, साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, संत संवाद कार्यक्रम में अगिल बढ़नू और कर लेनू कुछ और बातचीत, जैसे कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनो लग रहा। ये दिवसों का उद्देश्य सब मनखियों के संग्रहालयों के महत्व के लिए जागरूक करन और इतिहास संस्कृति और विरासत संरक्षण के लिए प्रेरित करन छे। ये दिवसक शुरुआत 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा करी जा रही थी। संग्रहालय कईले देशक सभ्यता संस्कृति कला और इतिहासक अमूल्य धरोहरों के सुरक्षित रखने का काम करना। हर संग्रहालय में जन प्राचीन मूर्ति हुचीन, सिक्के, हथियार, पांडुलिपि, वहाँ चित्रकला या फिर ऐतिहासिक वस्तु छन, उनके समावेश रखी जा और संग्रहालय हमारे जिन पुरान बखत से विभटिया मुख्य परिचय दिनान और उन्नी वाले पीढ़ियों के लिए इतिहास का जानने का अवसर दिनान। हमारे देश में ले बहुत प्रसिद्ध संग्रहालय छन, जिनमें हमारे देश की जो प्राचीन समृद्ध संस्कृति से और ऐतिहासिक धरोहर छन, उन्हों बहुत भल संग्रह देखने का मिल छू। बात करूँ संग्रहालयों के महत्व के, इन इतिहास और सांस्कृतिक रक्षक होने का दगड़ देशक विद्यार्थियों या फिर शोधकर्ताओं के लिए जिले ज्ञान के एक महत्वपूर्ण स्रोत हुनान। वी के अलावा संग्रहालय पर्यटन के लिए बढ़ावा दिनान और प्राचीन वस्तुओं और कला के सुरक्षित रखने में इन मदद करना, लोगों में अपन देशक विरासत के लिए सम्मान उत्पन्न करना। और अचानक बखत में हम देखूँ तो डिजिटल तकनीक द्वारा एमएलए हम संग्रहालय का ऑनलाइन देख सकना, जैमें लोग घर बैठ भेर अपन देशक इतिहास या फिर भी कला का अध्ययन कर सकना और वी का भलकें देख सकना। आजुक यो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हमको अपन सांस्कृतिक विरासत का सुरक्षित रखने का संदेश दीज। संग्रहालय केवल पुरान वस्तुओं का भंडार नहन, बल्कि उन ज्ञान प्रेरणा और इतिहास के लिए एक जीवंत केंद्र छ। हमों के संग्रहालयों का सम्मान करन चाहें और नई पीढ़ी का इनक महत्व के बारे में जागरूक ले करन चाहें, जैल कि हमारी संस्कृति और इतिहास हमेशा थे सुरक्षित रह सको। तो यो तो सी कुछ बातचीत कार्यक्रम में जने जने अब अपने लोगों का सुनो रेखा उनियालक गाइयो गढ़वाल लोकगीत।

श्रोताओ, रेखा उनियाला गई एई गढ़वाली लोकगीत दगड़ हमर आजक उत्तरायण कार्यक्रम संपन्न हो। एन अपन दगड़ी श्याम भट्ट के कार्यक्रम संपन्न करने की आज्ञा दियो। भुलाहू लोगू दगड़ एक नई अंक दगड़ फिर भेंट होली। तब तक अगली जी नमस्कार।

अभी श्रोता उत्तरायण कार्यक्रम सुन रही थी। प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR और FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी की अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से भी लेके जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से 4 अत्याधुनिक एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया। कहा, यह एम्बुलेंस जरूरतमंद लोगों तक त्वरित चिकित्सा सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के मेरु परिसर पटवा डांगर में अकादमिक भवनों का शिलान्यास किया। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने हरिद्वार में चैन राय जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई, तत्काल सुधार के निर्देश दिए और चमोली जिले में स्थित रुद्रनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से HDFC बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत जनहित के लिए प्रदान की गई 4 अत्याधुनिक एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में समय पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई ये एम्बुलेंस जरूरतमंद लोगों तक त्वरित चिकित्सा सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन भागीदारी और संस्थागत सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक अधिकारियों ने बताया कि इन एम्बुलेंस में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं एवं आवश्यक आपातकालीन उपकरण उपलब्ध हैं, जिससे जरूरतमंद मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा। साथ ही आगामी 3 वर्षों तक प्रत्येक एम्बुलेंस में चिकित्सक, नर्स अटेंडेंट और चालक की व्यवस्था भी बैंक द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। प्रारंभिक चरण में ये एम्बुलेंस चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी तथा भविष्य में राज्य के प्रमुख धार्मिक आयोजनों और आपदा प्रबंधन कार्यों में भी इनका उपयोग किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के मेरु परिसर पटवा डांगर में अकादमिक भवनों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह निर्माण कार्य क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विकास को नई दिशा प्रदान करेगा और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
3: हमारे राज्य में 12 विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, और इसमें हमने पहला विश्वविद्यालय का चयन किया है, कुमाऊं विश्वविद्यालय का। यहाँ पे हम 100 करोड़ पे मेरु के तहत पैसा दे रहे हैं और ये जो पटवा डांगर जगह है, यहाँ पे हम लोग लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से बच्चों के लिए हॉस्टल भी बना रहे हैं। यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट साइंस के यहाँ पे आएंगे हमारे विश्वविद्यालय के, और सरकार के द्वारा यहाँ पे जमीन भी जो है विश्वविद्यालय के लिए स्थानांतरित की गई है और अब यहाँ का विधिवत जो है आज भूमि पूजन हुआ है। विशेषकर हम विश्वविद्यालय को बच्चों के लिए हॉस्टल हो गया, लैब हो गया, खेल हो गए, सामान हो गया, पुस्तकालय हो गया, ई ग्रंथालय हो गया और प्रशासनिक भवन हो गया, हर प्रकार की सुविधाएं दे रहे और ये इसी साल ये पैसा जो है खर्च होगा।
2: पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आज बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही मंदिर परिसरों में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। श्री महाराज ने चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि यात्रा में आने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें और अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार तैयारी करें। उन्होंने कहा कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आवश्यक दवाएं और उपकरण साथ रखें। पर्यटन मंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और स्थानीय प्रशासन

0: शासन का सहयोग करने का आग्रह भी किया है। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में आज विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों के संपादन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों, प्रशिक्षण, डेटा संकलन और व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।
1: आज एक तैयारी की बैठक ली गई जिसमें सभी हमारे ईआरओस उपस्थित थे और सभी नोडल ऑफिसर्स भी उपस्थित थे, तो उनको निर्देशित भी कर दिया गया है कि इसका पूरा हमारा प्लान जो प्रिंटिंग होकर आनी है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है या जो बीएलओस की सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन होनी है वो सब बिल्कुल समयबद्ध ढंग से कर लिया जाए और कल से ही हमारे जो बीएलओस की एटलीस्ट किट है वो कल से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाए। और साथ में जो हमारे बीएलए 2 हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको अधिक से अधिक इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि जब वो साथ में रहेंगे बीएलओस के तो उनकी कोई भी शक या शंका होगी उसके तत्काल समाधान किया जा सकता है और पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट ढंग से संपादित किया जा सकता है।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने आज हरिद्वार में चैन राय जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं की स्थिति संतोषजनक न मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों को इसमें तत्काल सुधार के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। गर्मी बढ़ने के साथ ही पिथौरागढ़ जिले के जंगलों में एक बार फिर वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। जिले के विभिन्न वन क्षेत्रों में वन विभाग की टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी हुई हैं। स्थानीय ग्रामीण भी जंगलों की आग बुझाने में वन विभाग का सहयोग कर रहे हैं। चंडाक वन क्षेत्र के बडौली इलाके में कल रात लगी आग को नियंत्रित करने में स्थानीय ग्रामीणों ने भी वन विभाग का सक्रिय सहयोग किया। वन क्षेत्राधिकारी दिनेश जोशी ने बताया कि ग्रामीणों की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया जिससे बड़े नुकसान को टाला जा सका। उन्होंने कहा कि आग बुझाने में सहयोग करने वाले ग्रामीणों को विभाग सम्मानित करेगा।
3: चंडाक से लगे बड़ौली गांव पे उनके वन पंचायत में फायर की घटना हुई थी। गांव के सभी लोग और वन पंचायत वन समिति के लोग के द्वारा अच्छा सहयोग दिया गया। उनके द्वारा वन पंचायत बड़ौली में लगी आग में पूर्ण सहयोग देने के साथ ही आग पे तुरंत नियंत्रण कर लिया गया था। जो लोग भी सहयोग दे रहे हैं ग्रामवासी उनको विभाग की ओर से सम्मानित किया जाएगा और भविष्य में सभी गांव वालों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सहयोग के लिए कह रहे हैं कि वो वनाग्नि पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सहयोग दें तथा अपने वन को बचाने के लिए आगे आए।
0: वहीं प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह ने भी स्थानीय लोगों से जंगलों की आग काबू करने में विभाग का सहयोग करने की अपील की है।
4: लोगों से आग्रह करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं जहां भी प्रकाश में आती हैं आप वन विभाग का सहयोग करें और बढ़ चढ़कर इन वनाग्नि घटनाओं पर काबू पाने के लिए वन विभाग का सहयोग करें। और हम लोग भी लगातार ऐसे नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं और जो लोग इस वनाग्नि सत्र में विभाग का सहयोग करेंगे उनको हम किसी न किसी तरीके से उनको हम सम्मानित करने का पूरा प्रयास करेंगे।
0: चमोली जिले में स्थित पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आज परंपरागत ढंग से पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कपाट खुलते ही पूरा क्षेत्र हर हर महादेव और जय बाबा रुद्रनाथ के जय घोष से भक्तिमय हो उठा। रुद्रनाथ के पुजारी चंडी प्रसाद तिवारी ने बताया कि रुद्रनाथ मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल में 6 महीने तक श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं।
5: बोले रुद्रनाथ भगवान की जय। आज भगवान चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट विधि विधान पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं और देश विदेश से यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं।
0: पौड़ी में ईंधन बचत और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए आज सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने नो व्हीकल डे मनाते हुए अपने अपने आवास से कार्यालय तक पैदल पहुंचकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। सिविल जज नाजीस कलीम ने कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन की खपत को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से 4 अत्याधुनिक एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया। कहा, ये एम्बुलेंस जरूरतमंद लोगों तक त्वरित चिकित्सा सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के मेरू परिसर पटवा डांगर में अकादमिक भवनों का शिलान्यास किया। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने हरिद्वार में चैन राय जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई, तत्काल सुधार के निर्देश दिए और चमोली जिले में स्थित रुद्रनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 100.8 MHz पर ही आकाशवाणी अल्मोड़ा है। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत कार्यक्रम।

आज के भक्ति संगीत कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं सिंपल राजा राजेश चौहान और मौसमी दत्ता का गाया ये भजन।

ओम यस और साथियों की गाई इस भजन के साथ ही हमारा आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz पर यह आकाशवाणी अल्मोड़ा है। संध्या की 6:50 होने वाली हैं। कुछ ही पलों में गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी देहरादून से रिले होंगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बैठक गढ़वलमा प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मीना उनियाल। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली, सरकार अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति दगड़ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना को निरंतर काम करने च। चमोली जिला में स्थित चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ मंदिर का कपाट आज श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ खोल दिए गए। धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराजा ने चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से मंदिर परिसरों और यात्रा मार्गों से स्वच्छ बने रखने का आह्वान करी और देहरादून में औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में कानून व्यवस्था बने रखने को धारा 163 लागू करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि राज्य सरकार अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति का बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का बाबत निरंतर काम करने च। आज देहरादून बटी चार अत्याधुनिक एम्बुलेंसों थे फ्लैग ऑफ करी मुख्यमंत्री ने बोली कि यह पहल राज्य का दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं थे सुदृढ़ बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम छ। श्री धामी ने बोली कि उत्तराखंड का पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में समय पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक छ। राज्य सरकार जन भागीदारी और संस्थागत सहयोग का माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं थे और अधिक सशक्त बढ़ाने को प्रतिबद्ध छ। उन बताए कि शुरू चरण में ये एम्बुलेंस चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेले। दगड़ी भविष्य में यू का उपयोग प्रमुख धार्मिक आयोजनों और आपदा प्रबंधन कार्यों में भी करे जाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपन कई देशों का दौरा का तहत नॉर्वे का ओस्लो पहुंच गए न। ये दौरा में भारत और नॉर्वे का बीच द्विपक्षीय बातचीत तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल छ। ये दौरा नॉर्डिक देशों का दगड़ भारत का संबंधों तय नए गति दयाल। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे की अपनी पहली यात्रा को ओस्लो पहुंचे। 43 सालों में भारत का छोड़ बटी कई भी प्रधानमंत्री का यह पहली दौरा छ। चमोली जिले में स्थित चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ का मंदिर का कपाट आज शुभ मुहूर्त का वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान का दगड़ श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ खोल दिए गए। कपाटो उद्घाटन का अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु साधु संत और स्थानीय लोग मौजूद छया। कपाल खुर्दा ही चौछड़ी हर हर महादेव और जय बाबा रुद्रनाथ का जय घोष से भक्तिमय होगे। एक बाइट
1: पंच केदारों में चौथा केदार का रूप में विशेष स्थान रखने वाला श्री रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव का एकानंद स्वरूप अर्थात मुख रूप की पूजा अर्चना करे जांदे। हिमालय का दुर्गम चोटियों का बीच स्थित यू पवित्र धाम अपनी अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा, प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यमय दिव्यता खुणे की विश्व में प्रसिद्ध है। कपाट खुलने का दगड़े ही अब आगामी 6 महीने तक भगवान रुद्रनाथ की नियमित पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करे जाला। देश विदेश बटे आने वाला हजारों श्रद्धालु ये दिव्य धाम में पहुँच की भगवान शिव का दुर्लभ एकानंद स्वरूप का दर्शन करी पूर्ण लाभ अर्जित करला। रुद्रनाथ यात्रा अपनी कठिन लेकिन रोमांचकारी पैदल रास्ता खुणे भी जने जांदे। दुर्गम पहाड़ी रस्तों से वे की गुजरन वाली ये यात्रा श्रद्धालुओं थे अध्यात्म, प्राकृतिक और आस्था को अद्भुत संगम को अनुभव करा दे। आकाशवाणी देहरादून खुणे की समाचार कक्ष बटे मी सविता वर्धवाल।
0: धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराजा ने चार धाम यात्रा पर आने वाला सभ्य श्रद्धालुओं से मंदिर परिसरों और

0: यात्रा मार्गों थे स्वच्छ बने रखना आह्वान करी। बद्रीनाथ धाम की यात्रा का दौरान उन तीर्थयात्रियों से अपील करी कि बोली की कूड़ा केवल कूड़ादान में ही डलिया। श्री महाराज ने बोली की देवभूमि की मर्यादा और वे की पवित्रता बने रखना सभियों का सामूहिक दायित्व।
1: आप सभी श्रद्धालु भक्तगण चारधाम यात्रा में देवभूमि में पधारे हुए हैं और यह हमारा कर्तव्य है और सबसे बड़ी पूजा यह है कि हम देवभूमि को स्वच्छ रखें। इसलिए जो भी कूड़ा है वो कूड़ादान में डालें, गार्बेज बॉक्स में डालें और सारी धरती को पवित्र रखें। मेरा आपसे बहुत अनुरोध है कि कूड़ा कूड़े की जगह पड़े तो हमारी देवभूमि साफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श चारधाम के रूप में स्थापित हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि मन की स्वच्छता हो और शरीर की स्वच्छता हो, इसका ध्यान जरूर रखें।
0: वखी मध्य प्रदेश बटी उत्तरकाशी जिला स्थित श्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचा श्रद्धालुओं ने यात्रा व्यवस्थाओं की सराहना करी। यात्रियों ने बोली कि उनकी यात्रा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और यादगार बनी।
2: आज हम लोग आ गए हैं गंगोत्री धाम, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर और यहाँ की व्यवस्था। उसके बाद में हम लोग नदी पे गंगा माता के स्नान के लिए, वहाँ स्नान करने का एक अलग ही अनुभव था हमारा। स्नान करने के बाद में इतना अच्छा लगा और हमारे शरीर में ऐसा लगा जैसे एक तंदुरुस्ती आ गई है। माता रानी के आशीर्वाद से और उनकी शक्ति से यहाँ के पानी के एक अमृत में इतनी शक्ति है कि हम बता नहीं सकते। यहाँ की पुलिस प्रशासन की व्यवस्था और यहाँ पुष्कर जी धामी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था बनी हुई है, यही जगह जाम लगा लेकिन पुलिस प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था रखी जो कानवाई में लगा लगा के आगे हमारी यात्रा को सफल बनाया है।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: देहरादून का सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्था बने रखना कुण पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च करी। यह कार्रवाई श्रमिकों का धरना प्रदर्शन का दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास का बात करेगी। प्रशासन ने सेलाकुई और शिटकुल औद्योगिक क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से भारतीय न्याय संहिता धारा 163 लागू करी। फ्लैग मार्च का दौरान पुलिस ने लोगों से लागू प्रतिबंधों की जानकारी दे कि शांति बने रखना के आह्वान पर ध्यान देने की अपील करी। पुलिस ने चेतावनी दी कि शांति व्यवस्था बिगड़ या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों का खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करे जेल। आदेश का तहत सेलाकुई और शिटकुल क्षेत्र में हथियार, लाठी, डंडा और अन्य घातक वस्तुएं लेकर चलन, सार्वजनिक सभा, जुलूस, नारेबाजी और बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर रोक लगेगी। 5 या उससे ज्यादा लोगों का इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध रहा। पौड़ी जिला का कपरौली स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में आज बाल संरक्षण और बाल अधिकारों थे लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी। विद्यालय का प्रधानाचार्य अंकित चौहान ने बोले कि वर्तमान समय में बच्चों थे शिक्षा का दगड़ी अपने अधिकारों, सुरक्षा और कानूनी संरक्षण की जानकारी होनी भी जरूरी है ताकि वो कई भी प्रकार का शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में समय रेन सहायता ले सक। चाइल्ड लाइन समन्वयक मोहित सिंह ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 कुण 24 घंटा संचालित निःशुल्क आपातकालीन सेवा है। उन बोली कि बाल श्रम, बाल विवाह, हिंसा, भिक्षावृत्ति या कई भी प्रकार का शोषण की स्थिति में तत्काल 1098 पर संपर्क करे जे सकें। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग का अनुसार अगला 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री तक वृद्धि की संभावना है। वहीं पिछला 24 घंटों का दौरान राज्य का पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किए गए। विभाग का अनुसार अगला 36 घंटों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बनो रहा। मौसम विभाग ने गर्मी थे देखी कि लोगों थे छैल में रहना, ज्यादा पान पीने वाले चीजों का सेवन करना, अनावश्यक रूप से घर बटे के बाहर नहीं निकलना, दोपहरा में बाहर निकल दो मुंड ढककर निकलने की सलाह दे। उन्हें देश का मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से राहत पाना कुण बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्रों का छाड़ आना छन। यहाँ दगड़ ही सप्ताह का आखिर में हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और नैनीताल पर्यटकों से गुलजार रहे। बड़ी संख्या में पर्यटकों का आण से स्थानीय व्यापारी उत्साहित छन। सुरक्षा का मद्देनजर पुलिस भी पूरी तरह सतर्क छ। यातायात व्यवस्था ते सुचारू बने रखना कोनो विशेष ट्रैफिक प्लान लागू करेगी, जामा पर्यटकों की आवाजाही सुगम बनी छ। राजधानी देहरादून में डेंगू और जल जनित बीमारियों की रोकथाम थैले की जिला प्रशासन सतर्क छ। जिलाधिकारी सविल बंसलन अधिकारियों का दगड़ बैठक करी। अस्पतालों में डेंगू जांच, उपचार, दवाइयों और ब्लड बैंक और पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दें। उन बोले कि कंट्रोल रूम 24 घंटा सक्रिय रहो और डेंगू का कोई भी मामला सामने आने पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई करे जेल। राजधानी देहरादून में 42वां उत्तराखंड गोल्ड कप टूर्नामेंट आगामी 22 मई बटी 7 जून तक खेले जाल। प्रतियोगिता में देश भर की टीमों का दगड़ ही नेपाल की टीम भी भाग लेनी च। ये बाबत 16 टीमें 4 ग्रुपों में खेलन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: मा उत्तराखण्ड गोल्ड कप टूर्नामेन्ट आगामी 22 मई बटी 7 जून तक खेले जाल। प्रतियोगिता मा देशभर की टीमों का दगड़ी नेपाल की टीम भी भाग लेनी छ। ये बाबत 16 टीमें 4 ग्रुपों मा खेलल। और अंत मा मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली, सरकार अंतिम छोड़ पर खड़ा व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने को निरंतर कार्य करने च। चमोली जिला में स्थित चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ का मंदिर का कपाट आज श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ खोल दिए गिन। धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराजा ने चार धाम यात्रा पर आण वाला श्रद्धालुओं दगड़ मंदिर परिसर और यात्रा मार्गों ते स्वच्छ बने रखने का आह्वान करी और देहरादून का औद्योगिक क्षेत्र सिलकुई में कानून व्यवस्था बने रखने को धारा 163 लागू करेगी। यहाँ दगड़ ही गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों का यू उनको समाप्त होने तो नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब श्रोता सुनेंगे ग्राम जगत कार्यक्रम।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने सभी श्रोताओं के हरि सिंह सिजवाली नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करने लग रहे हैं कृषि संबंधी कार्यों के लिए किसान भाई बहनों के पर्याप्त और बखत पर ऋण उपलब्ध कराना का उद्देश्य भारत सरकार KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना मात्र 2% ब्याज सब्सिडी और 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन पर सस्त और आसान ऋण योजना चलाई जा रही है। जेल ऋण 4% प्रतिवर्ष ब्याज पर उपलब्ध कराई जाना करो। श्रोताओं, यह ऋण योजना में आपको कृषि भूमि आधार पर और आपको जो फसलों के आधार पर ऋण सीमा निर्धारित करी जाए, जो ऋण के हर 6 महीने में चुकता कर फिर दोबारा 6 महीने में ऋण ली जा सकूँ। यह हर साल रवि और खरीफ फसलों आधार पर बनाई जा। जेल किसानों के कृषि यंत्र, बीज, खाद, उर्वरक इत्यादि खर्च वहन करने के लिए बहुत आसानी है। श्रोताओं, यह ऋण आपके अपन नज़दीकी बैंक शाखा में आसानी प्राप्त है सकूँ। जहाँ आप खाद खोल रखो वो बैंक बड़ी आप यह ऋण के किसान क्रेडिट कार्ड के बना सकता। यह लीजिए आपके भूमि प्रमाण पत्र, खाता खतौनी, परिवार रजिस्टर, आधार, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो लिवेर बैंक में जाऊँ। यह ऋण सबसे आसान और जल्दी प्रक्रिया में होने वाला ऋण छो। किसानों की सुविधा के देखते हुए यह ऋण के सरल बढ़ाई जा रहा। तो श्रोताओं, यह तो थी बातचीत। कार्यक्रम में अगला आपका सुनना लग रहा प्रहलाद सिंह मेहरा गई यह कुमाऊनी लोकगीत।

0: ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਲਾ ਫੁੱਲ ਸੁਣੋ ਕੁਮਾਉਣੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ ਸਵਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੈਂ ਅਗਿਲਾ ਬੁੱਕ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੇਤਰ ਸੰਕਲਿਤ ਭੇਟ ਵਾਰਤਾ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਔਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਵੇਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਕਰਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਮਨੋਜ ਬਿਸ਼ਟ ਗ੍ਰਾਮ ਮਟੇਲਾ ਵਿਕਾਸਖੰਡ ਲੰਬਗੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਲਣਾ ਦਗੜ ਕਰੀ ਗਈ ਭੇਟ
1: आज हम आ रहे हैं विकासखंड लमगड़ा पलना गांव में और बात करने लग रहा है यहाँ युवा काश्तकार श्री मनोज सिंह बिष्ट जुंदगढ़ बीजू नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
1: बीजू स्वागत छो अपन हमारे कार्यक्रम में और जैसे कि आज हम अपन घर में आ रहा और देखने लग रहा है कि अपन बहुत भल खेत कर रखे है और खेती के दगड़ सब्जी उत्पादन ला आपको करने लग रहा था और दगड़ दगड़ में देखा मैं कि अपुल भैंस ला पाव रखी गोर ला पाव रखी बकार पाव रखी भल अपुल जैसे अपन रोजगार अपन कारोबार चला रखो तो सबसे पहले आप हमको ये बताओ कि जो खेत आपको करने लग रहा था एल अपुल के लगा रखो खेत में
2: भाजो सिजवाली जी ये उम्र कौन लाग रही है हमें जो छे खेत पात में है जो छो लहसुन है प्याज है और तो जल हम अपन खेत पात में हम लगा

0: हजार की।
1: अच्छा
0: तो हम यह लीजिए तो अच्छा उत्पादन हजार तो घर बार हमारे थोड़ा बहुत चल जाए लीजिए, खर्चा पाते लीजिए
1: बिल्कुल
0: जो छो। तो जाजो हम लोग आई कि हम बकार है गए, मुर्गी है गए, तो भैंस है गए, तो गुरबा जो है गए, तो हम पाई की हो
1: बिल्कुल। तो बीजू आप ये बताओ कि ये जो आप गोरबाज पावना है और जो मुर्गी ला पालन आप कर रहे हो, ये में क्या समस्या होने है आपको?
0: तो सर हम यो चाहिए, हमारे पास कमरे हमारे जो कम छे, तो हम ये कमरे जो छे बकाने लीजिए चाहिए।
1: अच्छा
0: तो ये लीजिए हम तुम यो सरकार दे यो आयोजन कन्या कि हम के बकरी पालन दीजियो।
1: अच्छा
0: तो ये लीजिए हम तुम दिगर यो
1: बिल्कुल। चलो तो, आप बात हम पहुँचो लग रहा है सरकार दगड़े, और जरूर आपको जो से भविष्य में कोशिश आप कर ला और सब लोग करल तो मिल जाल बकरी वाला मिल जाल, क्योंकि आप एक भल बकरी पालक ला था, क्योंकि बहुत से बकरी बकर अपन आंगन में बात रखी और देखने लग रही। तो बीजू साग सब्जी में और क्या क्या आजकल अपन उगा रहो?
0: साग सब्जी में हमने उगा रखो आजकल लाई है गए, पांगो हो गए, आलू है गए, तो लहसुन है गए, यह चीज में हमारे आजकल तो हूँ।
1: अच्छा
0: उसका हूँ तो राजू हम ये बात यो कि हमारे जो छो गाय भैंस जो छो भैंस जो छो तो हमारे जो छो घापात हम जो तो लिखे नो वो हमारे बेकार है जा।
1: अच्छा
0: तो हम कौन लग रहा कि हम एक हस्तकारक था, तो हम के चीज के बेकार नहीं करना चाहना
1: बिल्कुल।
0: तो हमन के एक मशीन है की जरूरत थी, तो जो कुट्टी काटने
1: मशीन है,
0: कुट्टी मारने जो मशीन थी वो मुझे अर्धा अर्धा मिला बेर हम जो छे वो भैंस का हम खिला देना
1: बिल्कुल।
0: तो हमारे हमारे घापात जो थे हमारे वो बेकार नहीं हो
1: बिल्कुल।
0: तय उजल हम लोग ये हम सरकार देख आयोजन कर।
1: चलो ठीक छो बीजू, ये बताओ कि तुम्हारे जो ये देखी ना मुझे बगीचे में फल फूल नगला पौध देखी नहीं, क्या क्या फल फूल आप लगा रखी?
0: हम लगा रखिए सर यो काश्तकार छापा हम सब चीज करने पर थोड़ा बहुत जैसे खुमानी है गए, पुलम है गए।
1: अच्छा।
0: आड़ है गए, तो चीजें हम बेरोजगार अपन करनो हम सरकार में अब जो है अपन, तो थोड़ा बहुत हमारा खाना ल है जाए और थोड़ा बहुत हमारा बाजार बेचने को ल है जाए
1: बिल्कुल।
0: तो चीज हम काश्तकार था तो इज्जत ये हो जाए, थोड़ा बहुत हमारे पास एक आध पेड़ जी एक पेड़ जो है अखरोट उल है जाए।
1: अच्छा अखरोट ला अपुल लगा रखी अखरोट अखरोट ला बेचा मतलब?
0: हाँ सर उले बेचना हम सर।
1: बहुत भल कर रखो अपुल सब चीज करो नगर। अच्छा अपू ये बताओ कि दुग्ध उत्पादन में अपू जो ये गोर भैंस पाव रखी इन बटी दूध कतु उत्पादन हजा और कतु इनकम जो है अपन कतु आमदनी मेहनत में हजें?
0: सर यह हमारे आमदनी यही है जी पे हमारे जो छे अपन मतलब ये लगाओ पाँच या छः लीटर हमारे लगभग हमारे मेहनत में दूध रहता।
1: अच्छा
0: तो 30 या 32 रुपए लीटर हमको मेहनत में जो छे हमको मिल जाए
1: बिल्कुल।
0: और थोड़ा बहुत हमको अपन नानती ने लीजिए अपन खान पीना लीजिए चाहे और ये लीजिए हमारे छः या 5 हज़ार रुपये हमको मेहनत मिल जाए
1: बिल्कुल
0: अपन।
1: बहुत भली बात है। तो ये अपन जो से रोजगार चलन लग रहा है दूध से कृषि से और सब्जी उत्पादन से, तो ये एक अलावा ले अपू और की करसा मजदूरी वगैरह ला करसा या के और काम करसा और ये अलावा?
0: हाँ सर हम तो काश्तकारी ठहरा कब तक कुल काम मिल गया तो उम्र है जानू, न तो फिर सरकार जो आजकल नरेगा चला रखो तो उम्र जानू।
1: अच्छा मनरेगा में आप काम करसा?
0: हाँ सर
1: बिल्कुल। बहुत भली बात छू, क्योंकि मनरेगा में काम करना एक और फैद मैं तुमको बता दूँ कि मनरेगा में जो ले श्रमिक साल में 90 दिन काम करूं, वीक रजिस्ट्रेशन जो से वीक जो पंजीकरण से वो श्रम विभाग में ले है जा, और श्रम विभाग बटी वो बहुत सार सुविधा मिलना फैजा नहीं। आपको ये चीज़ों जानकारी हो चाहे ना हो मैं बता दूं आपको। तो बिस्ट जी ये बताओ कि जो हमारे जो पहाड़ा के जो युवा छन जो एल हमारे गौन को छोड़ फिर भारू जानी पलायन करनी जो, और 5-7 हज़ार रुपये में 2-4 हज़ार रुपये में नौकरी करने लग रही है बिहार, तो उन्हें लीजिए आपको क्या संदेश देना चाहता है?
0: सर जी मैं ये कौन लग रही कि मैं काश्तकार है गरीबी रेखा वाले छे, तो हमारे जो पहाड़ छे तो पहाड़ ऊपर ये छे जो हम प्लेन्स में हम कुल का चाहे कंपनी में काम करनो केला काम करनो तो हमको सैलरी 10 हज़ार रुपये मिली।
1: अच्छा
0: तो सर हमारे जो छो 3 हज़ार रुपये हमारे कमरे किराए ले जा
1: बिल्कुल
0: ठीक छे, 2 हज़ार रुपये टेम्पो किराए वो ले जा
1: बिल्कुल,
0: तो सर हमारे बच्चे 5 हज़ार रुपये, तो 5 हज़ार रुपये में हमारे भैंस जब हमारे गोर बाज जब हमको 6-7 हज़ार रुपये अपने घर में देनी तो हमन का अपने घर में रोन चाहे अपने घर देखभाल कर चाहे अपो मतलब पहाड़ा देखभाल कर चाहे अपन जब से कृषि विभाग जो छे वो चीज़ों की देखभाल कर चाहे। देखो हमको साग सब्जी जो छे हमको सब चीज़ सुविधा मिली ये पहाड़ में वो हमको प्लेन्स में नहीं मिली
1: बिल्कुल,
0: यह चीज़ हमको खाली

0: प्लेन्समे जे छै एक सुख डबल मिलू बहगे ओ 4-5 हजार रुपया हम बचू ई हमर के न्यू
1: बिल्कुल
0: ये कोनो व्यवस्था छै लोग बाग ठीक छै हमर आज तक यो छै हमर पहाड़ जो सुविधा छै ओ कहीं ना
1: बिल्कुल सही बात करी बिजू अपुल अपुल बहुत भल संदेश दे हमर युवा उनके और यही आशा करनू कि अब एक भल कृषक भविष्य में इसके रोला और भविष्य में और भल मुकाम आपू हासिल कर ला तो बहुत बहुत धन्यवाद आपू को हमर कार्यक्रम में शामिल होने जी
2: सुरधवल अपन सुने जो भेंटवार्ता बकरी पालन और काश्तकारी कर भेर आजीविका करणी कृषक मनोज बिष्ट ग्राम मटेला पलना विकास खंड लमगढ़ दगड़ करी गई भेंट श्रोतो कार्यक्रम में अखिल आपको सुनू लग रहा महिपाल मेहता और ज्योति उप्रेती गई यह कुमाऊनी लोकगीत।

0: के
1: मैं जानू नेपाला मेरी जमुना साई चुम चुमा हिट जानू कोती का मेरी जमुना साई चुम चुमा मैं जानू नेपाला मेरी जमुना साई चुम

का दपे पौजिया सुनो का मेरी जमुना साई चुम चुमा हिट जानू कोती का मेरी जमुना साई चुम चुमा पौजिया सुनो का मेरी जमुना साई चुम चुमा हिट जानू कोती का मेरी जमुना साई चुम।

0: दपै
1: पूजी रे छकुना मेरी जमुना साई छू चुमा हिट जानू कोती का मेरी जमुना साई छू चुमा मैं जानू नेपाला मेरी जमुना साई छू चुमा हिट जानू कोती का मेरी जमुना साई छू।
2: सुरदौल्ला पुष्पण महिपाल मेहता और ज्योति प्रीति गई यह कुमाऊनी लोकगीत। सुरदौल जनजनक सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता और द्वि आँख या कोई द्वि अंगों की हानि होने पर 2,00,000 रुपये तक बीमा कवरेज प्रदान करी जाए। बीमित व्यक्ति हर व्यक्ति है सकूँ जय बैंक में खाचु और आंशिक विकलांगता में यह राशि 1,00,000 रुपये तक प्रदान करी जाए। यह योजना तहत मात्र 12 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम दिन पर 2,00,000 रुपये बीमा करी जाए और यह बीमा के 18-70 साल तक हर व्यक्ति ले सकूँ। श्रोताओं शुरू में 2015 में जब यह योजना शुरू करी गई तो 12 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम में शुरू करी गए और वर्तमान में यह प्रीमियम अब बढ़कर 20 रुपये प्रतिवर्ष है। गो श्रोताओं साल में 20 रुपये बहुत कम प्रीमियम में यह योजना 2,00,000 रुपये बीमा कवर दिए तो यह सभी मनुष्यों के कर्म से हैं। यह के अलावा सुरक्षा बीमा क्षेत्र में जीवन ज्योति बीमा योजना अटल पेंशन योजना में खूब फायदा देने वाली योजना सन। यह योजनाओं बारे में आपको अपन नज़दीकी बैंक शाखा में संपर्क कर दे पर और ले ज़्यादा पता कर सकता और ज़्यादा जानकारी यह सुरक्षा बीमा योजनाओं बारे में आपको ले सकता। तो श्रोताओ यह तो थी बातचीत। कार्यक्रम में अगले लोगों का सुनने लग रहा बिमला बोरा और दगड़ियों गई यह कुमाऊनी लोकगीत।

श्रुतो विमला बोरा और दगड़ियों गई ये लोकगीत दगड़ी आज एक ग्राम जगत कार्यक्रम संपन्न करना बखत है गो भोल फिर भेंट होली। तब तक अगले जी हरी सिजवाली के दियो आज्ञा नमस्कार।

अभी श्रोता ग्राम जगत कार्यक्रम सुन रही थी। FM 100.8 MHz पर यह आकाशवाणी अल्मोड़ा है। संध्या के 7:30 होने वाली हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी देहरादून से

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बठे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नौकदगढ़ में ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को सरकार अंतिम छोर पर ठाड़ हर मन की जाने भल स्वास्थ्य सुविधाएं पूजोनक लीजिए लगातार काम करने। चमोली जिले में स्थित चौथ केदार श्री रुद्रनाथ मंदिर कपाट आज श्रद्धालुओं के दर्शन नकलीजी खोल दी गई। धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराजल चार धाम यात्रा पर ऊर्णवा श्रद्धालुओं थे मंदिर परिसर और यात्रा बाटों में सफाई रखने आह्वान करो और देहरादून औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में कानून व्यवस्था बनाई रखने के लिए धारा 163 लागू करी गये। आप समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को राज्य सरकार अंतिम छोर पर थाड़ी हर मन की जाने भल स्वास्थ्य सुविधा पूजनक लीजिए लगातार काम करने। आज देहरादून बठे चार अत्याधुनिक एम्बुलेंस के फ्लैग ऑफ करबेर मुख्यमंत्री को की पहल राज्य दूसर और पहाड़ी जागरण में स्वास्थ्य सेवाओं के मजबूत बनुनक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम छू। श्री धामिल को की उत्तराखंड पहाड़ी और दूरस्थ जागरण में बखत पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बहुत जरूरी छू। राज्य सरकारक जनभागीदारी और संस्थागत सहयोगक माध्यमल स्वास्थ्य सेवाओं के और ज्यादा सशक्त बनु नकलजी प्रतिबद्ध छू। उन्हें बताया कि पहली चरण में यो एम्बुलेंस चमोली चंपावत पिथौरगढ़ और रुद्रप्रयाग जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर ली। दगड़े भविष्य में यह उपयोग प्रमुख धार्मिक आयोजन और आपदा प्रबंधन जस कामों में ले करी जल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपूर्ण कई देशों के दौरों में जा रही नार्वे के ओस्लो पुज गई। यो दौर में भारत और नार्वे के बीच द्विपक्षीय बातचीत और तीसर भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन शामिल छू। यो दौरा नार्डिक देशों के दगाड़ भारत तक संबंध के नई गति दियोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नार्वे अपूर्ण पहली यात्रा के लिए जी ओस्लो पुज गई। 43 राज्यों में भारत तक सपन है ठुल यो बैठक का क्वेले प्रधानमंत्री पहली दौरा छू। चमोली जिले में स्थित चतुर्थिक केदार श्री रुद्रनाथ मंदिर कपाट आज भोल मुहूर्त में खोल दी गई। वैदिक मंत्रोच्चार और पूर्व विधि विधानक दगड़ श्रद्धालुओं के दर्शन नक लीजिए यु कपाट खोल हलीन और कपाट खुलनक मौक पर ठुल संख्या में श्रद्धालु साधु संत और वाक लोग उपस्थित रहीन। कपाट खुलनक दगड़ ही पूर्व क्षेत्र में हर हर महादेव और जय बाबा रुद्रनाथक जय घोषल भक्तिमय है। प्रस्तुत एक रिपोर्ट।
1: पंच केदारों में चौथ केदारक रूप में विशेष स्थान राखणवाल श्री रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिवजी का एकानंद स्वरूप यानी मुख रूप की पूजपाठ करी जाए। हिमालय दुर्गम चोटियों के बीच बसी यो पवित्र धाम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यमयी दिव्यता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध छू। कपाट खुलना दगड़े अब ऊर्णवाल छह मेणो ताले भगवान रुद्रनाथ रोज पूजपाठ और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करी जाल। देश विदेश बटी ऊर्णवाल हजारों श्रद्धालु यो दिव्य धाम में पुजबेर भगवान शिवाक दुर्लभ एकानंद स्वरूप दर्शन करबेर पुण्य लाभ लियाल। रुद्रनाथ यात्रा अपन मुश्किल पर रोमांचकारी पैदल बाटक लीजी ले जानी जे दुर्गम पर्वतीय बाटो बे है बेर जानी वाली यात्रा श्रद्धालुओं को आध्यात्म प्रकृति और आस्था अद्भुत संगमक अनुभव करे। आकाशवाणी देहरादून लीजी समाचार कक्ष बटी मी ज्योति जोशी।
0: धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराजल चार धाम यात्रा पर ऊर्णवाल सफे श्रद्धालुओं थे मंदिर परिसर और यात्रा बाटों के साफ बनाई रखने आह्वान करो। बद्रीनाथ धामक यात्रा के बखत उनल तीर्थ यात्रियों थे अपील कर बीर को की सर कुड़ केवल कुड़दान में ही डालो। श्री महाराजल को की देवभूमि मर्यादा और वैक पवित्रता बनाई रखने के लिए सपना सामूहिक दायित्व छू।
2: आप सभी श्रद्धालु भक्तगण चार धाम यात्रा में देवभूमि में पधारे हुए हैं और यह हमारा कर्तव्य है और सबसे बड़ी पूजा यह है कि हम देवभूमि को स्वच्छ रखें। इसलिए जो भी कूड़ा है वो कूड़ादान में डालें, गार्बेज बॉक्स में डालें और सारी धरती को पवित्र रखें। मेरा आपसे बहुत अनुरोध है कि कूड़ा कूड़े की जगह पड़े तो हमारी देवभूमि साफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श चार धाम के रूप में स्थापित हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि मन की स्वच्छता हो और शरीर की स्वच्छता हो, इसका ध्यान जरूर रखें।
0: वहीं मध्य प्रदेश बठे उत्तरकाशी जिले स्थित श्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पूजिन श्रद्धालुओं यात्रा व्यवस्थाओं की सराहना करी। यात्रुओं को की उनर यात्रा सुरक्षित सुव्यवस्थित और यादगार बनी छू।
3: आज हम लोग आ रहे हैं गंगोत्री धाम। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर और यहाँ की व्यवस्था। उसके बाद में हम लोग नदी पे गंगा माता के स्नान के लिए, वहाँ स्नान करने का एक अलग ही अनुभव था हमारा। स्नान करने के बाद में इतना अच्छा लगा और हमारे शरीर में ऐसा लगा जैसे एक तंदुरुस्ती आ गई है। माता रानी के आशीर्वाद से और उनकी शक्ति से यहाँ के पानी के एक अमृत में इतनी शक्ति है कि हम बता नहीं सकते। यहाँ के पुलिस प्रशासन की व्यवस्था और यहाँ पुष्कर जी धाम का धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था बनी हुई है, यही जगह जाम लगा लेकिन पुलिस प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था रखी जो कानवाई में लगा लगा के आगे हमारी यात्रा को सफल बनाया है।
4: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रही। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: देहरादून सिला कुई औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाई रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों संयुक्त रूपल फ्लैग मार्च करो। यो कार्यवाही श्रमिकों धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ढूंग खेत बेर माहौल के बिगाड़ने का प्रयास करी गयो। प्रशासनल सिला कुई और सिटकुल औद्योगिक क्षेत्र में तत्काल प्रभावल भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता धारा 163 लागू कर हाली। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस लोगों के लागू प्रतिबंध की जानकारी दी बेर यो सफाई व्यवस्था बनाई रखना जागरूक करो। अफवाह पर ध्यान नहीं देना अपील ले करी। पुलिस चेतावनी दे की शांति व्यवस्था बिगाड़ने या माहौल खराब करने कोशिश करने वाले खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करी जाली। आदेशक अनुसार सिलाकुई और सिटकुल क्षेत्र में हथियार लठ और अन्य घातक वस्तुएं लीबेर चलन सार्वजनिक सभा जुलूस नारेबाजी करण बिना अनुमति प्रदर्शन करण पर रोक लगाई है। 5 है या वी है जात जाने इकट्ठे होने पर प्रबंध लगाई गयो। प्रदेश में गर्मी प्रकोप जारी छो। मौसम विभाग के अनुसार अघिन द्वी तीन में दिन में अधिकतम तापमान 1-3 degrees जाने बढ़नक अंदाज हो। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य पहाड़ी और मैदानी जगहों में तापमान सामान्य है जा दर्ज करी गयो। विभाग के अनुसार अगिल 36 घंटे जाने प्रदेश में मौसम शुष्क बनी रोल। मौसम विभाग गर्मी के देख भी लोगों थे सेव में रून और खूब पानी वाली चीजें नक सेवन करण जरूरी नहीं होने पर घर बैठे बिहार नहीं जान और दिनक बखत बिहार जान पर खुआर के ढक बेर जानक सलाह दी। वहीं मैदानी जागों में भीषण गर्मी थे राहत पाणक लीजिए ठुल संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पर्वतीय जागों में ऊन रहीन और यह का दगड़ ही प्रमुख प्राकृतिक झरना तालाब और गाड़गधारों में ले जान लग रहीन। वहीं ऊन जान हलल विसार व्यापारी उत्साहित छन और सबन में खुशिक माहौल छू। राजधानी देहरादून में डेंगू और पानी होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रशासन सतर्क छू। जिलाधिकारी सविन बंसल अधिकारियों दगाड़ बैठक कर बेर अस्पताल में डेंगू जांच उपचार दवाइयों ब्लड बैंक और पर्याप्त स्टाफक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दें। उनलको की कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रोल और डेंगू कोयले मामला सामण में ऊन पर झट कार्यवाही करी जाओ। केंद्र सरकार सोशल मीडिया में चलन वाल उपोस्ट के खारिज कर हलो जमे कई गयो छी कि भारत के पास केवल 2-3 दिन ही तेल भंडारण बची छू। पत्र सूचना कार्यालय PIB फैक्ट चेक यूनिटल यो दावा को कि यो फर्जी दावा छू। यूनिटल को कि भारत के पास 60 दिन कच्चे तेल भंडारण मौजूद छू। ये अलावा तेल शोधन कारखाना पास ले खूब भंडारण छू। PIB नागरिकों को नी घबरूनक सलाह दे और कह कि ईंधन और गैसक उपलब्धता बार में सरकारी अधिकारियों द्वारा सत्यापित सूचनाओं पर ही भरोस करण छे। केंद्र सरकार कह कि CBSE 12वीं परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी छू। 12वीं परिणाम पर नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभागक सचिव संजय कुमार बताए कि विद्यार्थियों मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताए। सचिव बताए कि CBSE यो साल यस प्रणाली लागू करी जैल मूल्यांकन में ज्यादा पारदर्शिता निष्पक्षता सुनिश्चित छू। सचिव कह कि CBSE पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर हेलो। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को कि सरकार अंतिम छोर पर ठाड़ी हर मन की जाने भल स्वास्थ्य सुविधाएं पूजूनक लीजिए लगातार काम करने। चमोली जिले में स्थित चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथक मंदिर कपाट आज श्रद्धालुओं के दर्शनक लीजिए खोल दी गई। धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराजल चार धाम यात्रा पर ऊनवाल श्रद्धालुओं थे मंदिर परिसर और यात्रा बाटों में सफाई बनाई रखना आह्वान करो और देहरादून औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में कानून व्यवस्था बनाई रखना लीजिए धारा 163 लागू करिए। यह कदगढ़ ही कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
5: प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR और FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, आज के फिल्म संगीत का आरंभ हम कर रहे हैं यशुदास और हेमलता के गाए चित चोर फिल्म की इस गीत से। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

हेमलता और येसुदास के गाए चित्चोर फिल्म के इस गीत के बाद आइए फिल्म संगीत में सुनते हैं समीर का लिखा और अनु मलिक का संगीतबद्ध किया हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं सोनू निगम।

तुमसे मिलके मैंने जाना ये प्यार भी अजीब चीज है। इंसान खुद को भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है?

आकाशवाणी अल्मोड़ा, आकाशवाणी पिथौरागढ़ और आकाशवाणी बागेश्वर से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम के समापन में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और कुमार सानू के गुलसरों में प्यार का साया फिल्म का गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक के गए प्यार का साया फिल्म के इस गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में आयोजित समारोह की रेडियो रिपोर्ट। वाचन और संकलन मनीषा मेहरा का है और प्रस्तुति संजय जोशी की।
1: आज दिनांक 18 मई को पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इस अवसर पर मुख्य वक्ता थे डॉक्टर चंद्र प्रकाश फुलोरिया, संग्रहालय अध्यक्ष इतिहास विभाग सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा। प्रस्तुत है कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। कार्यक्रम के आरंभ में भातखंडे संगीत महाविद्यालय छात्र छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई।

0: कार्यक्रम का संचालन करते आप हैं विधि का प्रभारी जन्मजीत तिवारी।
1: आज 18 मई 2026 को जो सब लोग आए हैं उनका हम राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा की तरफ से बहुत धन्यवाद करते हैं, विशेषकर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, डॉक्टर विद्या कर्नाटक मैम का और GGIC के बच्चे, टीचर्स और हमारे भातखंडे के जो बच्चे आए हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं। सबसे प्रथम मैं चाहूँगा कि हमारे बीच डॉक्टर CP फ्लोरिया जी हैं जो संग्रहालय अध्यक्ष हैं हमारे यूनिवर्सिटी म्यूजियम SHA कैंपस के, तो मैं चाहूँगा कि हमारे डायरेक्टर डॉक्टर CS चौहान सर उनको बुके भेंट करके उनका स्वागत करें जो हमारे कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि भी हैं। हमारे बीच नवीन पांगती जी भी हैं जो हमारे संग्रहालय और संस्कृति को बचाने के लिए काफ़ी हमारे साथ काम करते हैं, जिसमें हेरिटेज वॉक हो चाहे अल्मोड़ा पर एक हेरिटेज वॉक की एक तैयारी और काम जिस पर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें शोध का काम, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग का काम, तो पांगती जी हमारे बीच में हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, इस वर्ष इसकी थीम है म्यूजियम यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड, कैसे संग्रहालय एक जो डिवाइडेड दुनिया है जो हम देखते हैं कि जो आजकल हम वॉर देख रहे हैं कैसे उसमें संग्रहालयों का महत्व है और क्या संग्रहालय उसमें अपना योगदान प्रदान कर सकता है, इस पे हम चर्चा करेंगे।
0: आमंत्रित अतिथियों का स्वागत करते अपने उद्बोधन में प्रभारी निदेशक राजकीय संग्रहालय डॉक्टर चंद्र सिंह चौहान ने कहा,
2: दिवसों के माध्यम से ये हमारे सांस्कृतिक विरासत के संबंध में हुआ था, ये सर्वप्रथम 1977 में यूनेस्को के माध्यम से विभिन्न समुदायों का संग्रहालयों का आदान प्रदान, संस्कृति का आदान प्रदान, इससे पहले कहने का तात्पर्य है कि 2025 में विभिन्न समुदायों का कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है कैसे उनको संकलित किया जाए, उनका विघटन जो हो रहा है उनको संकलित किया जाए और वर्तमान समय जो इधर उधर बिखरा हुआ उसको एकत्रित करने के लिए संग्रहालय की जो व्यवस्था है, जो संग्रहालय हमारे सांस्कृतिक जो विरासत है ये इस विरासत को इकट्ठा करने के लिए अपने आप में ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं हमारी संस्कृति धरती के अंदर भी है, धरती के मध्य में भी है और धरती के ऊपर भी है। कहने का तात्पर्य आकाश, पाताल और नभ दोनों में हमारी संस्कृति बिखरी पड़ी हुई है। इस संस्कृति को इकट्ठा करने के लिए, इस संस्कृति को जानने के लिए ये प्रतिवर्ष इसकी थीम को अलग अलग किया जाता है, पर उसके बारे में ये एक दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। संग्रहालय में जो चीज़ आपके घर में भी संग्रहालय है, हर किसी के घर में संग्रहालय है,

0: लेकिन आप उसके महत्व को नहीं जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो संग्रहालय है, उस संग्रहालय में अगर आपकी विरासत, अगर आप उस संग्रहालय में अगर दान देते हैं, वो तो केवल आपके घर तक सीमित है। लेकिन यहाँ पर हमारे जितने शोधार्थी आते हैं, इसलिए कि यहाँ पर जो आपकी दी हुई विरासत है वो किसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, आम समाज के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन किसके लिए कितना महत्वपूर्ण है वो चीज़ आम जनता के सामने आ तभी पता चलता है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। मैं इस संग्रहालय के दिवस के उपलक्ष्य में संग्रहालय की ओर से इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आपके घर में भी कोई ऐसी चीज है, पुराना सिक्का भी हो सकता है, कोई पांडुलिप हो सकती है, कोई पुराना बर्तन हो सकता है, कोई दस्तावेज हो सकता है, कोई ऐसा कपड़ा हो सकता है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। यहाँ तक ये कभी कभी ऐसा होता है आप लोगों को भी जानकारी नहीं होती है। इसी अल्मोड़ा का उदाहरण मैं बताता हूँ, क्योंकि मल्ला महल में हमारा एक सांस्कृतिक विरासत के केंद्र खुलने जा रहे हैं। आप उनके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में भी हो सकता है, वो चीज़ बिखरी हुई भी हो सकती है, लेकिन आपके संज्ञान में नहीं है। तो अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा है, देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ पैर के नाखून से सर के बाल तक, इस संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों के पास जो भी ऐसी विरासत है जिसके बारे में आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप संग्रहालय में दिखा सकते हैं, उसको संग्रहालय को दान दे सकते हैं। वही चीज़ महत्वपूर्ण आपके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा उद्देश्य बन सकता है।
1: डिजाइन सलाहकार सांस्कृतिक विशेषज्ञ श्री नवीन पांक्ति ने संस्कृति के संरक्षण पर प्रकाश डालते हुए कहा,
2: हम लोग जो अल्मोड़े के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप इतिहास को देखें और अगर आप म्यूजियम की हिस्ट्री को देखें, तो जब आपके बूबू के बूबू अगर अल्मोड़े में रहते थे, तो उस समय यहाँ का सबसे जो मुख्य बाज़ार था ऊपर का पटाल बाज़ार था। वो वहीं घूमते होंगे, वहीं सामान खरीदते होंगे, राजा भी वहीं रहता था, मंत्री भी वहीं रहता था। फिर धीरे धीरे जब सड़क आई तो माल रोड आ गया। अब हमको लगता है कि अल्मोड़ा का केंद्र माल रोड है, और थोड़े दिनों में शायद नोल माल रोड और बड़ा हो जाएगा। एक बाईपास बना धारानौला का, अब धारानौला भी पूरा बस गया। हम जब इतिहास को देखते हैं तो हम अपने नजरिए से देखते हैं। हमको
3: साथ तो खेल की बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। यानिक सिनर ने इटालियन ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। भारत की सीनियर पुरुष टीम ने CASA रग्बी सेवन्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। महिला टीम चौथे स्थान पर रही। हॉकी इंडिया ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की। सलीम टेटे को सौंपी टीम की कमान। और मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 प्रतियोगिता कल से शुरू।

0: तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं आईपीएल के रोमांचक मुकाबलों के साथ, जहां आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 11वें ओवर में 3 विकेट खोकर 91 रन बना लिए थे। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंक तालिका की बात की जाए तो तीसरे स्थान पर है इस समय हैदराबाद की टीम और वो चाहेगी कि और करीब पहुंचा जाए पहले और दूसरे स्थान के, जबकि चेन्नई की नज़र है कि पांचवें से छलांग लगाई जाए और चौथे स्थान पे अपना कब्जा बनाया जाए। इससे पहले लीग में कल 2 मुकाबले खेले गए, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया, जबकि दिन के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में प्रवेश किया।
1: आईपीएल के 62वें मुकाबले में कल दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स पर 5 विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने 40 गेंदों में 53, कप्तान रियान पराग ने ताबड़तोड़ 26 गेंदों में 51 रन बनाए, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 219 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में 46 रन का योगदान दिया। दिल्ली की ओर से मिचेल स्टार्क को 4, वहीं लुंगी एनगिडी और माधव तिवारी को 2-2 सफलताएं हाथ लगी। जवाब में दिल्ली की टीम की शुरुआत शानदार रही। पहले विकेट के लिए अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने 105 रन की साझेदारी की। अभिषेक ने 51, वहीं केएल राहुल ने 56 रनों का योगदान दिया। अंत में कप्तान अक्षर पटेल ने 18 गेंदों में 34 रनों की तेज पारी खेली। आशुतोष शर्मा ने 5 गेंदों में 18 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। दिल्ली ने 4 गेंद शेष रहते ही

0: लक्ष्य को हासिल कर लिया और अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। वहीं कल खेले गए एक और मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है और पंजाब के लिए ये लगातार छठवीं हार है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स केयर।
1: पंजाब की छठी हार और रोज बढ़ता उसकी जीत का इंतजार, प्लेऑफ में पहुंचने की दौड़ आईपीएल का सबसे रोमांचक हिस्सा होती है अगर कहा जाए तो। 11वें खिलाड़ी की तरह काम करती है। प्लेऑफ पे चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस समय विशेष मौजूद हैं हमारे सहयोगी। विशेष, प्लेऑफ जो है आईपीएल को रोमांचक बनाने में सबसे बड़ा किरदार निभाता है। इस चार सीटर गाड़ी की पहली सीट पे कल आरसीबी बैठ गई है। कौन से तीन यात्री हैं जो सबसे आसानी से इस गाड़ी में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं अभी आपको?
2: शक्ति, जैसा आपने बताया कि आरसीबी पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। गुजरात टाइटंस अभी दूसरे स्थान पर मौजूद है और वो 16 अंकों को प्राप्त कर चुकी है। अगर वो एक जीत सुनिश्चित करते हैं तो उनकी जगह लगभग तय हो जाएगी प्लेऑफ्स के लिए। वहीं अगर हम एसआरएच की बात करें तो आज उनका मुकाबला चल रहा है और वो 14 अंक पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। एक जीत उनको सुनिश्चित करनी ही होगी और अगर वो दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज करते हैं तो उससे उनको दूसरे नतीजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, और कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि अपने प्लेऑफ के सफर के लिए दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर होना पड़े। लेकिन हमने देखा है कि एक ट्रेंड है आईपीएल का विशेष, कि कुछ टीमें धीमे दरवाजे से आती हैं, चुपके से आती हैं और प्लेऑफ में जगह पाती हैं। कुछ टीमें अभी भी ऐसी दौड़ में हैं, छठे सातवें स्थान पर हैं लेकिन संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। ऐसी कौन टीमें हैं जिनके लिए अभी भी संभावनाएं, विकल्प और समीकरण प्लेऑफ का रास्ता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं?
2: देखिए, अगर समीकरण की बात करें तो पंजाब किंग्स के लिए अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं। वहीं अगर दिल्ली भी देखी जाए तो उनके पास भी एक पॉइंट का जो एडवांटेज है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। केकेआर भी रेस में बनी हुई है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स वो अपनी स्थिति पूर्णतः मजबूत कर सकते हैं अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतकर। लेकिन अगर उन दोनों में से किसी को भी एक एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा तो हमें इस आईपीएल में देखने को मिल सकता है कि टीमें 14 या 15 अंकों के साथ क्वालिफाई करेंगी। इस स्थिति में पंजाब के लिए मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है जो वो अंतिम मुकाबला खेलने वाले हैं।
1: जी बिल्कुल, तो अंतिम मुकाबलों तक ये लाइन चलेगी और शायद आखिरी दिन जाके कहीं तय हो पाए कि हमारे चार प्लेऑफ के खिलाड़ी कौन होंगे। और अब आईपीएल से चलते हैं टेनिस के कोर्ट की तरफ, जहां पे कुछ और इतिहास बनते और बिगड़ते नजर आए। यानिक सिन्हा ने इटालियन ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वे 1976 में एंड्रियानो पनाटा के बाद इस खिताब को जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए।
3: सिनर ने फाइनल मुकाबले में कैस्पर रूड को 6-4, 6-4 से हराकर लगातार छठा एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीता। इस सत्र में सिनर ने पेरिस मास्टर्स, इंडियन वेल्स मास्टर्स, मियामी ओपन, मोंटे कार्लो मास्टर्स, मैड्रिड ओपन और इटालियन ओपन जैसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीतकर इतिहास रचा है। 1 घंटे 44 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करके नोवाक जोकोविच के बाद सिनर एटीपी इतिहास में करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। सिनर ने अब सभी एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीत लिए हैं। जोकोविच ने 2018 में सिनसिनाटी जीतने के बाद ये कामयाबी हासिल की थी। मैदान में दर्शकों की भारी समर्थन के बीच सिनर ने धीमी शुरुआत से वापसी करते हुए अपना 10वां मास्टर्स 1000 खिताब और रोम में पहला टाइटल जीता। शुरुआत में कैस्पर रूड ने आक्रामक खेल दिखाया लेकिन लगातार सटीक शॉट्स लगाकर सिनर ने फाइनल मैच का रुख पलटा और ये यादगार जीत हासिल की। इससे पहले एलेना स्वितोलिना ने महिलाओं का सिंगल्स खिताब जीता था। एलिना ने फाइनल मुकाबले में कोको गफ को 6-4, 6-7 और 6-2 से हराकर खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो जब भी कभी हम टेनिस खिलाड़ियों का जिक्र करते थे तो रोजर फेडर और राफेल नडाल की वो बैटल्स याद आती थी और आज ये युवा खिलाड़ी इटली से निकल करके उसी तहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराते हुए नजर आ रहा है। और अब टेनिस के बाद इसी गेंद को ले चलते हैं रग्बी के मैदान की तरफ, जहां उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित CASA रग्बी सेवन्स में भारत की सीनियर पुरुष टीम ने रजत पदक अपने नाम किया, जबकि सीनियर महिला टीम चौथे स्थान पर रही। पुरुष टीम ने लगातार अपने शुरुआत के चारों मैच जीते, जहां भारत ने उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। हालांकि फाइनल मुकाबले में उसे श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा, जबकि सीनियर महिला टीम ने पहले दिन उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना किया था। इसके बाद किर्गिस्तान और मंगोलिया के खिलाफ शानदार जीत के साथ इस टीम ने वापसी की और चौथे स्थान के साथ इस प्रतियोगिता से लौट रही है भारतीय महिला रग्बी टीम। और महिलाओं की बात चली है तो अब बात करते हैं महिला हॉकी की, जहां हॉकी इंडिया ने आज आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली श्रृंखला में 4 मुकाबले होंगे जो कि 26 मई से खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 26 मई, दूसरा 27 को होना है, तीसरा मैच 29 मई को, जबकि अंतिम मुकाबला 30 मई को खेला जाना है। और इस सीरीज के सभी मुकाबले जो हैं वो पर्थ हॉकी स्टेडियम में होने हैं ऑस्ट्रेलिया के। और अगर देखा जाए सलीम टेटे को टीम का कप्तान बनाया गया है, यहाँ पे अनुभवी खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीत चुकी हैं, लेकिन यहाँ से महिला टीम की जो सबसे अधिक नज़र होगी वो एशियन गेम्स के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने पर होगी। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन कल से शुरू होने जा रहा है। आइए जानते हैं भारत को इस प्रतियोगिता में अपने किन किन बैडमिंटन खिलाड़ियों से इस शानदार सुपर 500 टूर्नामेंट में एक शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
3: पुरुषों के सिंगल्स मुकाबले में भारत और फ्रांस के बीच एक नई जंग का इंतजार है और भारतीय शटलर्स अपनी हालिया थॉमस कप सेमीफाइनल हार का बदला लेने की कोशिश करेंगे। इस महीने की शुरुआत में डेनमार्क के हॉर्सेंस में थॉमस कप सेमीफाइनल में फ्रांस से 0-3 से हारने के बाद भारत ने कांस्य पदक जीता था। भारत तीनों सिंगल्स मैच हार गया था। भारतीय स्टार शटलर लक्ष्य इंडोनेशिया के मोह जकी उबैदिल्ला के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं तरुण मन्नेपल्ली फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव से भिड़ेंगे। किरण जॉर्ज सातवीं वरीयता प्राप्त एलेक्स लानियार का सामना करेंगे और एचएस प्रणॉय का मुकाबला क्रिस्टो पोपोव से होगा। एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम को क्वालिफाइंग राउंड से गुजरना होगा। पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा कारुनन और एम आर अर्जुन का सातवीं वरीयता प्राप्त फ्रांसीसी जोड़ी क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव से सामना होगा। भारतीय महिला सिंगल्स खिलाड़ियों में तन्वी शर्मा का मुकाबला थाईलैंड की पिचामोन ओपर नेपुत से होगा। उन्नति हुड्डा का सामना चीन की हान कियानशी से होगा। मालविका बंसोड़ जर्मनी की यवोन ली से भिड़ेंगी और अनमोल खरब का मुकाबला डेनमार्क की लाइन होजार्क कर्जसफेल्ड से होगा। रक्षिता श्री संतोष राम और ईशारानी बरुआ भी चुनौती पेश करेंगी। देविका सिहा क्वालिफायर में हिस्सा लेंगी। वहीं महिला डबल्स में अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम तथा रुता पर्णा पांडा और श्वेता पर्णा पांडा की जोड़ी भारत की ओर से चुनौती रखेगी। जबकि मिक्स्ड डबल्स में आशित सूर्या और अमृता प्रमुतेश तथा रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे भारतीय दल का हिस्सा हैं। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कहा जा सकता है कि उबर कप के ब्रॉन्ज मेडल की चमक और धारदार करने के लिए और शानदार और चमकदार करने का एक मौका भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए इंतजार कर रहा है। और थोड़ी सी कसक जो गोल्ड ना आ पाने की थाईलैंड ओपन में थी वो भी शायद यहाँ पर कुआलालंपुर में मिटती हुई नजर आएगी। और अब कार्यक्रम में बात करते हैं भारतीय युवा मुक्केबाजों के प्रदर्शन की, जो उन्होंने ताशकंद में अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जहाँ भारतीय मुक्केबाजों की युवा पीढ़ी की चमक बॉक्सिंग रिंग से निकलकर विश्व पटल पर चमकती हुई नजर आई। भारत ने कुल 44 पदक जीते इस दौरान और इन्हीं पदकों में से एक स्वर्ण पदक विजेता हंसिका हैं। हंसिका इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं और जो हमें बताएंगी कि इस प्रतियोगिता के दौरान उनका अनुभव कैसा रहा। हंसिका, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे हम स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की तरफ से, और आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का देश का मान बढ़ाया। हंसिका, देश के बाहर जाना और इतना शानदार प्रदर्शन करना, आप सभी श्रोताओं को बताइए कि ये पूरी प्रतियोगिता का अनुभव आपके लिए किस तरह का रहा?
4: मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड मैंने पहली बार खेला तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि दूसरी कंट्री में जाना, एरोप्लेन में बैठना, और ये टोटली एकदम नया एक्सपीरियंस है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, एक नया एक्सपीरियंस कह सकते हैं। हंसिका, बहुत लोगों को आपसे उम्मीद थी घर परिवार से लेकर की आपकी अकेडमी तक, तो स्वाभाविक है बहुत दबाव रहा होगा, तो आपने आखिर इस दबाव को किस प्रकार हैंडल किया है पूरी प्रतियोगिता में?
4: मेरे जो कोचेस थे वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे इस चीज के लिए कि मतलब कि डायलॉग था एक कि अब तुम फौजी की बेटी हारना मत, मेरे पापा एक्चुअली आर्मी में है, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मेरे को देते रहते थे। इस वजह से
1: जी बिल्कुल आपके लिए
4: कभी डीमोटिवेशन फील नहीं हुआ। मैं मैच में थोड़ी बहुत नर्वसनेस हुई थी जो कि रिंग में उतरने के बाद मेरी खत्म हो गई थी बेसिकली।
1: जी बिल्कुल, आपके रिंग में उतरने के बाद आपके प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों में वो नर्वसनेस नजर आई हमें। अब ये भी बताइए कि इस उपलब्धि के बाद अब आपका अगला टारगेट क्या होने वाला है हंसिका?
4: मुझे आगे और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और जूनियर में मेरे को कोशिश करनी है कि मैं उसमें भी ना सर मैं गोल्ड लाऊं, एशियन में इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और गोल्ड लेके आऊं वहां पर भी।
1: जी बिल्कुल, बहुत सारी उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। हंसिका के पिता प्रमोद अत्री भी हमसे जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, हंसिका ने हमें बताया कि वो फौजी की बेटी हैं और हर तरह का दबाव जो है वो झेल सकती हैं, तो आप हमको ये बताइए कि हंसिका इस उपलब्धि से आप कितना खुश हैं और भविष्य में इस युवा बॉक्सर को आप किस मंच पे देखना चाहते हैं?
5: सुपर प्राउड है और पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में और जो आसपास डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में हम अपने घर आए थे
1: जी,
5: इतना अच्छा जो है लोगों ने वेलकम किया है यहाँ पे कि हम आपको कुछ शब्द नहीं है हमारे पास। पूरे मतलब कई हजार लोगों की जो भीड़ वहाँ से टप्पल पहुँची लेने के लिए, ढोल डीजे बाजे लेकर के, बैनर लेकर के, तो मतलब इन चीज के लिए कुछ बोलना तो मेरे लिए तो शब्द भी जो है कम है। पूरे क्षेत्रीय जनता का बहुत बहुत आभार है, है सर, इतना प्राउड फील हो रहा है कि पूछो मत, है नहीं सर। से हमें ये उम्मीद है कि सर ये आगे ऐसे ही देश का नाम रोशन करती रहे और आगे चल के ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड लेके आए सर।
1: जी बिल्कुल, ओलंपिक में गोल्ड मेडल की उम्मीद है और हम भी यही शुभकामनाएं देंगे कि ये खिलाड़ी भविष्य में ऐसे ही नए कीर्तिमान स्थापित करे और देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर के आए बॉक्सिंग में। और हंसिका के कोच से भी हमने बात की, जिन्होंने बताया, जितेंद्र टोकस ने, कि किस तरह से ये खिलाड़ी जो है अपने आयु वर्ग से बड़े खिलाड़ियों के साथ लड़ती रही हैं, जीतती रही है, तो देश को एक मजबूत खिलाड़ी मिलने जा रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
7: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
6: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
7: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
6: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
7: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
6: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
6: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक

0: तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो, और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच, और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमेरिकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमेरिकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमेरिका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने यूट्यूब के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement,

इंद्रधनुष कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं साहिर का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया गुमराह फिल्म का गीत। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की।

कपूर के गाए गुमराह फिल्म के इस गीत के बाद इंद्रधनुष कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम का गाया मैंने प्यार किया फिल्म का गीत। शब्दकार हैं असद भोपाली, संगीत निर्देशक राम लक्ष्मण।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष।

0: इंद्रधनुष कार्यक्रम में अभी आपने सुना जयदेव का लिखा और हृदयनाथ मंगेशकर का संगीतबद्ध किया मशाल फिल्म का गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी। इसी के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं,

0: अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराड़े जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481, 0112371717, 0112371706 और 0112331444 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफ़ी राज्यों में स्वगणना का पीरियड ख़त्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और 1 महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान के हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
0: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी
2: नमस्कार। मैडम
0: नमस्कार,
2: एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, हमें कित, अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया ये आपका वर्कर है। धन्यवाद।
0: धर्मवीर जी ने 3 सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
1: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन ज़रूर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगणकों की ज़रूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना इट्स मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पर स्टैम्प होगा, प्लस QR कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी QR कोड स्कैन कर सकते हैं। तो QR कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पर आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हालांकि हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने

0: चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
1: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं।
0: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहाँ पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
1: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
2: नमस्कार। जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
2: सॉरी जी।
1: लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुँचा दूंगी।
2: जी जी, और मैं ये जानना चाहता है अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ दो तीन ही सवाल पूछे गए थे और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे मिला है इसके बारे में भी।
1: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए थे।
0: जी, एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में, तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता है तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है। बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एनुमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है sec.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
0: बिल्कुल।

0: वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एन्यूमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है sec.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे, किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
0: बिल्कुल।

आकाशवाणी अल्मोड़ा, आकाशवाणी पिथौरागढ़ और आकाशवाणी बागेश्वर से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

जगजीत सिंह की गाई बशीर बद्र की इस गज़ल के बाद सुगम संगीत कार्यक्रम के समापन में हम आपको सुनवा रहे हैं के का गाया ये गीत।

अभी आप सुगम संगीत सुन रही थी FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि की 10:30 हुई हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, बंधन बाहू का फिल्म से ही। गाय कलाकार हैं यशुदास, हेमलता और साथी। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

येसुदास हेमलता और साथियों का गाया ये गीत आपने सुना, बंधन बाहों का फिल्म सी। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल का गाया कृष फिल्म का गीत। गीतकार हैं नासिर फराज और संगीतकार राजेश रोशन।

0: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया रंग फिल्म का गीत, बोल समीर के हैं और धुन नदीम श्रवण की।

जानिसार अख्तर का लिखा और जगदेव का संगीतबद्ध किया। ये गीत आपने सुना प्रेम पर्वत फिल्म से। गायिका थी लता मंगेशकर। इसी के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ।

0: कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।

नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।